बच्चे के रोने की कोई भाषा कोई मजहब नहीं होता है। आधार घड़ते हो खुद ही और फिर चल निकलते हो अभिमान और नफरत करने के लिए। मालिक ने कहां पर बनाए हैं कोई चिन्ह कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

जय शिव शंभु। प्रिय भक्तों, आज हम आपको कैलाश के निवासी उमापति त्रिनेत्रधारी, जिनके शीश पर चंदा और जटाओं में माँ गंगा शोभायमान हो रही हैं, हम उन अजर अमर अविनाशी जो सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर भी हैं, उन शिव भोलेनाथ की महिमा का बखान करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को समुद्र मंथन के समय कालकूट विष को पीकर किस प्रकार बचाया। तो आइए श्रवण करते हैं कथा में, किंतु उससे पहले मेरे साथ श्रद्धा भाव से बोलिए जय हो भोलेनाथ।

सागर मंथन के दौरान कालकूट नाम का अति तीक्ष्ण विष निकलता है, जिसे देखकर सभी देव और दानव घबरा जाते हैं। इस विष को ग्रहण करने को सभी मना कर देते हैं। इस संकट की घड़ी में सभी को मेरे शिव शंभू की याद आई।

मानकर धुनी रमाकर बैठे थे, नीलकंठ के नाम से विख्यात हुआ। प्रभु आपकी महिमा परम्पार है, प्रभु आप तो बहुत ही दयालु तथा भोले हैं, तभी तो

आपको बता दें कि यह नीलकंठ का पावन स्थल पर्वतों से घिरा हुआ एक अद्भुत रूप प्रस्तुत कर मन को मोहित करता है। यहाँ पर भगवान नीलकंठ शिवलिंग रूप में विराजमान है। नीलकंठ भगवान के दर्शन

पावन स्थान भारतवर्ष में ही नहीं अपितु समस्त संसार में जाना जाता है। यहाँ भगवान नीलकंठ शिवलिंग रूप में विराजमान

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप अपने रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz पर सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती श्वेता शाह से की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय है योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण विधि। बातचीत करेंगे आज के मेहमान से भारत सोपोरी। नमस्कार सभी श्रोताओं का आज के स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वस्थ का मतलब बस बीमार नहीं होना नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम के श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अंबाला के योग एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कोच श्रीमती श्वेता शाह जी, जो 22 साल का अनुभव रखते हैं योग, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण विधि में। स्वागत अभिनंदन मैडम श्वेता शाह जी आज के कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता स्टूडियो में।
2: मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और यह मंच दिया। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ, चाहे वो इसमें से मेरी एक ही बात पकड़ पाए, फायदा हो पाए। यही मेरी आज इच्छा है यहाँ पर आने की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार। आपसे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण के बारे में। पहले आपसे जानना चाहेंगे योग का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना है, इसके समय और क्रियाएं क्या है जो हम सबके लिए लाभदायक हैं।
2: योग बेसिकली अगर हम शाब्दिक रूप से भी देखें, योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन। तो हम इस बात को जरा ध्यान से समझें कि जब हमारा मानसिक शारीरिक समन्वय होता है, हम उसको जोड़ पाते हैं, हम उसके साथ बराबर मिलकर एक समान होकर के काम कर पाते हैं, जी पाते हैं, सही मायने में हम उसे ही योग कहते हैं
1: जी।
2: और इसको हम कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं, और एक साधारण भाषा में या एक साधारण अर्थ में हम समझें तो लोग समझते हैं ये एक आसन है, ये एक क्रिया है। उससे बहुत ज़्यादा है, वो एक शुरुआत है जिससे आप अपने देह को तैयार करते हैं, उसको शारीरिक रूप से गठिला बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप आगे आने वाली बाकी सारी जो हमारी शास्त्रों के द्वारा दी गई स्पिरिचुअल जर्नी है, उन मेडिटेशंस को, उस ध्यान की अवस्था को, राजयोग को प्राप्त कर सके। तो ये जो है एक बहुत ही इलैबोरेट वर्ड है, इसमें कोई अंत ही नहीं है। तो हम इसको अगर लें कि बेसिक शब्दों में कि हमें अगर आसन का समय चाहिए तो बिल्कुल मान करके चलें कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको कुछ ना कुछ आपने खाया हुआ नहीं होना चाहिए, मिनिमम।
1: यानी कि खाली पेट ही योग करना चाहिए।
2: बिल्कुल, उसमें कुछ आसन हैं जो अपवाद की तरह हैं, जो डाइजेशन के लिए ही अच्छे हैं, जैसे वज्रासन है,
1: ठीक है,
2: कुछ उनको छोड़ दिया जाए जो आपको करना ही खाना खाने के बाद ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा व्हाट वी एक्सपेक्ट, और हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, देखा जाए तो योग पतंजलि से जहां से आया है वो ये कहता है, जो अब साइंस भी प्रूफ कर रही है कि एकादशी का जो व्रत है वो जापानीज ने पूरा रिसर्च करके बता दिया है कि हाँ, उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नियर अबाउट आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटों के बाद अगर आप प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन के, दोबारा से बनने वाले स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी को रिवाइव करते हैं, और बड़ा ही ल्यूक्रेटिव वर्ड है, बड़ा ही ऐसा शब्द है जो सबको बड़ा प्यारा लगता है, एंटी एजिंग, वो वाला जो काम है ना वो तब शुरू होता है। तो ये मान करके चलें कि इन आसनों को, इन क्रियाओं को करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए भोजन तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
1: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करना है और इन क्रियाओं को करने से जो स्वास्थ्य लाभ उनको मिलेगा, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कैसे करें जो पहली बार करने वाले हैं।
2: हाँ, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीम बनी हुई है कि जब तक हम कुछ खाते नहीं है तो दिमाग नहीं चलता है, खा लेते हैं तो नींद आ जाती है।
1: ठीक है,
2: तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हर चीज को मॉडरेशन में करें, बैलेंस होकर के करें, उतना करें जितना रिक्वायर्ड है। खाने की जगह हमारी उतनी ही है। कोई भी इंसान अगर अपनी मुट्ठी को बांध ले तो हमारे पेट का साइज बस उतना ही होता है, और उसके ऊपर हम जितना खाते हैं तो वो पेट फैलता जाता है। और फिर आजकल इतने बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, पेट को जी काटा जा रहा है, उसे छोटा किया जा रहा है, रीसाइज किया जा रहा है। हमारी कैपेसिटी सिर्फ एक मुट्ठी ही है, और बिल्कुल मान करके चलें जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जो मिक्सी चलाई जाती है अगर उसमें गुंजाइश ही ना हो, आपके जो बाइल जूसेस हैं, आपके पेनक्रियास का काम है, लिवर का काम है, हर दूसरा पेशेंट हम सुनते हैं लिवर कैंसर हो गया है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले तो खान पान सबसे प्राइम चीज है कि कितना खाया जाए और क्या खाया जाए। कुछ एक या दो चीजें, जैसे इंसोमेनिया बहुत पॉपुलर है, नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की भी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में मैग्नीशियम का कमी होना
1: जी।
2: तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर चीज खाइए लेकिन बैलेंस तरीके से खाइए। और दूसरी चीज, रात को जो हमारा पहला गुरुकुल सिस्टम था, संध्या समय बाद ना खाएं, कम खाएं। और अगर उसके लिए आपको मोटिवेट करना चाहूं तो एक बात कहूंगी कि जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो 7 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है। उसका कारण यही है कि जैसे जैसे सूर्य जो आपके शरीर में जठराग्नि बन करके आपके नाभि चक्र में बैठता है
1: जी।
2: उसका कार्य जो है वो क्षीण और बिल्कुल कम होता चला जाता है, तो वो आप इतना सक्षम ही नहीं होता है कि आप जितना उसमें डाल रहे हैं कि वो उसे पूरी तरह से पचा पाए। तो रात का जो खाना है या तो ना, या कम, या 7 बजे के बाद नहीं, ये होना चाहिए। कभी खा लिया, आप शादी में गए, सोसाइटी में रहते हैं, वो एक अलग बात है। कोशिश करें ऐसे रखेंगे तो फिर वो बैलेंस्ड जितना अमाउंट है बॉडी ले लेगी।
1: श्वेता जी, जो आपने शुरुआत करी इस कार्यक्रम की, आपने जो भी कहा वो हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जुड़ा है, खास करके योग। जो सरल भाषा में हम योग समझते हैं, मुझे ये समझ आ गया कि सिर्फ योग एक क्रिया करना नहीं है, योग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें क्रिया के साथ साथ अपने आहार का संतुलन और समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, और जो आपकी बातें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये श्रोताओं को किसी न किसी तरीके से फायदा करे। श्वेता जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कौन सा योग आसन है जो तनाव को कम करता है?
2: मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। अगर हम बात करें मानसिक, जो इंसान का इस समय करंट मेंटल स्टेटस है
1: जी,
2: वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड है। उसकी जो बैलेंसिंग है, जो शब्द हम बार बार बात कर रहे हैं योग, वो सही स्थान पर नहीं है
1: जी।
2: उसका कारण है क्योंकि हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी गैजेट्स में रह रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, हमारे पास नेटवर्क टावर्स हैं
1: जी।
2: आपका जो खाना है वो आपके बहुत ही कॉमनेस्ट चीजें हैं, एयर फ्रायर्स में बन रहे हैं, माइक्रोवेव में बन रहे हैं
1: जी।
2: कभी हमने इस चीज को सोचा ही नहीं है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है। वो कहीं और से हीट नहीं लाता है, उस खाने की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिसहार्मनी में रखता है। पहले वो उसको आपस में टकराता है, उससे जो हीट जनरेट होती है उससे खाना गर्म होता है। तो मतलब ये माने कि किसी दुश्मन को भी हमें उसे गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं, वो आपको डिसऑर्डर ही देगा। वो हमारे पुरानी कहावतें हैं ना, हम जैसा खाते हैं, जैसा खाया है वैसा ही हमारा तन बनेगा, वैसा ही हमारा मन बनेगा
1: जी।
2: तो अगर हमारा जो खान पान का तरीका है, ये सब चीजें हैं, उनकी वजह से जो हमारा जो मेंटल बैलेंस, जो हमारा मानसिक स्थिति को होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है, और चाहकर भी नहीं हो पाएगा जब तक हम उसको कंट्रोल ना करें, रेगुलेट ना करें। हर 2 मिनट बाद फोन उठा करके चाहे रील्स देने की इच्छा है, या हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसकी कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपनी शांति को कुछ देर की मोमेंट्री प्लेजर के लिए छोड़ सकते हैं, तो हम उसको उतनी देर के लिए कंटिन्यू करें, नहीं तो उसको वहीं थोड़ा रेगुलराइज करें।
1: तो क्या नहीं है ऐसा कि जो बहुत पहला समय था जहां पर ये गैजेट्स हमारे पास नहीं होते थे और तब हम समय से अपना काम भी करते थे और समय से खान पान भी करते थे और सोते भी थे, तो क्या इन चीजों का दुष्प्रभाव हमारी जीवन में बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में?
2: बहुत ज्यादा। आप ये देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अभी पीछे सचिन तेंदुलकर का भी एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो शायद साउथ में किसी जगह रिजॉर्ट है जहां पर पुराने तरीके से रहने के लिए उनको एक हफ्ते का स्टे दिया गया, जिसमें पूरा सस्टेनेबल हाउस है, उसमें सब कुछ जैसा पहले, फ्रिज भी जो मिट्टी के फ्रिज नीचे जिसमें सामान रख सकते थे, सस्टेन कर सकते थे, इको फ्रेंडली जिसको हमने अब नया टर्म दिया है, वैसे वाले घर, पुराने, उस तरह से वो रहने की प्रोविजन को इंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर आपको मिल कहाँ रही है। रिसर्चर्स बता रही हैं, दिल्ली में जब हम बार बार बात करते हैं कि लंग फिजिशियंस अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज से 25 साल पहले जब हम ऑपरेट करते थे तो लंग्स का कलर होता था पिंक, गुलाबी। अब हम जब भी करते हैं तो लंग्स निकलते हैं ब्लैक, ब्लैकिश टोन में। इट्स अ जर्नल ट्रेंड, ये नहीं है कि एक या दो,
1: चाहे वो स्मोकर है या
2: नॉन स्मोकर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से है, और बात यहां पर आती है कि हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी चॉइस है।

0: होने के नाते जो आपने बात बताई, इसको हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, हम यहां अंबाला की बात करेंगे, अंबाला के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम किस तरीके का प्रचार करें, आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, ताकि इन चीजों को वो समझे, जितना भी वो उन चीजों का इस्तेमाल कम कर सके उतना उनके जीवन के लिए फायदा होगा। प्लीज।
1: हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत आसान है बट हम उस तरफ सोच नहीं पाते हैं। जैसे अपनी बॉडी को एक जनरल डिटॉक्स दीजिए, मतलब हफ्ते में जो आप एक बार फास्ट रखिए, उस फास्ट को ऐसे वाला फास्ट नहीं कि एक घंटे बाद आपने फ्रूट चाट खा ली, एक घंटे बाद साबुदाने की टिक्की खा ली, एक घंटे बाद हमने आटे कुटू के आटे वाली रोटी खा ली, वो फास्ट नहीं है, वो उपवास नहीं है। अगर आप सही मायने में डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उस डिटॉक्स के लिए आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना पड़ेगा। उसके सिस्टम्स में बहुत सारा जो 24/7 वो आपके लिए काम कर रहा है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, कि आप जो हाइपरनेस में घूम रहे हैं, ओवर एक्टिव हैं, उसको थोड़ा आप ठंडा करिए, अपनी जठराग्नि को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत लॉयल है, वो इमीडिएटली अपनी ही बॉडी में अपने रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है। जब रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है तो उसको आपकी अंग्रेजी शब्दों में कहा जाए या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो दे कॉल इट ऑटोग्राफी, मतलब आपका अपने ही शरीर को खाना, यानी जो वेस्ट टॉक्सिन्स उन सबको भी बड़ी इजीली वो एनगल्फ करता है, जल्दी जल्दी कंज्यूम करता है। तो हमें हफ्ते में एक बार तो अपने आप को तसल्ली से डिटॉक्स करना बनता है। वो हो सकता है खान पान से, वो हो सकता है सोने से, वो हो सकता है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जो आपके शरीर की प्राण शक्ति चलती है वो ब्रीदिंग है। बहुत लोगों में बड़ा मिथ है कि हम जिम जाते हैं इसलिए हमारा वेट कंट्रोल होता है। अगर हमने कभी ध्यान से 7th-8th में साइंस पढ़ी हो तो हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो कंबशन करती है, जलाती है आपके फैट को
0: जी।
1: तो जब हम ब्रीदिंग फास्ट करें, चाहे वो एक जगह बैठ करके भी करें, तो आप तो अपने कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। इट इज नॉट जिमिंग, इट इज द टोन ऑफ योर ब्रेथ विच इज बर्निंग, जो आपके कैलोरीज को बर्न कर रही है। तो आपको चूज करना है, हर चीज चॉइस पर है, आप किधर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आप सोचें, आप समझें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए वो हफ्ते का एक दिन हमारे अपने शरीर के लिए। वैसे तो हम किसी को 10 रुपीज की भी चीज ऐसे नहीं देते हैं बिना मतलब के
0: जी।
1: तो जब अगर हम अपने शरीर के लिए जागरूक नहीं है, जागृति नहीं है कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हम उतना पैसा कमा करके भी खुश हैं, नहीं है ना, तो उसका कारण है क्योंकि आपके शरीर में हार्मनी नहीं है। उस हार्मनी को रीस्टोर करेंगे तो शायद कम चीजों में भी आप मुस्कुराते दिखेंगे,
0: संतुष्टि मिल सकती है।
1: मजदूर सबसे ज्यादा खिलखिलाता दिखाई देता है।
0: मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जब हम सैर के लिए जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, पर फिर भी हम अगर एक घंटा निकाल लेते हैं सैर के लिए और हम 3 या 4 या 5 किलोमीटर चल लेते हैं और उसके बाद आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो क्या वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का चलना, क्या वो हमारे सेहत के लिए किसी हद तक फायदेमंद है? क्योंकि जब हम आज, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट वॉचेस भी है तो वो आपको बता देती है कि आपने 400 कैलोरीज को बर्न किया, तो क्या वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है?
1: स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपका व्यक्तिगत प्रश्न है तो डिजिटल वॉचेस भी आपकी एनर्जी खा रही हैं
0: जी,
1: एथरिकली तो वो भी आपको कंज्यूम कर रही हैं रादर देन कि आप उसे एज अ कमोडिटी कंज्यूम करें
0: जी,
1: तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए।
0: ओके।
1: दूसरी चीज, अगर हमें शारीरिक रूप से सिर्फ सिर में दर्द है
0: जी,
1: तो हम क्यों चाहेंगे कि हम पैरासिटामोल खाएं और फिर वो लीवर पर भी इफेक्ट करे
0: जी।
1: तो ये हमें थोड़ा सा खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम उसे एक घंटे में ही 15 मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपका वेट लूज भी कर सकती हैं, आपको डिटॉक्स भी कर सकती हैं, आपको काम भी कर सकती हैं, यानी आप पहले से और शांत हो जाएंगे,
0: ठीक,
1: आप में ठहराव आना शुरू हो सकता है। दूसरा उसी में से हम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल करके अपने लिए एक डिटॉक्स जूस बना सकते हैं, वो भी एक डबल काम करेगा। अगर आप एक घंटा सैक्रिफाइस करने को तैयार ही हैं, तो जुडिशियसली उसको इस तरीके से प्लान करें कि वो 15-15, 20-20 मिनट मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं जो बेस्ट तरीके से

0: मेरे शरीर को स्वास्थ्य को अचीव करने में हेल्प कर सके।
1: ये हमें कौन समझा सकता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारा मकसद आज के इस कार्यक्रम का यही है कि हम भी समझें और हमारी श्रोता भी समझें और हम अंबाला को एक स्वस्थ होने की एक दिशा दे सकें।
0: बिल्कुल यही कहूंगी। देखिए, जिंदगी बहुत तेज है, शायद सबके पास इतना समय भी नहीं है कि वो खुद इस चीज को पढ़ें, रिसर्च करें, समझें। हाँ, आपका ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसे ही कुछ और टॉक्स आपके प्लेटफॉर्म से या कहीं और, कभी भी आपको लगता है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा अपना इंटरेस्ट, वही बात है कि कौन सी रील चलानी है आपको
1: जी।
0: आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ओवर द इयर्स आपकी बॉडी को बेनिफिट करेगी। और हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छा बताते थे, अगर हम अपने बुजुर्गों के घर में सुने तो शायद ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा हमारा। अगर हम एक बड़ा छोटा सा भी एग्जांपल ले, अगर पुराने जमाने में और अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बासड़े बनाए जाते हैं
1: जी।
0: पुराना खाना खाया जाता है, उसका कारण क्या है? अगर जो चपाती होती है वो जब पड़ी रहती है तो वो पुरानी होते ही, बासी होते ही उसमें B12 बढ़ जाता है। तो जिनकी एड़ियां गलती हैं या डिटॉक्स नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड शरीर में ज्यादा है, तो पैरों के दर्दों को बहुत आराम रहता है उससे। तो ऐसे ये सारी जो चीजें हैं बड़ी साइंटिफिक थी, अगर हम उन रिचुअल्स पे भी मुझे लगता है काफी हद तक स्विच बैक करें तो हमें फिर भी बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है जो हम करना नहीं चाहते। अब
1: बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है श्वेता जी, और हम श्रोताओं के लिए एक डाइवर्शन लेते हैं। श्वेता जी, क्या आप संगीत को भी हमारे स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा मानते हैं? अगर हाँ तो कौन सा ऐसा आपका मनपसंद गीत है जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं?
0: मैं ये चीज को मानती हूं कि अगर हमारे पास समय है तो कुछ समय हमें कुछ संगीत को भी सुनने के लिए देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द है म्यूजिक थेरेपी
1: जी।
0: और फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा ही इलैबोरेट टॉपिक है, मैं इस पर क्या बात करूं कि आपके हर ऑर्गन की भी एक फ्रीक्वेंसी है।
1: अच्छा।
0: और आपके शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी है। आप हार्ट बीट लेते हैं ना, ECG लेते हैं ना
1: जी।
0: तो इसी तरह से बाकी सबके भी है, और साइंस ने तो प्रूव कर दिया है कि प्लांट्स के लीव्स तक में ये फ्रीक्वेंसी है
1: जी।
0: उनका भी म्यूजिक बजता है
1: जी।
0: तो जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग्स को सुनते हैं, और ये बड़ा फैशन है, जितना ज्यादा आप लोगों से पूछेंगे ना उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा अब आप ही के प्लेटफॉर्म से बोलूंगी फूके हुए गाने होते हैं ना, दुखी वाले, वही पसंद आते हैं। तो ये मान करके चले, फिर बात आती है चॉइस
1: जी।
0: अच्छे गाने सुने, लाइट हार्टेड गाने सुने जो मन को भी अच्छे लगे, आपके आसपास के एनवायरमेंट को भी अच्छा फील कराए,
1: खुशी भी दे सके।
0: बिल्कुल। अगर आपको लगता है, अगर आप स्पिरिचुअली ज्यादा नहीं ग्रो कर रहे हैं या आप एथिस्ट हैं, तो भी आपके लिए ये इतनी म्यूजिक थेरेपी काफी है, नहीं तो आपके पास बहुत मंत्रोच्चारण है, वो लगाइए शाम को।
1: तो कौन सा गाना हम ले सकते हैं?
0: ए जिंदगी गले लगा ले, एक प्यारा सा गाना है।
1: श्रोताओं, ये चर्चा जारी है, आइए सुनते हैं श्वेता जी का ये मनपसंद गीत।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत एक बार फिर। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कितना अलग है। जहां आज के जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद से सभी लोग ग्रस्त हैं।
1: शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए। मुझे लगता है लोगों को इसकी बहुत जरूरत है
0: जी।
1: आजकल बड़ा ही फैशनेबल सा वर्ड है डिप्रेशन
0: जी।
1: अगर लोगों से बात करें तो मिडिल एज हैं, ओल्ड एज हैं, इवन छोटे बच्चे, आप स्कूल गोइंग बच्चों से पूछे उन्हें भी डिप्रेशन है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपने आसपास में बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को इकट्ठा किया है
0: जी।
1: खान पान में भी इकट्ठा कर लिया
0: हाँ।
1: और अपनी जड़ों को छोड़ दिया, अपनी उन चीज़ों को छोड़ दिया जो हमें सिखाई गई थी। उसके साथ साथ सही मायने में कहें तो अब हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम ज़्यादा है। कभी पहले खाने बनाने वाली कोई आती थी क्या?
0: नहीं।
1: क्या कभी पहले मिक्सी हुआ करती थी क्या?
0: नहीं।
1: या खेतों में हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे? कुछ भी नहीं होता,
0: खुद ही करते थे।
1: हाँ, तो हम मानसिक रूप से इतना फ्री हैं कि हम गार्बेज को, कचरे को वहां पर रख पा रहे हैं। हमारे पास उतना समय है कि हम उसे उतना कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने ही बिजी हैं तो आप कैसे सोच पा रहे हैं कि उसने कैसे कहा, उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, कब कहा, दोबारा कब कह सकता है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? ये सब सोचने के लिए दिमाग को खाली भी तो होना चाहिए
0: जी।
1: अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं तो आपके पास सोचने का समय होना नहीं चाहिए। और फिर बात आ जाती है चॉइस और विल पावर की
0: जी।
1: कि क्या सोचना है, मेरे लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ कितनी है, किस काम को करने से मेरा कितना फायदा होने वाला है, वो आप ही को डिसाइड करना है। सबसे बड़ी चीज है, एक 40s में आते आते तक पेरेंट्स, फादर मदर दोनों कहेंगे बेटा पानी का गिलास पकड़ा दो। ये सबसे बड़ा फैक्टर है अपने आप को एज करने का। तो जो लोग काम कर रहे हैं ना गांव में, वो गायों को भैंसों को चरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, वो आपको वहां पे 80 साल तक भी फिट दिख रहे हैं। तो आपको मान करके चलना चाहिए ब्रेन भी एक मसल है। अगर सही तरीके से आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं दी, हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है बॉडी में जो ऑक्सीजन को लेकर वहां जाने वाला है, हरी सब्जियां आप खा नहीं रहे हैं, तो ब्रेन बेचारा क्या करेगा? जरूरत से ज्यादा सोचेगा और डीजेनरेट करेगा हर रोज। हमने उसको काम दिया ही कहां है? मानसिक तौर से तो जो साइंटिस्ट बैठा है ना, बस वही काम कर रहा है मुझे लगता है।
0: क्या यही अवसाद का एक मुख्य कारण हो सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल है, 100%। अगर हम इस चीज को मान करके चले, आपका मूड बहुत खराब है
0: जी,
1: और आप बैठ जाएं और अपना ही कोई एक अर्जेंट काम याद करके शुरू कर दीजिए, पूछती हूँ 15 मिनट बाद वो वैसा टोन रहेगा या नहीं, आप भूल ही जाएंगे।
0: मेरे हिसाब से वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि
1: अचानक
0: वो आपने काम
1: से
0: में...
1: अचानक से मान लीजिए आपके घर फोन आ जाए, आपकी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं,
0: ठीक है,
1: तो आपके घर के डिप्रेशन का पेशेंट भी उठेगा और भागेगा,
0: अरेंजमेंट करेगा, साफ सुथरा होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए,
1: बिल्कुल। तो आप उनसे पूछिएगा आधे घंटे बाद कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड है, एक्सेप्ट सीवियर केसेस
0: जी जी,
1: जो उस स्टेट को परमानेंट बॉडी में हैबिचुअल बना चुके हैं।
0: आपने जो अभी शुरुआत में बात की, क्या ऐसा है कि हम साधारण लोगों ने या हर एक व्यक्ति ने अपने माइंड में, अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को जोड़ दिया है जिनकी जरूरत नहीं है?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने टीवी सीरियल्स देखते हैं, कितना ज्यादा आप देखिए, बिग बॉस पसंद है, ये पसंद है, वो क्या है? लेग पुलिंग है, रोस्टिंग करना है। अब इसमें बड़ी बेसिक सी बात आती है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी
0: जी।
1: हर्ड मेंटालिटी का मतलब है, कभी आप एप मैन थे, कभी पुराने जमाने में गुफाओं में रहते थे, तब आपको लीड करके चलने की जरूरत होती थी क्योंकि एक ग्रुप काम करता था कि कभी हाथी आ गया या शेर आ गया तो हम कैसे बचेंगे, तो मिलजुल करके हमें चलना चाहिए
0: जी।
1: और इसको हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, और एक उसमें लीडर हुआ करता था। अगर हम मान करके चलें, अगर हम अपने आप से अवेयर हैं, तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मॉनिटर की जरूरत हमें तब है जब हमें ये पता है कि ये नहीं पता है कि हम क्लास में बोल रहे हैं, गलत है।
0: ओके।
1: अगर हमारी वो हर्ड मेंटालिटी को हम हटा दें तो हमारे आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे कि दरानी जठानी में मैं बड़ी वो छोटी, उस पड़ोसी से मेरी कार बड़ी, या मेरा ऐसे ज्यादा बेटर और उसका ऐसे, ये हर्ड मेंटालिटी ही है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, किट्टी पार्टीज में भी ग्रुपिंग हो जाती है, छह लोग एक तरीके की सोच रखेंगे और 10 लोग एक तरीके की सोच रखेंगे और वो एक दूसरे को खींचते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड दिखेगा आपको, कोल्ड वॉर इसका विटनेस है। आज भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या सोशलिस्ट इकोनॉमीज इसका विटनेस है। वो जो हर्ड मेंटालिटी है उसकी हमें अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम सब खुद को ही मैनेज कर लें तो क्या ऐसा है किसी को बताना पड़ेगा कि आप ये करिए? क्लास में अगर हर बच्चे को मालूम है मुझे चुप रहना है तो मॉनिटर की आवश्यकता है ही नहीं। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं आपको पढ़ना है, आप एक मिडिल एज पर्सन हो फिर भी आपके एल्डर्स आपको घर में बताएंगे बेटा टाइम से रात को आ जाना, तो क्या आपको नहीं मालूम है? मालूम नहीं है ये बात नहीं, आप उसको रियलाइज नहीं करते हैं, हम उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या करना चाहिए।
0: तो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए जो इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं उनको किस तरीके से ये समझाया जाए कि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे आने वाली जो जिंदगी है उस पर हम एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं।
1: डूज एंड डोंट्स बहुत बेसिक है, जो पुराने जमाने के लोग जैसे रहा करते थे ना बिल्कुल वैसा ही जीवन होना चाहिए, सरल स्पष्ट। आप दो झूठ बोलेंगे तो 10 और घुमाने पड़ेंगे, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। स्पष्ट रहिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको रफ होकर रूड होकर ना बोले, प्यार से बोले मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऐसा ही मेरी कैपेसिटी है, तो उसको उसी वे में हैंडल करिए। अपने आप को लीपा पोती करके प्रेजेंट करना कि हम बहुत अच्छे हैं हम इतना भी हैंडल कर लेंगे होगा है नहीं, फिर स्ट्रेस में आएंगे, फिर घर में आके सबको डांटेंगे, काम भी चार खराब करेंगे और अपना हेल्थ भी डाउन करेंगे
0: और स्ट्रेस भी होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को जितना सरल रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, गोल ओरिएंटेड रखेंगे कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या है, व्हाट इज योर टारगेट, तो आप उतने ही क्लैरिटी से अपनी डे टू डे रूटीन को भी करेंगे, उतना कियोस भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा।
0: इसके साथ जुड़े दो प्रश्न मैं करूंगा, क्या जो गुस्से वाला होता है या ऊंचा बोलने वाला होता है क्या वो भी स्ट्रेस और अवसाद से ग्रस्त होता है?
1: बिल्कुल, इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी अटेंशन डेफिशिएंसी, अगर मान लीजिए घर के एक मेंबर को लगता है कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वो पक्का चिल्लाएगा
0: ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए।
1: इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अटेंशन।
0: okay.
1: ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिनको प्यार नहीं मिला, एक वो एक बड़ी कॉमन सी बात कही जाती है कि माँ से दिन में कम से कम 6 से 7 बार प्यार से बैठे, उन्हें गले लगाएं ताकि आपकी बॉडी के जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं उसमें से टैप हों, तो वो अब मिलता नहीं है, टाइम है नहीं किसी के पास। वही बात घुमा फिरा करके आती है, बेसिक रूटीन्स पर आइए, वापस उन चीज़ों पर जाइए, सिंप्लीफाई करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए चीज़ों को, तो आप उतना ही पीस में आ जाएंगे। और नेचुरली इन सब को कंट्रोल करने की, रेगुलराइज करने की, राइट डिसीजन लेने की पावर हमें 100% हमारा योग और आहार न्यूट्रिशन देता ही देता है। आप जितना तला हुआ खाएंगे, आप एक समोसा खाएं, एक भटूरा खाएं, आपके ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम अगले 10 घंटे के लिए ऑलमोस्ट स्लीप मोड पर आ जाता है
0: जी,
1: तो वो आपको चूज करना है
0: कि आपको किस तरीके की जिंदगी
1: चाहिए।
0: जो प्रश्न मैंने सोचे थे आपसे पूछने के लिए, पर जो ये सब्जेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य, ये इतना बड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी है, मैं इस प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट करता हूं, शायद हमें भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है जो हम सबको सचेत होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, जब हम रात को सोते हैं, सोते टाइम हम आराम की नींद कैसे लें? क्योंकि सोते टाइम अगर कोई विचार हमारे मन में या दिमाग में है उसको हम कैसे ऑफ करें, उसको हम अपने उस समय से अलग कैसे करें, इसका क्या कोई तरीका है?
1: बिल्कुल है, अगर आप संध्या समय में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बेसिक जो सभी को आती भी होंगी, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, इन सबको अगर हम करते हैं तो ब्रीदिंग से जो ब्रेथ है हमारी बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्रेथ से
0: जी.
1: एक फैक्टर वो हम कर सकते हैं, मेक इट अ पॉइंट. अगर आप स्कूटर भी चला रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर आप वहां पर भी डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी काम करता है. मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं कहीं किसी ड्यूटी पर गई हूँ तो मैं वहां खड़े खड़े अपने फिंगर्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाती रहती हूँ. कुछ जो योग की क्रियाएं या ब्रीदिंग है जो मैं खड़े हुए वहां कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ. वो क्या है, मेरी चॉइस है कि मुझे खड़े रहकर इधर उधर देखना है या वो काम करना है. आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं. तो जब हम इन चीजों को रूटीन में लाते हैं, तो ये हमें कुछ एक बेटर स्टेट में ले आते हैं कि हम धीरे धीरे धीरे धीरे रिकूप कर सकें, वापस एक शांत और वेरी सोफिस्टिकेटेडली हम उस चीज को हैंडल कर लें. दूसरा इसमें आता है, रात को हम मोबाइल का कम से कम सोने से पहले 1.5-2 घंटा पहले यूसेज बंद कर दें, क्योंकि जो ब्लू लाइट है जो इसमें आपकी स्क्रीन टाइमिंग का जो हिसाब किताब है वो बहुत गड़बड़ा देता है आपकी हारमोनी को. आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो योग बताती है वो सूर्य और चंद्र नाड़ी से चलते हैं, जो कि सूर्य और मून की पोजिशनिंग से काम करते हैं. तो उसमें जैसे जैसे बॉडी को मैसेज मिलता है कि संध्या हो गई है, रात होने का समय है,
0: बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मोड में आनी शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब है कि अगर हमने मोबाइल सोने के समय तक यूज किया तो वो एकदम बॉडी जो है वो लाइव है, वो सोने के स्लीपिंग मोड में नहीं, अभी नहीं गई है.
1: बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट मशीन्स कि हमने बटन दबाया ऑन हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया. इट टेक्स टाइम. आप है एक 50 trillion सेल्स का सेट
0: जी,
1: तो उसके अंदर एक एक सेल में इतनी मेमोरी है कि अगर मैं 8 storied buildings को मैं इकट्ठा खड़ा कर दूं, इतनी मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं ना संचित कर्म
0: जी.
1: आपके जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऑटो मोड में एकदम से ऑफ हो जाएंगे. इट टेक्स टाइम, उसको टाइम चाहिए.
0: उसके लिए हमें एक प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे खास करके श्रोताओं को मैं एक बार फिर बताऊं कि जब हमारे सोने का समय है, तो श्वेता जी कह रही हैं कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप 2 घंटे पहले उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लीपिंग मोड में जाएगी. जब आप सोने जाएंगे तो आप चैन की नींद सो सकेंगे. श्वेता जी, मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, खास करके जो ये वाला सेक्शन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में.
1: इससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी,
0: प्लीज,
1: कि वही रात की जो नींद है
0: जी,
1: वाईफाई को प्लीज बंद करके सोइए, क्योंकि आपका ब्रेन भी उन सारे के सारे मैग्नेटिक मोड्स को पकड़ता है. आप ये मानकर चलिए, आपको क्यों बोला जाता है कि आपको किधर सिर करके सोना है, किधर सिर करके नहीं सोना है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई हैं हमारे हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म में. वो क्यों सिखाई गई, क्योंकि आपकी बॉडी भी एक मैग्नेटिक पोल के साथ काम करती है, और अर्थ भी एक पूरी पूरी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना. तो अगर हमारा उसमें मॉडर्म चल रहा है तो वो भी आपके एंटीनास को लाइव रखेगा. और अगर हम बात करें तो हमारे पुराने जमानों में शिखा रखी जाती थी
0: जी.
1: वो एक तरीके का एंटीना ही था. वो आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब बातें हम बड़ी लॉन्ग उसमें चलते हैं, तो वो ये क्राउन चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो वाईफाई को शट डाउन करिए प्लीज. उससे आपकी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड्स, हार्ट इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ना, वो आपको पूरा ECG तो दिखाई देता है
0: जी.
1: आप उसमें देख सकते हैं. ऐसी हर बॉडी के ऑर्गन की अपने एक कार्यक्रम करने की सिस्टम की प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है. तो वो 100% वाईफाई बंद करके सोना चाहिए. उस टाइम तो हमें जरूरत भी नहीं है
0: जी.
1: तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं, और इसमें हमें कोई टैक्स भी नहीं है
0: जी.
1: बहुत सारे माइग्रेन्स, हेडेक्स वहीं स्नब हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं अगर वाईफाई भी बंद हो जाए तो.
0: जब हम सोते हैं तो हम अपने मोबाइल को अपने सिराने के नीचे रखते हैं, वो कितना घातक है हमारे लिए.
1: पूर्णतः अब इसको मान के चले तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है अगर आप फोन अपने आसपास भी रख के सोते हैं. एटलीस्ट आप थोड़ा दूर रखें, बहुत अच्छा तो ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं तो कमरे से बाहर रखें, उसको स्लीप मोड में डाल दें, एयरप्लेन मोड में डाल दें, कि कम से कम सिग्नल्स जो हैं वो आपकी बॉडी की हार्मनी को डिस्टर्ब्ड करें.
0: आज का हमारा ये कार्यक्रम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा, तनाव और चिंता से बचने के लिए कौन सी साधारण आदतें अपनाई जा सकती है.
1: हमें अपने कामों को शॉर्टलिस्ट करके तैयार रखना चाहिए. हमारे पास अब अगर अभी एक बार बैठ जाए और लिस्टिंग करना शुरू करें ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद हम इसमें से प्रायोरिटाइज करें
0: जी.
1: एक पहली कैटेगरी नंबर वन की निकालें. कुछ चार या पांच काम से ज्यादा काम निकलेंगे नहीं आपकी पूरी लिस्ट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी.
1: उसके बाद सेकेंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड. फोर्थ ग्रेड तक तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा. होता क्या है, हम थर्ड फोर्थ ग्रेड के कामों में ही इन्वॉल्व रहते हैं और फर्स्ट सेकेंड रह जाते हैं, फिर वो हम मेंटल प्रेशर में आते हैं. स्ट्रेस इज नॉट अ वर्ड, मतलब अगर हम मान के चले ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है. मैनेज हम करते हैं वैल्यूएबल्स को, असेट्स को, अच्छी चीजों को. मैनेजमेंट वर्ड वहीं से बना है, सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहीं से बना है
0: जी.
1: लेकिन जहां ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ थिंग टू बी मैनेज्ड, इट इज अ सिचुएशन. जब देर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंडक्ट,
0: स्ट्रेस इवॉल्व्स.
1: हाँ, आपने जो रूटीन छोड़ी, जो प्रायोरिटी वाला काम छोड़ा, वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, दैट विल बैकफायर, और फिर वो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में हार्म करेगा ही करेगा.
0: श्वेता जी, हम मुझे लग रहा है कि हमें एक और कार्यक्रम करना होगा ताकि हम और विस्तार से लोगों से जुड़ पाएं और उनको कुछ दिशा निर्देश दें. और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अम्बाला के लिए काम करते हैं और अम्बाला के लोगों को हम एक सही दिशा दे पाएं. यहां पर गुंजाइश है एक और गाने की और हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को बातचीत के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करें. तो कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं और हम श्रोताओं को भी सुनाएं?
1: एक हल्का फुल्का सा गीत लेते हैं, एक प्यार का नगमा है.
0: श्रोताओं आइए सुनते हैं श्वेता जी का ये मनपसंद गीत.

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्वेता शाह जी से। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए संतुलित आहार की भूमिका कितनी जरूरी है।
1: खाने पीने से ही हम अपने शरीर को रेडी करते हैं
0: जी।
1: आप ज्योग्राफिकली भी या अगर दूसरी तरह से भी एनालाइज करें, मोमोज हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं था
0: जी।
1: और उसके साथ वो जो बहुत तेज मिर्च और लहसुन की चटनी मिलती है वो भी नहीं था। उसका कारण क्या है कि जिस जगह से वो आया है डेलिकेसी, वहां पर कच्चा मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, वहां की बॉडी के, वहां के जो टेम्परेचर इतने मिनिमम में रहते हैं, वहां पे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उनको तेज मिर्च चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे यहाँ के लोगों का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ का जो रहन सहन है, उसी हिसाब से हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें इतनी तेज मिर्च खाने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट उतना, हमारे जेनेटिकली हमारी इतनी बॉडीज अडाप्टिव नहीं है कि हम उस कच्चे मैदे को अच्छे से पचा सकें। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कम खाएं। जितना तेज मिर्च खाएंगे, जितना मसाले तेज करेंगे, वो उतना ही आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करेंगे, हाइपरनेस क्रिएट करेंगे। जितना ब्लैंड खाना होगा उतना ही शांत इंसान आपको दिखाई देगा।
0: यानी कि उसको हम तामसिक खाना बोल सकते हैं।
1: यही क्लासिफिकेशन इसीलिए उन्होंने बनाई है ना हमारे शास्त्रों ने, कि ये ऐसा है ये ऐसा है, उसका कारण है। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो तामसिक बोली गई, अब इस बारे में बात की जाए तो शायद मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है इस बारे में बात करने की। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है हर समय, वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें या कैसे करें। पहली चीज साइंस, बेसिक साइंस, कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट प्लांट ने कन्वर्ट किया एनर्जी को, प्लैनेट पे एनर्जी सन से ही आ रही
0: जी।
1: है, उस प्लांट फूड को अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं तो आप पहले फेज पर हैं। अगर उस प्लांट को पहले डियर ने खाया, डियर से लॉयन ने खाया, तो क्या लॉयन के पास उतनी एनर्जी जाने वाली है?
0: मेरे हिसाब से नहीं,
1: बिल्कुल भी नहीं। तो जितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही आपके अंदर मॉलिक्यूलर, जिसको हम योग की भाषा में कहें तो प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है
0: जी जी।
1: तो अगर हम पहले तो अपने फूड को प्लांट बेस्ड रखें, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए हम क्रिलियन फोटोग्राफी की बात करते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी जो हमारे ऋषि मुनियों ने आमतौर से आंख बंद करके ही सब कुछ देख लेने का जो उनकी कला थी, वो अब थोड़ा साइंस ने भी अपने आप को डेवलप किया है। क्रिलियन फोटोग्राफी रहती है, एवरीबडी कैन सर्च, आप देख सकते हैं, सब गूगल पे आपको मिलेगा
0: जी।
1: तो अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें तो एक रॉ फूड की, जो अगर आप एप्पल काटें या कोई भी फ्रूट काटें या कोई भी ऐसा रॉ फूड जो आप सीधा खाने वाले हैं, उसके अराउंड में एक वॉयलेट एनर्जी का लाइन दिखता है,
0: ठीक है,
1: जो फुली स्पार्कलिंग रहता है, फुल ऑफ एनर्जी,
0: ठीक है।
1: वही अगर आप लोफ ऑफ मीट में देखेंगे यू विल फाइंड हार्डली एनी एनर्जी।
0: ओके,
1: हार्डली एनी एनर्जी। तो आप कर कह रहे हैं सिर्फ जुबान का स्वाद ले रहे हैं, खाना तो जा नहीं रहा है अंदर। दूसरी बात आती है फ्रिज में रखा हुआ खाना
0: जी।
1: 40 मिनट्स के बाद खाने की वैल्यू, जो हमारा जो यूनिवर्स को समझाने की जो बेसिक हमारा सनातन का तरीका है, कथाओं से शिव तत्व जो है वो तोड़ने का तत्व है, तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो साइंस कहता है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो फूड की जो एथिक वैल्यू है, जो उसमें गुणवत्ता थी, प्राण शक्ति थी, वो घट गई। और दो दिन बाद आप फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, 6 दिन बाद निकाल करके खा रहे हैं, तो वो इट इज यूजलेस, उसमें कुछ है ही नहीं।
0: न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी खत्म हो गई। आपका कहने का मतलब है कि हम जो भी कुछ खाएं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, अगर आप उसको, आप मान के चलिए पाठ पूजा को अगर हम छोड़ भी दें, किसी भी गुरुद्वारे में मंदिर में खाना क्यों इतना अच्छा लगता है लोगों को भंडारे का, कारण क्या है, उसी समय बना और उसी समय कंज्यूम हो गया
0: जी।
1: तो जितना फ्रेश कुक्ड फूड होगा, पहले तो पकाना ही कम चाहिए, चलो जितना भी, और हम इतना साधु संत तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही इस मोड में आ जाएं, बट जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए फ्रेश फूड इनटेक एंड नॉट मोर देन अ डे। मतलब वो जो फ्रिज का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है,
0: नहीं है।
1: जो बना है जैसे बना है उसको विद इन अ डे कंज्यूम करिए,
0: यानी कि उतना ही बनाइए जितनी की जरूरत है,
1: बिल्कुल।
0: नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा उसको बनाया जा सकता है, ताजा बनाया जाए और ताजा खाया जाए,
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज के डेट में मोटापा है उसको कम करना है या उसका बढ़ना है, तो क्या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या उसका उसके साथ कोई कनेक्शन है?
1: बिल्कुल है। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग आपस में लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं कि इसको तो कुछ भी खिला दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको तो घी का पीपा पिला दो तब नहीं फर्क पड़ने वाला, और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी पीते हैं तभी हमें बहुत मोटापा चढ़ता है। इसका कारण क्या है?
0: हाँ, इसका कारण
1: कि आपका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है बॉडी का। हर बॉडी अपने हिसाब से जो आप खा रहे हैं उसको एसिमिलेट करने के लिए पहले तोड़ती है
0: जी।
1: तो उस तोड़ने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, फिर आ जाती है बात की सही खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ताकि अगर एक सिंगल, मैंने पहले भी बताया कि अगर एक सिर्फ मैग्नीशियम कम हो जाएगा ना, तो आप सो नहीं पाएंगे रात को। तो वो ही है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक चीज होगी तो दूसरी अब्जॉर्ब होगी। डी, विटामिन डी होगा तो आपका कैल्शियम जनरेशन प्रॉपर होगा, घुटनों की दर्द, बैक के एक, ये सब कनेक्टेड है। तो आपको सब चीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए और सही टाइम पर चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो सही चले। कुछ योगिक क्रियाएं भी होती हैं जो अगर गड़बड़ा चुकी हैं तो उनको हम सेट
0: को सेट किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उन, ये आपका शुगर है वो क्या है, आपका एक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, जो नेचुरल बनना चाहिए था वो आर्टिफिशियली लेना पड़ रहा है
0: जी।
1: तो वो सारे जो चीजें हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं
0: तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को, योग, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में किस तरीके से इन तीनों चीजों का समावेश करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं?
1: एक घंटा आप निकालिए, उसमें डिसाइड करिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सही खाना है। फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को जरूर ऐड करिए, वो बेस्ट हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए
0: जी।
1: फिर उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें, माइक्रोवेव का काम कम करें, वाईफाई का काम कम करें, अपने इंटरनेट का यूसेज लिमिटेड करें, स्क्रीन टाइम को थोड़ा घटाने की कोशिश करें। आप जो भी देखते हैं वो क्रिएट करते हैं, आप जो भी समझते हैं वो अपनी बॉडी में एम्पलीफाई करते हैं। कुछ कहा भी जाता है कि हस्बैंड वाइफ भी इतने सालों बाद भाई बहन से दिखते हैं, उसका रीजन क्या है? एक जैसा न्यूट्रिशनल डाइट जा रहा है
0: जी।
1: एक जैसा एनवायरमेंट है, एक जैसी एथ्रिसिटी हो जाती है, तो वो जो एथ्रिक कनेक्शंस हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, एक से हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स भी एक से दिखने लगते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी रूटीन्स को, खान पान को इस तरह से रखें कि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे। डूज एंड डोंट्स में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालूम सबको सब कुछ है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और डिसाइड करते हैं तो विल पावर नहीं शो कर पाते हैं।
0: तो अगर हम इसको सही दिशा में अपनी जिंदगी को लेके चलें, अपने बॉडी को लेके चलें, तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल बढ़ सकती है। पुराने, आज से 30 साल पहले वाली जो जनरेशन थी वो आपसे ज्यादा काम कर लेती है जो आज के 40 इयर्स के लोग काम कर सकते हैं
0: जी जी।
1: उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ आपसे बेटर खाया है। आप देखिए कितनी बड़ी मिथ है कि देसी घी में खाना जो बनाया जाता है वो, पहले बुजुर्ग होते थे उबालते थे सिर्फ दाल और उसके बाद ढेर सारी घी ऊपर से डाल के देते थे। उसका कारण क्या है? आप जब घी में सब्जी बनाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खत्म हो जाता है, वो आपकी वैल्यूलेस जैसी चीज हो जाती है।
0: अच्छा।
1: तो आप उसको कच्चा खाएं। आप जैसे पिनिया बनाते हैं तो तल तल के बनाते हैं, आप सारी चीज उसमें फ्राई करते हैं, आप उसको रोस्टेड वे में, आई माई सेल्फ मेक द होलसम डाइट ऑफ न्यूट्रिशन, मेरा पूरा एक रेंज भी है उसके लिए। तो वो आपको सारा कुछ देख करके, पुराना टाइप में जैसे छाछ का कंजम्पशन बढ़ाइए, लस्सी का कंजम्पशन बढ़ाइए, अपने कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करिए, वही है बेसिक साइंस है। CaCO3 आपका जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम से बनता है, मतलब कि आपकी हड्डियां हर बार खत्म होती हैं जितनी बार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करिए, वहीं स्नब करिए कि नहीं, इसकी जगह मैं जलजीरा उठा लेता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ,
0: नींबू पानी
1: ले सकते हैं आप, बाहर जाए गन्ने का जूस लें, जहां जो पॉसिबिलिटी है आप उसको ऑप्ट करें। ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि आप बिल्कुल ना करें, लेकिन मिनिमल कर सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं,
1: बिल्कुल, वो आपको कुछ फायदा दे।
0: श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपको फिर आमंत्रण देना होगा। बहुत सारी बातें आज पूरी नहीं होगी क्योंकि समय हमें बता रहा है कि समय पहले ही पूरा हो चुका है और आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अम्बाला के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: इस चीज को मान करके चलें कि मेरी तहे दिल से इच्छा रही है और मैं शुरू से ये काम करती भी रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझें कि वो खुद के मॉनिटर बने। अगर वो खुद के मॉनिटर हैं तो उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: अगर खुद का मालूम है कि ये चीज सही है और ये मुझे करनी है तो वो खुद से भी करेगा, उसके लिए वो कुछ भी ढूंढेगा, कोई भी कंटेंट भी पढ़ेगा, कुछ भी रिसर्च भी कर डालेगा। अगर किसी को कोई सूट बहुत पसंद है ना तो अल्टीमेटली वो हस्बैंड को कन्विंस कर ही लेगी कि हाँ भाई मुझे तो लेना ही लेना है। तो इट द मीन्स एंड मेजर स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू डिसाइड। आपका लाइफस्टाइल आपके चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है तो आपको चूज करना है करेक्ट तरीके से, वही मेरा मैसेज है और वो हर चीज पर इम्प्लीमेंट होता है
0: जी। अगर अम्बाला का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई राय या जानकारी लेना चाहता है, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है? प्लीज वो भी बताएं।
2: जी बिल्कुल, मैं खुद एक अपनी फूड रेंज आइटनरी बनाती हूँ जिसमें मैं लोगों की डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए उस ऑर्गेनिक सल्फरलेस नॉन फ्राइड या नॉन प्रिजर्वेटिव मेमोरी बाइट्स इस तरीके की जो आइटम्स हैं उसमें रहती हैं, जो कि कुछ फ्रूट क्रशेस हैं या चटनीज हैं, डिटॉक्स वाटर्स हैं, पिन्नीज हैं, बाइट्स हैं। और इन सब के लिए मुझे इस नंबर पर 3 से 8 बजे तक कांटेक्ट किया जा सकता है और वो नंबर है 8307000025, यानी 8307000025।
0: अम्बाला कैंट में जो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है, यहाँ आके आपको कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया लगा, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा सके कि वो कम से कम अपने प्रति जागरूक हो जाएं, जिस नींद में या जिस सुषुप्ति में वो हैं उससे थोड़ा सा
0: वो जाग जाएं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि जो अब बात आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा लगता है कि छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है
0: जी,
1: तो वो चीज अगर घटाई जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम अपने श्रोताओं को आपके एक और मनपसंद गीत के साथ छोड़ना चाहेंगे, आप उस गीत के बारे में बताएं और उसके बाद हम लेते हैं इजाजत।
1: हाँ, वो गीत है बड़े अच्छे लगते हैं।
0: तो श्रोताओं आप मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
1: जय भारत।
3: बड़े अच्छे लगते हैं
4: क्या?

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। आज के मेहमान थे श्रीमती श्वेता शाह। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो वितस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: वितस्ता रेडियो आपके जीवन का प्रवाह।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार सुनाता हूं आपको मैं एक से लेकर एक बढ़कर कहानियां, कभी आपके दिलों में दस्तक देने की कोशिश करता हूं, कभी गुदगुदाने की कोशिश करता हूं, और कभी मेरा प्रयास होता है कि आपके दिल के अंदर छुपी हुई उस हंसी को आपके लबों पर लेकर आऊं। तो दोस्तों, लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में आप मुझसे कई बार कई प्रकार की कहानियां सुन चुके हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज लेकिन जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये थोड़ी सी अलग हटकर कहानी है। इस कहानी के बीच में आप मुझसे सुनेंगे कि मक्खनबाजी इस तरह से भी हो सकती है। अब थोड़ा सा तो आप भी गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे भी ऐसी आज किस मक्खनबाज की बात नरेश शर्मा लेकर आए हैं। तो आइए सीधा चलते हैं उस मक्खनबाज के पास और सुनते हैं उसकी हरकतें। तो हुआ यूं साहब कि एक कर्मचारी कंपनी के सभी कामों से बचता था, लेकिन बॉस को मक्खन लगाने में बड़ा माहिर था। वो बॉस के आदेश के अनुसार सभी काम करता था, ऑफिशियली काम को छोड़कर ना और भी बॉस के जितने निजी काम हुआ करते, जैसे उनके बेटे की कॉलेज की फीस जमा करना, बेटे की डांस कॉस्ट्यूम खरीदना, उनकी कार की सर्विस कराना, उनके बेटे का प्रोजेक्ट पूरा करना, यानी लगभग सब कुछ करता था। इसलिए जाहिर था कि वो बॉस का पसंदीदा था, उसे सभी प्रोत्साहन और इंक्रीमेंट समय से ही मिल जाते थे। और दूसरी तरफ बाकी कर्मचारी ऑफिशियली काम पूरा करने पर भी बॉस की डांट ही खाते रहते थे। एक दिन अचानक बॉस की मां के निधन की खबर मिली। सारे कर्मचारी बहुत उदास चेहरे के साथ उनके घर भागे, और हैरानी की बात यह कि ऐसे वक्त में वो बंदा बॉस के घर के आसपास नहीं दिख रहा था, जिसके बारे में हर कोई अलग अलग कयास लगा रहा था कि आज वो आदमी गैरहाजिर कैसे है इस मौके पर। अब अन्य कर्मचारियों ने माल्यार्पण से सुसज्जित वाहन की व्यवस्था की और बॉस की मां को शमशान ले जाया गया। लेकिन जब सब शवदाह गृह पहुंचे तो पहले से ही 16 शव बिजली से चलने के लिए कतार में भरे थे। प्रत्येक शरीर को जलने में लगभग 1 घंटा लग रहा था, यानी कि कुल मिलाकर सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार संभव नहीं था। बॉस का चेहरा लाल हो रखा था, बाकी सब लोग बहुत परेशान थे। अचानक कतार में पड़े 16 शव में से दूसरा शव उठ के बैठ गया। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे ना, सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। बाद में पूर्ण आश्चर्य के साथ पता चला कि यह कोई शव नहीं था, ये तो वही बंदा था। उसने तुरंत बॉस को बताया, श्रीमान माफी चाहूंगा, सुबह से आपके घर नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे ही आपकी माता जी के देहांत का समाचार सुना और देखा कि सब आपके घर की तरफ भाग रहे हैं, तो ख्याल आया कि पहले यहाँ का भी इंतजाम देख लूं, और देखा तो पाया कि जब आप बॉडी लेकर आएंगे तो शाम तक मुश्किल से ही आपका नंबर आ पाएगा, तो आज बस आपकी खातिर सुबह से ही आपकी माताजी का नंबर लगा दिया। सर सुबह 8 बजे से ही लाश बनकर लेटा हुआ हूं। सब उसकी प्रतिबद्धता को देख कर ना दंग रह गए, और बॉस कभी उसको बड़े प्यार से देखता और कभी बाकी कर्मचारियों को खा जाने वाली निगाहों से। क्यों, कभी देखा है आपने ऐसा मक्खनबाज? और कैसी लगी आपको हमारी आज की मक्खनबाज पेशकश? हमें हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर जरूर बताएं। जल्द ही मिलता हूं आपको एक और नई लघु कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तुझ बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 90.0 FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
1: सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

काश तुम होते हमारे इन बहती हवाओं के संग तैरते, हम दोनों पानियों में पत्थर फेंकते, इस पानी को मैं तुम्हारी हथेली में रख कर ताकि अपना अक्स ढूंढ सकूं और माजी के दर्द को चंद पलों के लिए भुलाने की कोशिश करूं। काश तुम हमारी परछाई बन पाते, मैं पकड़ता और तुम भागते और मैं पकड़ने की कोशिश करता। काश तुम बादल बनते, बरसते और मैं भीग जाता। तुम आकाश के किसी कोने से मुस्कुराते और मुझे इन हवाओं के हवाले करते।

तुम्हारी सुरीली आवाज रूह से बात करती, यकायक जिस्म पिघलती। और जन्म होता फिर से हमारा तुम्हारा इस वादी गुलपोश में, यहां दर्द के इन नखमों को हम अलविदा कहते, नई सुबह के साथ ही इन साजों पे छेड़ते मखमली धुने, तुम्हारी आवाज से आवाज मिलाते शायद एक गीत को हम दोनों जन्म दे पाते, एक नई अदाओ अंदाज के साथ।

खामोशी का एहसास अगर है तो बदलाव लाजमी ही है। अगर वक्त के साथ साथ हम चलें तो जाहिर है ये आकाश भी हमारी रहनुमाई करेगा। जमीन के हर जुज में तड़प है, कसक है और बेचैनी तारी रहती है। हम जी या मरे, जमीन व आसमान को इससे क्या लेना, सिर्फ यहां की धाराओं में बहना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, यहां कुछ भी हमारा नहीं, खाली आए और खाली जाएंगे, शायद कुदरत का यही दस्तूर है।

यहां आज इन प्यार की बरसातों में कोई तो आए पास बैठे, शायद फिर से ये मन बहल जाए। पिछली रात के पिछले पहर में जब ख्वाब में तुम भीगते हुए आए, रुक गई बारिश, घने बादलों में जैसे चांद दुल्हे का लिबास पहने सितारों की बारात लेकर तुम्हारी चौखट पर दस्तक दे रहा हो, जैसे कह रहा हो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अपनी पनाहों में संभाल के रखेंगे। तेरा शुक्रिया, आते तो हो ख्वाब में ही सही।

लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियों को नाप लिया करते थे। इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे। इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते रहते थे। हमें इनकी खामोशी का एहसास भी हुआ करता था और इनकी सिसकियां हम महसूस करते थे, पर अब ये ख्वाब की तरह है जो हकीकत से कौसो दूर है।

कभी अनजाने हादिसात यूं घेर लेते हैं कि अपने आप को अलग करना नामुमकिन सा लगता है। अचानक कोई आकर दस्तक देकर चला जाता है, जज्बात को ठेस पहुंचाकर। उनके दामन में पनाह लेने की ख्वाहिश, दूर तक साथ साथ चलने की उम्मीद तो जग जाती है, पर पल भर में मिट जाती है यूं ही बेवजह। और हाँ, बस यही मान के चलना पड़ता है कि सपने कभी सच नहीं होते हैं। सपने तो सपने होते हैं।

0: अम्बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: पेश है कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 8। प्रस्तुत करेंगे RJ किरनी। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कुमार। निर्देशन भारत सोपोरी।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। रेडियो सखी किरनी का प्यार भरा नमस्कार और लेकर आई हूँ पहलू और गीत का आज का अंक। मेरी तरफ जमाने की उठती है उंगलियां, जाने कितने मोड़ है मोहब्बत की गली में। कभी दर्दे गम, कभी जुदाई तो कभी रुसवाइयों के जमाने। यूं तो मेरे हर अंदाज पर फिदा था जमाना, बस एक मोहब्बत करके अदा किसी का रास ना आए। अब अगर

एक आशिक की दुनिया बसती है उस गली उस कोचे में, जहाँ एक मकान की खिड़की के पर्दे की ओर में बेचैन रहती हैं दो निगाहें।

दीदारे यार की हसरत हर रोज ले आती है गली के उसी मोड़ पर जहाँ से एक झलक यार की मिलती है। वो जिनका नाम लिया पहेलियों की ओढ़ में, नजर फेरी तो छुप गई सहेलियों के ओढ़ में। ये इश्क है साहब, कुछ नहीं सोचता, इश्क ने हमको बेहवास किया।

नहीं पूरा करना था सफर तो आए ही क्यों दिल की महफिल में, नहीं थी मोहब्बत तो इजहार ही क्यों किया मोहब्बत का, नहीं निभाना था वादा तो तमन्ना ही क्यों की प्यार की, जाना था दूर जो प्यार की गलियों से तो बहाने ही क्यों बनाए।

वो उनकी एक मुस्कुराहट पर दिल दे बैठे हैं हम। बेहिसाब इश्क का हिसाब ना पूछो, डूबने वाला समंदर की गहराई नहीं देखता। तो क्या समझे, ये तो इब्तिदा है इश्क की, इंतहा भला किसने देखा।

एक खूबसूरत शाम थी, कोई दिल के करीब था। एहसास ने दिल में दस्तक दी, मोहब्बत ने तराने छेड़े, खिल उठे आसपास मोगरे के फूल, खुशबू से भर दिया पूरे वजूद को।

0: इसके साथ ही आज के पहलू और गीत कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 8, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कुमार, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz की पेशकश।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं अभिजीत शर्मा, प्रस्तुत करेंगे भरत सपोरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और होनहार कलाकार को, जो गायक हैं, जिनसे मैं बात करूंगा। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। सर्वप्रथम संगीत रत्नाकर ग्रंथ में गायन, वादन और नृत्य के मेल को ही संगीत कहा गया है। वस्तुतः गीत शब्द में स जोड़कर संगीत शब्द बना, जिसका अर्थ है गान सहित नृत्य और वादन के साथ किया गया गान संगीत है। शास्त्रों में संगीत को साधना भी माना गया है। आज के कार्यक्रम इनसे मिलिए में मैं एक होनहार गायक, बल्कि युवा गायक, जो अंबाला की शान है, अपने परिवार की, स्कूल की, अंबाला कैंट की शान है। करते हैं स्वागत आज के मेहमान 14 वर्षीय अभिजीत शर्मा का स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज में।
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज रेडियो विदस्ता हमारे अंबाला कैंट के FM पुराने में, और बहुत मजा आएगा आज।
0: अभिजीत, कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ है, हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं। आप एक अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दीजिए।
1: मेरा जन्म अंकल अंबाला कैंट में हुआ है। तो मेरा जन्म हुआ था 23 सितंबर 2008 को, एंड बस उसके बाद ऐसे ही चल रहा है, अच्छी ज़िंदगी है। पापा मम्मी सब एकदम, हमारा नया घर बना था तभी तभी, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरा जन्म हुआ तो नई गाड़ी, नया घर, सब एकदम मतलब फ्रेशली आया मेरे लिए, नया पीस एकदम।
0: यानी कि आप घर के लिए एक नई सौगात लेके आए। आपके घर में और कौन कौन है?
1: मेरे घर में अंकल पापा हैं, मम्मा हैं, एंड आकाश भैया हैं, वो कॉलेज में हैं।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आप संगीत और गायन की तरफ कब अट्रैक्ट हुए, क्या उम्र थी उस समय?
1: अंकल जब मैंने सबसे पहली बार अपना गाना गाया था तो मैं अपने टॉडलर्स में था, एसडी विद्या टॉडलर्स, तो मैं 4 साल का था तब मैंने अपना सबसे पहला गाना गाया था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कोई ऐसे शायद स्पेशल ओकेजन थी, शायद फादर्स डे होगा, तो उस दिन मैंने गाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे टीचर्स ने कहा, तो ऐसी अट्रैक्शन बढ़ती गई।
0: क्या आप इस प्रोग्राम की शुरुआत उसी गाने से करेंगे जो आपने 4 साल की उम्र में गाया था?
1: जी अंकल जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसी गाने से शुरुआत करने में।
0: प्लीज

0: अभिजीत, आप ये बताइए कि इस छोटी सी उम्र में जब आपने गाना गाना शुरू कर दिया, क्या समझ आया आपको संगीत और गायन के बारे में? इस छोटी सी उम्र में आपके माता-पिता ने इस हुनर को कैसे देखा?
1: अंकल, जब मैंने स्टार्ट करा था गाना तो मैं 7 साल का था। मतलब जब सीखना शुरू करा तो पता ऐसे लगा कि जो मेरे टॉडलर्स में जो म्यूज़िक टीचर थे, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं जितने छोटे छोटे जब दोस्त होते थे, तो वो मुझे लेकर गए कि मैम इसका गाना सुनो। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने उन्हें शायद वो गाना सुनाया था, तुम ही हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सुना तो वो बार बार मुझे बुलाते रहते थे कि आप तू गाना सुना मुझे वो वाला। तो मतलब लाइक उस टाइम मेरा वो सिग्नेचर सॉन्ग कहते थे, अभी भी मतलब बच्चों को याद है कि तू वो गाना सुनाता था। तो शिल्पा मैम थे, तो शिल्पा मैम ने फिर पापा मम्मा को कहा कि आप इसे ज़रूर सिखाइए। तो ऐसे पापा गाते हैं, भैया गाते हैं, सब गाते थे घर में तब। तो उसी टाइम फिर उन्होंने जब रीच आउट करा तो पापा मम्मा ने देखा कि हाँ ये गाता भी है। तो उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू करा धीरे धीरे। तो फिर ऐसे ही पता चल गया, टीचर्स ने मतलब सबसे पहले तो शिल्पा मैम ने बताया था कि आप इसे सिखाइए ज़रूर, ये कुछ ना कुछ कर सकता है आगे जाकर।
0: तो शिल्पा मैम को आप आज भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके इस संगीत के सफर में एक नींव रखी, मैं तो यही
1: जी
0: मानता हूँ। तो उनके लिए कुछ गुनगुनाइए और वही गाना जो आपसे बार बार सुनते थे।

0: जी शिल्पा मैम, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रही हैं तो ये अभिजीत ने आपके लिए ये डेडिकेट किया, क्योंकि टीचर जो हमारी होती है या हमारा होता है वही हमें सही रास्ता दिखा देता है या दिखा देती है। जैसे आपने, अभिजीत ने कहा कि इनके पेरेंट्स से बात की कि इनको आप संगीत सिखा दीजिए, और आपने बहुत बड़ा काम किया है जिससे आने वाले दिनों में हमारे देश को अभिजीत जैसा सिंगर मिलेगा। अभिजीत, आगे चलते हैं, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आपको हमने कई बार अंबाला में स्टेज पर गाते देखा है, कैराओके पर भी, ऑर्केस्ट्रा के साथ भी। कैसे समन्वय इन दोनों में आप करते हैं?
1: अंकल, मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ, एंड कैरियोके और लाइक जैसे म्यूज़िक होता है लाइव म्यूज़िक, तो कैरियोके का ये है, एक तो लाइक पूरा उसमें एक्यूरेसी अपनी एकदम बंद के चलना पड़ता है उससे, आप बिल्कुल खुला नहीं गा सकते, कोई आपको अगर अलग से अपनी हरकतें लेनी है, मुर्कियाँ लेनी है, तो आप वो नहीं कर सकते। एंड ऊपर से कैरियोके मतलब ठीक है, एज अ प्रैक्टिस मटीरियल मुझे बहुत पसंद है, पर लाइव म्यूज़िक में ये है, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे छोटे मोटे, वैसे तो ये गाने ही आजकल के जैसे पुराने टाइम के रफ़ी जी के गाने हैं, तो उनमें तो चेंजेस करना बस क्या ही कर सकते हैं, वो तो पहले ही 5 महीने 4 महीने लग के पूरा स्कूल है एक गाना। पर जैसे कोई अलग गाना है और आप वो ऑर्केस्ट्रा में अगर आपने ज़रा सी भी मुर्की ली, तो एटलीस्ट उसमें म्यूज़िक का आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि अब तो म्यूजिशियंस हमारे अंबाला कैंट के एंड हर जगह के म्यूजिशियंस इतने एक्यूरेसी से बजाते हैं कि कैरियोके से कुछ कम नहीं है उसमें, पर बस ये है कि आप लाइव म्यूज़िक में थोड़ा कहते हैं ना कि अपने आप को दिखा सकते हैं, जितना अगर जितने आपने सीख लिया है तो वो आप अपने लाइव म्यूज़िक में दिखा सकते हैं। कैरियोके एज अ प्रैक्टिस मटीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कैरियोके पे वैसे अगर हम देखा जाए तो मुझे लाइव म्यूज़िक पर्सनली बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एक फील एंड ऑरा ही अलग होता है लाइव म्यूज़िक का, तो ऐसे ऐसे कोप हो जाता है साथ में।
0: मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये ख्याल आता है, आपने ये कहा कि लाइव म्यूज़िक में आपको अगर अपने तरह की कोई चेंज लेनी है या कोई मुर्की लेनी है उसमें, तो क्या आप उस बैंड को पहले एडवांस में कहते हैं या वो इंस्टेंटली बैंड भी आपके गायन को समझ लेता है?
1: अंकल, मुर्कियाँ तो एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ ताल के साथ हम ले सकते हैं, तो वो तो ताल में हम ऐसे इंस्टेंटली ले सकते हैं। जैसे आपने कुछ थोड़ा ज़्यादा चेंज करना है, कभी कभी जैसे सिंगर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा कि मैंने अपना कुछ ये अलग से लाइन लगानी है या थोड़ा मुझे आलाप लेना है बीच में, तो वो हम उन्हें ऐसे प्रैक्टिस होती है रिहर्सल, तो उसमें बता सकते हैं कि मैं इधर आलाप लूँगा सर, तो ऐसे जैसे एक बार मैं एक स्टेज पर गया था तो मैंने अंतरे से गाना उठाना था, तो मैंने उन्हें पहले बता दिया कि सर मैं अंतरे से उठाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप अंतरे से उठाना, तो ऐसे होता है।
0: तो आप हमें कोई ऐसी कोई गाना या कोई अंतरा हमें सुना सकते हैं जिसमें आपने अपने तरीके से कोई चेंज किया या मुर्की लिया, कोई बदलाव किया?
1: जी ज़रूर सुना सकता हूँ।

0: संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
1: बहुत खूब अभिजीत, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय इस स्टूडियो में, अम्बाला कैंट के स्टूडियो में हमारे अम्बाला कैंट की ही शान अभिजीत हैं। और अभी आपका जो संगीत का सफर है वो अभी शुरू ही हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुर और ताल को आप कैसे हमारे श्रोताओं को समझा सकते हो?
0: अंकल, सुर होता है जैसे एक, जैसे सारे का मापा है
1: जी,
0: तो उनमें ही अगर हम इंग्लिश में चलें तो सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, तो ऐसे ही पर्टिकुलर गानों के स्केल होते हैं। कोई गाना है जैसे जब कभी भी, तो ये सारे गा मा पा यहाँ से उठता है। तो अगर उसी गाने को हम थोड़ा किसी और सुर से उठा दें पर बज वो उस सुर पे रहे, तो उसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को कि ये बेसुरा हो गया, तो उसे हम ये कहते हैं। सुर पे वो होता है कि हम जिस सुर पे वो बज रहा है, लाइक हारमोनियम के सारे गा मा पा, जिस टोन में वो बज रहा है उस, तो उसे सुर कहते हैं। एंड ताल तो एक पर्टिकुलर बीट होती है, जैसे हमारी तीन ताल है, झप ताल है, मत ताल, कहरवा, रूपक ताल, दीपचंदी ताल। तो जैसे ताल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जैसे अब तीन ताल है, या चलिए कहरवा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अभी मिड टोन पे बज रही है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा दी दिन धा, ऐसे बज सकती है। एंड मतलब एक ही ताल पर वो है एक ही, बट वो तेज़ उसका दुगुन हो सकता है, चौगुन हो सकता है, या फिर वो आधी हो सकती है। अति विलंबित जैसे होता है तो हम वो खुला गाते हैं। तो ताल इज जस्ट सम नंबर्स, उनकी एक पर्टिकुलर हमने बीट बना दी है। बोल होते हैं तबले के, जैसे धागे नाती नाके दीना, तो उनमें वो चलती रहती है, तो दैट इज ताल। एंड कंफ्यूजिंग कह सकते हैं शुरू में, जैसे कुछ तालें होती है, दीप चंदी, रूपक, 14 मात्रा है, 7 मात्रा है, मत ताल है, तो वो लगती है। पर एक बार अगर आपके मन में वो बैठ जाए तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस ताल में, अपनी आलाप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
1: जब आप सीखने जाते हो, जब आप पढ़ रहे हो होते हो ये, तो उस समय क्या आपका फोकस 100% उधर ही की तरफ होता है, तभी जाके हम इस चीज को समझ सकते हैं जैसे आपने अभी हमें समझाया ताल के बारे में?
0: हाँ जी, 100% फोकस तो किसी भी चीज़ को करना है तो पूरा फोकस इस पर लगाना पड़ता है एक बार के लिए। एक बार समझ आ जाती है, उसके बाद आप आराम से चलती रहती है, वो धीरे जब सुनेंगे तो खुद आ जाएगी। शुरू में जब कोई नई चीज़ सीखनी होती है, जैसे रिसेंटली मैंने एक गाना सीखा मत ताल में, गुलाम अली जी का और कविता कृष्णमूर्ति जी की, वो गज़ल है, तो वो मत ताल में है, 9 मात्रा, तो उसे सीखने में काफ़ी मुझे टाइम लगा पूरा, लाइक मैंने दिन ही सुनता रहा सुनता रहा। बट एक बार जब समझ आती है तो उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है।
1: तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, क्या उसकी एक झलक हो जाए?

0: 3.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है अभिजीत शर्मा, जो एक सुप्रसिद्ध गायक बनने वाले हैं। आइए अभिजीत से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आज हम उनसे उनके जिंदगी के बारे में सुनेंगे और साथ साथ में उनके कंठ से हम अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। अभिजीत, वैसे तो आपका बचपन ही अभी चल रहा है, ये बताइए बचपन में आपके पसंदीदा खिलौने क्या होते थे और क्या क्या शरारतें आप घर में करते थे?
1: बचपन में अंकल, एक तो आर्मी, जब से ये मैंने उरी वगैरह जितनी भी आर्मी की मूवीज हैं देखी, तब से मुझे बस एक भूत चढ़ गया था कि हाँ, मेरे को बस आर्मी ऑफिसर बनना है, कि बिल्कुल मुझे वैसा करेज करना है जैसे अंधेरा होना, तो मैंने अपनी गन लेके चल पड़ना कि मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: तो ऐसे होता है, और गन्स एंड अवेंजर्स होते हैं जैसे, उनकी टॉय फिगर्स होती है, उनके साथ उन्हें सेट करके रख देना कि अब कल लड़ाई होगी, कल वॉर है। तो ऐसे ऐसे
0: जब हम किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, काबिल होते हैं, तो वो शरारतों में भी काबिल होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कम से कम एक शरारत तो बता दीजिए जो आपने बचपन में की होगी।
1: शरारतें अंकल, मेरी जो शरारतें होती थी एक्चुअली वो बहुत लॉजिकल शरारतें होती थी। जैसे मेरे आकाश भैया की चॉकलेट पड़ी है,
0: ठीक,
1: तो अब उन आकाश भैया का ये है कि जैसे कि अभी मैंने चॉकलेट रख दी, अब मैं इसे 3-4 दिन में आराम आराम से करके खाऊंगा।
0: ठीक है।
1: पर मुझे ये था कि कभी भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी तड़पाना नहीं चाहिए, तो मैं एक ही दिन में फिर उनकी सारी चॉकलेट खा जाता था।
0: और फिर कुछ नाराजगी झेलनी पड़ती थी?
1: नाराजगी नहीं, बस थोड़ा सा भागना पड़ता था।
0: चलिए, यही हम जानना चाह रहे थे और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जिसकी जिसके साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने यूनिफॉर्म की बात की, आपने आर्मी की बात की, आपने देश प्रेम की बात की। देश प्रेम को आप गा के हमारे श्रोताओं को कैसे बता सकते हैं?
1: जी जरूर अंकल।
0: और इसके बारे में आप कुछ डिटेल भी बता दीजिए, हमारे देश में देश प्रेम को जगाना कितना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि जो आप गाना गाएंगे उससे भी हम लोगों तक वही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
1: देश प्रेम तो अंकल हर एक आदमी में वैसे आजकल है ही, क्योंकि सबको पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आराम से अपने घरों में बैठे हैं, चल पा रहे हैं सड़कों पर, इधर स्कूल जा पा रहे हैं। अगर आर्मी ही ना होती तो फिर ऑब्वियसली ये सब बहुत मुश्किल होता, एंड देश काफ़ी अब कितना सुरक्षित फील करते हैं। आर्मी का तो एक बहुत बड़ा रोल है और आर्मी तो सबके दिल में अब बसती है, क्योंकि हम हमें एक छोटी सी कील लग जाए तो हम कहते हैं कि ओहो, आज काम नहीं हो पाएगा, आज लिख नहीं पाएंगे। वो वहाँ गोली खा कर भी कहते हैं कि नहीं, हम अभी भी लड़ेंगे देश के लिए,
0: देश के लिए।
1: तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और उनके लिए मैं एक गाना ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, वतन पे जो फिदा होगा।
0: वाह,

0: वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, ये बहुत साल पहले लिखा गया है और इसके साथ जुड़ा हुआ आज हमारे देश का जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सुरक्षित यहाँ पर तभी है जब हमारे सीमाओं पर प्रहरी उस पर नज़र रखे हुए हैं और हम उनको यहाँ से अपना प्यार और स्नेह भेज रहे हैं और साथ में उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आगे चलते हैं, अभिजीत से बात करते हैं। अभिजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहोगे अपने गुरुजन को FM 90.0 MHz के माध्यम से, कौन सा गाना उनके लिए आप समर्पित करोगे? अभिजीत, मैं चाहूंगा कि आप विस्तार में अपने गुरुजन के बारे में बताएं।
1: अंकल, मेरे सभी गुरुजन बहुत सपोर्टिव रहे हैं एंड सभी ने जितना भी कुछ मुझे सिखाया है बहुत प्यार से सिखाया है, चाहे थोड़ी सी ही चीज़ हो। पर जैसे अक्विंदर मैम, शिल्पा मैम, मंजू मैम, राज कमल सर एंड मेरे गुरुजी श्री संतोष कटारिया जी, सभी ने मतलब इतना प्यार दिया है कि मतलब एक जैसा होता है ना कि हाँ जी गुरु जी हैं, एक स्ट्रिक्टनेस होती है। तो मेरे लिए तो मैं पता नहीं लकी कह सकते हैं, पर मेरे लिए सभी गुरुजन एकदम ऐसे लाइक फ्रेंड्स की तरह हैं एंड बहुत प्यार किया है। एंड जब भी मैं कोई चीज़ सीखता हूँ तो मुझे सबकी याद आती है, सर की याद आती है कि सर ने ऐसे सिखाया, वैसे सिखाया, कि ये मैं अब गलत कर रहा हूँ। कोई गाना मैं रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डालता हूँ तो सबसे पहले वो सर से अप्रूव होता है, उसके बाद ही हो जाता है। एंड जितने भी जैसे मेरे सर मुझे सिखाते हैं तो बिल्कुल मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ अब मेरे थोड़े ऐसा मुझे स्ट्रिक्टनेस है, मुझे वो है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे सर इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। एंड जैसे मैंने अपनी अभी पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें भी मेरे गुरुजी का मैंने लिखा माय गुरुजी एंड माय बेस्ट फ्रेंड। तो उन सब के लिए मैं एक गाना एंड सर के लिए स्पेशली ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा।

0: मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुजन जितने भी अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों को देते हैं, उनसे ही वो शिष्य आगे की ओर बढ़ते हैं। और खुशनसीब है वो गुरुजन जिनको अभिजीत जैसे शिष्य मिलते हैं, और साथ में अगर वो इनके दोस्त भी हैं। हम संतोष कटारिया जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे देश के लिए एक ऐसे कलाकार को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारा गौरव बनेगा।
1: तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार ना।
0: अभिजीत के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी है और आज हमारी कोशिश है कि हम अभिजीत के गाने तो जरूर सुनेंगे ही, पर साथ में अभिजीत के जिंदगी के बारे में हम जानें। अभिजीत, आपके परिवार में आपके पापा भाई गाते देखे गए हैं सोशल मीडिया पर, क्या माँ भी गाती हैं?
2: जी हाँ, मम्मा भी गाते हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए? उम्मीद है कि वो ये प्रोग्राम सुन रही हो।
2: अंकल, जैसा कि सभी जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया के जो पैदा होते ही जो सबसे पहले गुरु होते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं माँ बाप और अपने भाई बहन ही होते हैं। काश भैया जैसे, वो भी ही इज़ जस्ट लाइक माई गुरु, एंड पापा मम्मा तो हैं ही। तो मम्मा से तो मतलब अगर मैं बोलने पे आऊँ फिर हमारा ये प्रोग्राम जो है ख़त्म ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पापा मम्मा भैया इनके लिए जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी किसी भी बात पर जो भी होता है सपोर्ट सबसे ज़्यादा परिवार वाले करते हैं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो पर परिवार वाले हमेशा आपके साथ होते हैं। मम्मा के लिए आज एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगा, उसके बाद मैं पापा के लिए भी गाना चाहूँगा या फिर साथ में गा सकता हूँ, पर पहले मम्मा के लिए ज़रूर गाता हूँ।

0: मुझे जब माँ के लिए कुछ लिखना होता है तो मैं एक ही शब्द लिखता हूँ, माँ अनमोल। और सच में माँ अनमोल होती है। आगे चलते हैं, अभिजीत, आप का स्कूल का क्या योगदान है आपकी जिंदगी में, खास तौर पर एज ए स्टूडेंट, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर? क्या कहना है स्कूल के दोस्तों, टीचर्स और मेंटर्स के लिए?
1: स्कूल अंकल मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जितनी भी जैसे कोई प्रोग्राम है, छुट्टियाँ चाहिए होती है, लीव्स चाहिए होती है, तो स्कूल वाले तो दे आर लाइक बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ ज़रूर जाओ। एंड जैसे अभी यूनिट टेस्ट हुआ तो मेरा एक शो था एंड कानपुर था, तो स्कूल वाले मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। मैंने देखा है कुछ स्कूल जैसे करते सकते हैं कि नहीं हमारे यूनिट टेस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास है, बट स्कूल वाले इतने कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने मेरा स्किप कराया एंड उसके बाद मेरा फिर से वापस दिलवा दिया। जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब सब समझते हैं। जैसे मैंने मैम से पूछा कि मैम यूनिट टेस्ट का अब क्या करूँ मैं, मेरा तो फंक्शन है, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, तू जा एंड मैं तेरा यूनिट टेस्ट बाद में कराती हूँ। एंड प्रिंसिपल मैम स्पेशली, वो तो मतलब दिया इतना ज़्यादा सपोर्ट, तो मतलब कौन ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। स्कूल वाले तो बहुत प्यार करते हैं एंड दोस्त, तो दोस्त आपको पता ही है अंकल, सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो होते हैं।
0: क्या कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कभी खिंचाई भी करते हैं?
1: दोस्त अंकल खिंचाई मतलब किस वे में?
0: शरारत करना, और किस तरीके में शरारत करना, तंग करना, या कभी कहते हैं कि अभिषेक जरा साइड पे आ जाओ, हमें कोई गाना सुनाओ, क्या ऐसा होता है स्कूल में कभी?
1: स्कूल में तो नहीं अंकल, वैसे मैं गाना गाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक है तो वहाँ पे सुन लेते हैं। स्कूल में उन्हें पता ही है गाएगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी दोस्त तो मेरे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा स्पेशली जो दोस्त है आर्यन आहूजा है अभी, लाइक वो बहुत अच्छा है, एंड शतिल है, आदित्य है, अर्नोल, वो तो सारे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कोई गाना रिकॉर्ड करा कुछ नया तो मैं उन्हें भेजता हूँ कि कैसा लग रहा है, फिर वो बताते हैं। और एक है वो तो पूरा एकदम सुन के कि यार ये तेरे तो तूने गा तो दिया बट तेरे लेवल का नहीं है, तू और अच्छा गा, मतलब उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है पर वो फिर भी उसको पता है कि कैसा गाता है, तो दोस्त तो बहुत अच्छे
0: यानी
1: हैं।
0: कि दोस्तों में क्रिटिक होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी कमियां हैं या आपकी गलतियां हैं उनके बारे में बता देता है।
1: हाँ
0: दोस्त
1: जी
0: एक्चुअल में सही वही होता है जो हमारी कमियों के बारे में बता देता है, ताकि आप अगली जो कोशिश करेंगे कि वो एक्यूरेट करें।
1: जी बिल्कुल।
0: अभिजीत, आपको 60 से ज़्यादा अवार्ड से नवाजा गया है, क्या मायने रखता है आपके लिए एक अवार्ड?
1: अंकल मेरे लिए एक अवार्ड इज़ जस्ट लाइक एक आशीर्वाद। जितने अवार्ड्स मिलते रहते हैं मैं कभी भी उन्हें एक लाइक ऐसे ट्रॉफी के वे में नहीं लेता, हमेशा उन्हें एक ऐसे वे में लेता हूँ कि ये मुझे मोटिवेट करते हैं उन्हें देख के कि मुझे और एंड और आगे बढ़ना है। जैसे इतने लोग प्यार से, इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ लव जैसे कहते ही हैं हम, कि हम आपको एक टोकन ऑफ लव देना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है अवार्ड्स मिलते हैं एंड बहुत प्यार मिलता है, एज अ ब्लेसिंग काउंट करता हूँ मैं एक अवार्ड को।
0: बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि हर दिन हमें कुछ नया करना है, हर दिन हमें आशीर्वाद चाहिए, हर दिन हमें मोटिवेशन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ आगे सीखना ज़रूरी है
1: जी
0: ताकि आप आगे की ओर बढ़ जाएं। अभिजीत, अंबाला कैंट का गौरव है आप। आप पहले रेडियो वितस्ता के फेसबुक लाइव शो में प्रस्तुति दे चुके हैं 3 साल पहले, अब उसके बाद आज आप अंबाला कैंट के पहले FM रेडियो स्टेशन पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: अंकल, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे अंबाला कैंट का एक ऐसे, हमारी अंबाला कैंट की एक पहचान और एक आवाज़ बन रही है रेडियो वितस्ता, एंड हम बहुत लोगों को अपने अंबाला कैंट के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और अंबाला कैंट की शान बढ़ाते हैं, उनकी हम आवाज़ दे सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमारे साथ आज प्रोग्राम में अभिजीत शर्मा जी के पिताजी श्री राजीव शर्मा जी भी मौजूद है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद भारत जी, आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, आपके आभारी रहेंगे।
0: कैसा महसूस होता है एक पिता को जब उनका सुपुत्र बहुत सारे एक समूह पर अपनी प्रस्तुति देता है गायन के रूप में?
2: सबसे पहले तो आप जब अभिजीत के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पुत्र न कह के सुपुत्र कहा, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। और वैसे भी ये बांके बिहारी जी वृंदावन से प्रसाद स्वरूप ही हमें मिला था, क्योंकि अपने बड़े भाई से ये 10 साल छोटा है। और जैसे एक आइडियल फैमिली होती है वो सोचते हैं ठीक है यार एक बच्चा है उसी को ठीक से परवरिश करेंगे उसी के सपने पूरे करेंगे बस फैमिली कंप्लीट है। क्योंकि मेरे बड़े भाई के यहाँ एक बेटा एक बेटी है तो हमें लगता था कि चलो बेटी घर में है तो भाई हो गए। तो समहाउ इसके बड़े भाई को किसी दोस्त ने या किसी कजन ने कुछ ऐसा कहा कि यू आर ओनली चाइल्ड और तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है कोई बहन नहीं है। ही इज वेरी सेंसिटिव।
0: यस,
2: उसने ये बात दिल को लगा ली और उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो हमने जैसे माँ अमूमन बच्चे को कह देती है कह रहे नहीं कोई बात नहीं वो तेरा भाई है बहन है विशु है जयश्री जो मेरे बड़े भाई के बच्चों के नाम है। पर उसने वो बात दिल में ऐसी लगा ली कि स्कूल में वो एक कोने में बैठ के रोता रहता था पढ़ता नहीं था और टीचर्स को लगा दिस इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस।
0: ओहो अच्छा।
2: एंड दे कॉल्ड मी देयर और मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है ही इज वेरी पैम्पर्ड और हमारे घर का माहौल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था मेरे माता पिताजी होते थे बहुत लाडला था बेटा। तो स्कूल इस मामले में बहुत जिम्मेवार है मैं धन्यवाद कहूंगा स्कूल का। उन्होंने एक चाइल्ड काउंसलर को बुला लिया और उससे जब काउंसलिंग में बात निकली तो उसको ये चीज खा रही थी कि मैं अकेला हूं मेरा कोई भाई नहीं।
0: ओके।
2: देन स्कूल एंड टीचर्स दे टोल्ड अस कि इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड प्लान फॉर अनदर बेबी।
0: ओके।
2: और अभिजीत व्हेन माय वाइफ इज इन फैमिली वे तो मैं पहली बार वृंदावन जी गया था तो वहां आकाश ने मुझे कॉल करके कहा कि पापा मेरे लिए आप वहां से क्या लाएंगे। तो मैंने कहा आप बताओ क्या चाहिए।
0: ठीक है।
2: तो ही सेड के बांके बिहारी जी को ले आओ। तो ये सवाल इतना टेढ़ा था कि मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में बांके बिहारी जी से पूछ के बताता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैंने कभी इलॉजिकल आंसर नहीं दिया अपने बच्चे को आज उसी का नतीजा है कि ये कहीं पहुंच रहे हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है ये संगीत में जा रहा है। तो मैंने उन्हें फिर दोबारा फोन मिला के बोला मैं कहा बेटा बांके बिहारी जी कह रहे हैं अगर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा तो बाकी भक्त किसके दर्शन करेंगे। तो वो बांके बिहारी जी कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल बन के मैं आपके घर में जल्दी आ जाऊंगा। तब अभिजीत का जन्म हुआ।
0: बहुत अच्छी बात है ये एक अवतार है मैं तो यही कहूंगा। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रहनी चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें और उस प्रभु का धन्यवाद हमेशा के लिए करें।
2: हम ये महसूस करते हैं कि ही इज बेसिकली सन ऑफ गॉड वी आर जस्ट हिज केयर टेकर्स।
0: बहुत अच्छी बात है और इससे ज्यादा खुशनसीब माता पिता क्या हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दें।
2: जी जैसे आप जानते हैं मेरा नाम राजीव शर्मा है मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद शर्मा और अभिजीत की हमारी फोर फादर्स में एक रिजेम्बलेंस और भी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे वो मुनीमी जो बेसिकली पहले टाइम की जो मुनीम हुआ करते थे जो अगर आज का कैलकुलेटर भी आप लगाएं तो मुनीम उससे तेज कैलकुलेशन कर लेते थे तो वो मुनीमी पढ़ाया करते थे। और उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था उसके बावजूद भी आप ये लगाइए कि 100 किलोमीटर दूर तक उनका नाम चलता था। तो और कमाल की बात यह है एक संयोग की बात है कि उनकी कद काठी बिल्कुल अभिजीत वैसा ही हो रहा है। उनकी हाइट मेरे पिताजी से हमसे ज्यादा थी। अब जब कभी मैं इसे देखता हूँ और जब मैं इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे बार बार दादाजी श्री गीताराम शर्मा जी का ख्याल आता है कि शायद उन्हीं का स्वरूप दोबारा से हमारे परिवार में आ गया।
0: बहुत अच्छी बात है आप ऐसे सोचते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे खुशी का समा और कोई भी नहीं हो सकता है। आप आज अम्बाला कैंट के पहले FM स्टेशन पर है जो कम्युनिटी रेडियो है तो कैसा आप महसूस करते हैं क्योंकि आज हम व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार मिले हैं।
2: जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने देखा है कि किस तरह से आपने ये सपना संजोया है और कितना आपने जी जान लगा के इसको यहाँ तक आप लेके आए हैं और आपके एफर्ट्स में आपके स्टूडियो में देखकर और जिस तरीके से आप नए नए चेहरों को नए लोगों को यहाँ ला के उनकी आवाज़ सब जगह पहुँचा रहे हैं बड़ा ही सराहनीय काम है और मुझे खुद बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और खास तौर से जब अभिजीत यहाँ आया क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए जो गर्व की बात यही है कि मुझे मेरे सर्कल में बहुत रिजर्व्ड आदमी रहा हूँ बहुत ज्यादा मेरा सर्कल मैंने नहीं रखा काम में इतना व्यस्त रहा क्योंकि अकेला काम करने वाला हूँ तो बहुत से लोग मुझे अभिजीत फादर ही जानते हैं और यहाँ भी आज मैं अभिजीत के पिता के रूप में आया हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी एक वाक्य हुआ कि मेरे बड़े पुराने मित्र करीबन 15 साल पुराने मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि मैं अम्बाला से राजीव बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब आप कैसे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा तभी मैंने उन्हें बोला कि अभिजीत का फादर और उन्होंने इमीडिएटली मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया तो मुझे लगा कि
0: माँ बाप के
2: परवरिश तो ठीक जा रही है
0: परवरिश ठीक जा रही है माँ बाप के लिए इससे खुशी का समय क्या हो सकता है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं और श्रोताओं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभिजीत के पिताजी राजीव जी भी गाते हैं और हम अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आप लोगों को दोनों की आवाज में एक ड्यूएट भी सुनाएंगे। बट उससे पहले मैं अभिजीत से जानना चाहता हूँ कि अभिजीत, आपने भुज में एक कंसर्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: अंकल, भुज का कॉन्सर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अलग था। मतलब जैसे कहीं मैं दूर जाता हूँ कॉन्सर्ट करने, तो थोड़ा सा एक फील आती है कि हाँ थोड़ा दूर है, अलग सा है सब। और वहाँ जाके तो एकदम ऐसे एकदम लगा कि हाँ सब अपने आप को जानने वाले हैं। मेरे वहाँ पे हर्षुक भाई सोनी दादू हैं, उन्हें मैंने अपना दादू बना लिया, इतना प्यार दिया उन्होंने। तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं, रोज़ ही मिलते रहते हैं, तो इतना प्यार दिया। एंड जितने भी लोग थे, मतलब उनके जो चेहरे पे जो स्माइल थी, वो ऐसा पता चल रहा था कि वो सच में बहुत ज़्यादा खुश है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा भुज का कॉन्सर्ट, तो फिर से मतलब बहुत प्यारा था।
0: कोई गाना आपको याद आ रहा है कि जो आपने वहाँ गाया हो और हम भी और हमारे श्रोता भी उसका कुछ हिस्सा सुन पाए?
1: जी अंकल, मैंने वहाँ पर वैसे तो 7 गाने गाए थे, पर उसमें से एक था जी, अभी वैसे तो दोपहर का समय है बट फिर भी मैं गा देता हूँ।

पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया।

0: जी हाँ, हमारे साथ है राजीव शर्मा जी और अभिजीत शर्मा जी, और साथ में मैं। सर, आप दोनों से एक अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे श्रोता है, आप दोनों की आवाज़ में कोई सा भी आपका मनपसंद ड्यूएट या गीत आप सुनाएं, ताकि जो सुर और ताल की जो लय है वो जिंदगी में भी बनी रहे और संगीत में भी बनी रहे।
1: जी ज़रूर। एक गीत है जो मैं अपने दोनों बेटों के साथ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और वो दोस्ती की थीम पे ये गीत है जो हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे भी किसी ने डाल दिया था, तो मैं वही चाहूँगा सब श्रोता सुने।
0: प्लीज
1: और एक अपील भी करूँगा कि पिता को अपने पुत्र के साथ हमेशा मित्रतापूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए, अगर आप उससे उसका 100% निकालना चाहते हैं। पुत्र जब कामयाब होता है ना, तो अखबार, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी सब उसको प्रमोट करते हैं।
0: जी
1: लेकिन अगर पुत्र कभी नाकामयाब हो जाए, तो उसके पिता को खड़ा रहना चाहिए उसके सहारे में, ताकि वो टूटे नहीं
0: जी
1: और अपने आप को फिर से समेट के दुगनी ताकत के साथ अपने श्रेय, अपने क्षेत्र में जो भी वो करना चाहता है उसे कर पाए।
0: बहुत अच्छी
1: तो
0: बात।
1: दोस्ती का ही ये गीत मैं आपको सुनाऊंगा। ये

0: ये जिंदगी हम सब की ऐसी ही चलती रहनी चाहिए, जिंदगी का कारवां ऐसे ही चलते रहना चाहिए। खुशी राजी हम आगे की ओर बढ़ें और हम भी इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें, और जैसे राजीव जी ने कहा कि आप अपने परिवार अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहिए ताकि जिंदगी में वो आगे की ओर बढ़े। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद। सभी श्रोताओं से हम भी इजाजत चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे रेडियो वितस्ता एंड भारत जी का कि उन्होंने आज हमें इतना सम्मान इतना मान दिया, यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं अलविदा।
2: जय हिंद और जय भारत। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा भारत अंकल का एंड रेडियो वितस्ता का, एंड आप सभी को मैं बहुत प्यार देता हूँ, एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए एंड ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे अभिजीत शर्मा, रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भरत सपोरी।
4: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Atunci mi-a legul, mă zurice, mă zuri. Mi-a mai mi-a legul. Ascultă, mi-ascultă să am cont, aș o bateau, aș către chiar cu drumul.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का
2: सुनन खातर हरियाणवी सॉन्ग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता सुनिए। आपकी बातचीत का विषय है माइग्रेन, कारण और उपचार।
4: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है।
5: थैंक यू
4: डॉक्टर साहब। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपसे, एक बीमारी का नाम हमने सुना है माइग्रेन, ये क्या बीमारी है?
5: माइग्रेन हमारे सिर से संबंधित एक बीमारी है जिसमें जनरली हमें सिर का दर्द आम तौर पर दिखाई पड़ता है और इसका जो ट्रेंड है आने का किसी भी पेशेंट में वो रिकरेंट होता है, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे बार बार आता है और एपिसोड्स में आता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये रिपीट होता है, बार बार आता है
4: जी।
5: तो जिसमें आमतौर पर सिर दर्द के साथ हमें उल्टी का मन या फिर उल्टी का आ ही जाना, या इसमें कभी कभी लूज मोशन जिसको हम डायरिया कहते हैं वो भी इंड्यूस होता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें तेज़ सिर का दर्द, और जो कि हमारे आधे सिर में ज़्यादातर पाया जाता है, उसके साथ साथ उल्टी का मन होना और उल्टी का कभी कभी आ जाना ही पाया जाता है।
4: ये तो एक तो डॉक्टर साहब सिर दर्द आम जिसे हम कहते हैं, कभी हर इंसान को इस तरह की बीमारी
5: कभी हो जाती है।
4: ये कुछ अलग है माइग्रेन?
5: माइग्रेन अलग अपने इसी करेक्टर के साथ है कि ये बार बार आती है। और सबसे पहली बात यह है कि इसमें हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को इस दर्द के आने से पहले किसी हद तक मालूम पड़ जाता है, जिसको हम ऑरा कहते हैं या प्रोड्रोम हमारी एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, तो पेशेंट को इसका आभास पहले ही हो जाता है कि कुछ गलत मेरे शरीर के साथ हो रहा है और कुछ गड़बड़ होने वाली है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं अमूमन 70-80% लोगों के बीच में पेशेंट को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, और जनरली 1-2 के बाद उसको सिर का दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह से ये बाकी सिर से अलग है। आपको कई सारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो इसको इंड्यूस करते हैं, बार बार इसको लाते हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना, तेज़ मिर्च मसाले खा लेना, उससे ये एकदम से आता
4: अच्छा,
5: है।
4: इसके रूट्स कहाँ पे हैं, अगर हम इसके रूट्स जानना चाहेंगे आपसे?
5: रूट्स जानना चाहेंगे तो इतना क्लियर नहीं है साइंटिफिकली, लेकिन जनरली क्या है कि हेरिडिटरी चलता है, अनुवांशिकी के ऊपर। जैसे कि जिनके पेरेंट्स को अगर ये बीमारी है तो बच्चों में जनरली आती है, आम तौर पे आ जाती है, नहीं भी आए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली आ जाती है। तो मेन कॉज तो उसका यही आ जाता है कि हेरिडिटरी आता है। लेकिन अगर शरीर में देखें तो इसको 2 थ्योरीज में बांटा गया है। पहली हमारी वेस्कुलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं, और दूसरी न्यूरोलॉजिक है। और आम भाषा में वेस्कुलर कहेंगे जो हमारे रक्त वाहिनी है जिसमें हमारा खून दौड़ता है, कुछ उसके कारण है और कुछ हमारी जो नाड़ियाँ हैं जिससे हमारा सारा शरीर चलता है, ब्रेन्स के साथ हमारे मस्तिष्क के साथ, तो उसके थ्रू भी ये आता है।
4: अच्छा डॉक्टर साहब, महिलाओं में अक्सर इस तरह की बीमारी माइग्रेन?
5: जी बिल्कुल,
4: आमतौर पर
5: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन 70-80% महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कारण उसका ये माना जाता है कि आमतौर पर औरतों के ऊपर हमारे देश में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। देखने में हम आम आदमी कह देता है कि घर में काम ही क्या होता है, लेकिन घर में अगर आप देखें तो बहुत काम होते हैं। अगर एक आम आदमी घर बिठाकर उसको औरत का काम दे दिया जाए तो शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और बड़ी सारी चीज़ें हैं, औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, डिप्रेशन एक साथ साथ एक वर्ड चलता है औरतों के साथ, पैरेलल समानांतर चलता है, क्योंकि सास का प्रेशर होता है, देवर भाभियाँ हैं और चीज़ें हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो एक डिप्रेशन या एक अवसाद जिसको कहते हैं मानसिक तौर पर औरत उससे ग्रसित रहती है। वो ट्रिगर फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो माइग्रेन का है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन से हमारे उसमें ब्रेन में ऐसी चेंजेस आती हैं, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं सडनली, फिर एकदम से वो किल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण औरतों में ज्यादा पाया जाता है।
4: यानी आपका कहना है कि डिप्रेशन से,
5: डिप्रेशन ही इसका
4: माइग्रेन बीमारी का,
5: एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराएगा और स्टार्ट हमेशा डिप्रेशन से होगा
4: जी।
5: वो स्प्रेड करेगी बॉडी में, डिप्रेशन के बाद ही ये चीजें जनरली आती हैं।
4: एक्यूट में होता है ये माइग्रेन जबरदस्त,
5: एग्जैक्टली ये बहुत तेज दर्द होता है। पेशेंट का हम जब डायग्नोसिस बनाते हैं तो दर्द के कैरेक्टर से ही बनाते हैं, और आमतौर पर दर्द खत्म होने के बाद ही हम इसका डायग्नोसिस बना पाते हैं कि ये माइग्रेन था, क्योंकि आमतौर पर इस दर्द के बाद पेशेंट इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उस पर खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती, दर्द चला जाता है, लेकिन एक दो दिन वो इतना परेशान रहता है, उसकी दर्द की वो हालत कर दी होती है बॉडी की कि वो पूरा ड्रेन्ड होता है।
4: बच्चों में भी क्या इस तरह की बीमारी पाई जाती है?
5: बच्चों से अगर हम ये कहें तो हम लेट चाइल्डहुड यानी कि बच्चों की देर वाली अवस्था, जैसे 12-13 साल की उम्र में ही ये बीमारी आमतौर पर शुरू हो जाती है, लेट 20s अर्ली 30s इसमें ज़्यादा जाती है। फिर एक बार जो हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर तो छोड़ती नहीं है, उसे सिर्फ प्रिवेंशन ही रह सकता है, और इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं कि एक बार ठीक कर दिया दोबारा नहीं आएगा, वो रिकरेंट आएगा, इसीलिए माइग्रेन है
4: जी।
5: तो बच्चों में जरूर पाई जाती है लेकिन 12-14 साल की उम्र के बाद, उससे पहले आमतौर पे नहीं मिलती।
4: यानी आप ये मानते हैं कि डिप्रेशन से माइग्रेन की बीमारी?
5: बिल्कुल सही बात है, डिप्रेशन ही इसको कॉज कराती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालती है, जिसके बाद ये अपने पूरी तरह से बाहर आता है बीमारी। तो स्टार्ट उसका डिप्रेशन से ही।
4: इसमें कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होती है या?
5: जी नहीं, इसमें सर्जिकल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही सर्जरी की वजह से होता है। हाँ, अगर किसी का ब्रेन सर्जरी करते समय ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है हमारी बॉडी में, उसको अगर छेड़ दिया जाए तो पॉसिबल है उससे वो ट्रिगर हो सकता है कभी ना कभी।
4: अच्छा, इस बीमारी से कितनी परसेंटेज ग्रस्त है?
5: बहुत कम, लेकिन आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ रही है, पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल की बहुत भागम भाग जिंदगी, तनाव इतना ज्यादा है, काम का लोड ज्यादा है, तो हर दिन ये बढ़ती जा रही है और प्रेवलेंस इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर।
4: डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे, आपकी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
5: देखिए, मैं तो किशोर के गानों का ही फैन हूँ, तो अपनी पसंद से किशोर का कोई गाना सुना सकते हैं या फिर सफर फिल्म का गीत सुनवा दीजिए। सफर के सारे गाने अच्छे हैं।
4: आपकी पसंद का गीत हम सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
5: थैंक यू।

0: डॉक्टर शीतल कुमार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे। डॉक्टर साहब, बात करेंगे आपसे माइग्रेन के बारे में। हम बात कर रहे हैं
1: जी।
0: अब अगर हम लक्षण की बात करें, अभी आपने बताया कि एक पेशेंट को पहले ही पता चलता है कि मुझे इस तरह की बीमारी होने वाली है, इसके लक्षण क्या है?
1: देखिए, लक्षणों को हम थ्योरेटिकली किताबी भाषा से तो 3-4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके 4 स्टेजेस हम मानते हैं, जिसको पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसके मेरे को 4 स्टेजेस में ये बीमारी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ने या समझने के हिसाब से उसको हम इसमें बांटते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोड्रोम स्टेज कहते हैं, जो कि बीमारी से पहले की स्टेज होती है। फिर एक ऑरा स्टेज होती है, जिसमें पेशेंट की ब्लरिंग होती है विजन की, साफ दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें चुंधी आती हैं, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और सबसे जो मेन लक्षण है, तीसरा आता है इसका, सिरदर्द का, जिसको हम हेडेक कहते हैं, जो सबको पता चलता है कि अब हो गया
0: जी।
1: और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे क्लिनिकल लेवल पे डायग्नोसिस बनाने के लिए,
0: इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कैसे करते हैं?
1: इन्वेस्टिगेशन जनरली इसकी क्लिनिकल ही होती है
0: जी।
1: इसके ब्लड टेस्ट या सब कराने से कुछ फायदा नहीं मिलता है। इसकी क्लिनिकल ही डायग्नोसिस होती है, पेशेंट की हिस्ट्री सुनकर, उसको जानकर कि कैसे शुरू हुआ, कितनी देर हो गई, कितना लंबा अटैक आया, उससे ही बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्फर्मेटरी हमारा जो रहता है वो इसका पोस्ट्रोम, यानी कि बीमारी ख़त्म होने के बाद की स्टेज है।
0: कितने दिनों तक माइग्रेन रहता है?
1: आमतौर पे 1 या 2 दिन तक माइग्रेन रहता ही है, कई लोगों को 3-3 दिन भी चलता है। तो एक टर्म होती है, 3 दिन से ऊपर जिसका माइग्रेन कंटिन्यू कर जाता है उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसस कहते हैं, कि वो कंटिन्यूसली माइग्रेन के अटैक में रहता है। तो दैट इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेज, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, फुल्ली ड्रेन्ड आउट हो जाता है, एग्जॉशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आमतौर पर अगर हम इसको देखें तो 1-2 दिन तक रहता है
0: जी।
1: तो प्रोड्रोम जो मैंने आपको बताया है कि जो बीमारी के आने से पहले की स्टेज है, उसमें ये समझ लीजिए कि 4-6 दिन या हफ्ता पहले पेशेंट को कुछ ऐसे आभास होने लगते हैं कि कुछ मेरे साथ गलत है, वो सो नहीं पाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा आता है और अपने किसी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ से उसको लगता है कि कुछ गलत मेरे शरीर में हो रहा है। तो सेकंड स्टेज जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ऑरा की, वो सब मरीजों में नहीं पाई जाती, किसी में जनरली 50-60% तक होती ही नहीं
0: जी।
1: और जिनको होती है उनको जनरली आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होती दिखाई देती है, साफ नहीं देख पाते हैं, अदरवाइज वो ठीक देखते हैं, लेकिन इस स्टेज में वो थोड़ा सा कम देख पाते हैं।
0: ये जो माइग्रेन है सिर के पूरे हिस्से में होता है या?
1: जी नहीं, वैसे तो सेट करेक्टर नहीं है, लेकिन आमतौर पर आपको ये सिर के आधे हिस्से ही मिलेगा, लेफ्ट हाफ में या फिर राइट हाफ में। लेकिन सिम्टम डिफर करते हैं, सेम पेशेंट में बार बार डिफरेंट सिम्टम हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। हम अगर ये कहें कि सेट पैटर्न पे इसी तरह का दर्द आएगा, ऐसा नहीं। तो ये कई बार फेस से भी शुरू होता है, मुंह से भी शुरू हो सकता है, सिर से भी शुरू हो सकता है। आमतौर पर आप इसको ये सिर के आधे ही हिस्से में मिलेगा, पूरे हिस्से में नहीं मिलेगा आपको। तो हेडेक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, उसके साथ आपको ये जो उल्टी का आना है, ये एक सबसे कॉमन फैक्टर है कि उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं से हम डायग्नोसिस बनाना शुरू कर देते हैं कि ये माइग्रेन हो सकता है। और जब पेशेंट ये बताता है कि 1-2 दिन जा चुका है, दवाई थोड़ी बहुत खा के भी नहीं जा रहा है, तो हमारा विश्वास और पक्का होता चला जाता है कि माइग्रेन की तरफ ही है
0: जी।
1: फिर भी 2-3 बार अटैक आने के बाद ही हम उसको लेबल करते हैं कि ये माइग्रेन का दर्द है। अगर पेशेंट बार बार एक ही डॉक्टर से मिलता है और बताता है कि 2 बार मुझे पहले हो चुका है, 3री बार आ गया है, 4थी बार हो गया है, तो फिर हम विश्वास से ये बात कह देते हैं कि अब ये माइग्रेन है और उसकी कुछ प्रिवेंशन है जो आदमी कर सकता है। और हेडेक के अलावा जो हमको, मैं बता रहा था आपको कि जो बाद वाली स्टेज है, पेशेंट ठीक होने के बाद इतना थकान महसूस करता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, वो हमें और भी ज़्यादा विश्वास दिलाती है कि जिस बीमारी से आदमी ये ग्रसित था वो माइग्रेन ही थी। और इसके अलावा लक्षण तो ज़्यादा इसमें और दिखते नहीं हैं। और ये ज़रूर है कि
0: खास आपने बताया कि डिप्रेशन
1: से शुरू होगा, और आमतौर पर डिप्रेशन से होगा, पेशेंट को नहीं पता चलता है। एक आम आदमी अपने आप को डिप्रेशन में नहीं गिनता है, जबकि आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी में डिप्रेशन सभी की ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है।
0: किस उम्र में ये होता है?
1: जनरली ट्वेंटीज़ लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाएगा। और एक बार किसी में ये इस्टेब्लिश हो गया किसी को माइग्रेन, तो फिर तो रिपीटेड अटैक्स आते हैं, जो माइग्रेन का कैरेक्टर है कि रिपीटेड रिकरेंट अटैक्स, बार बार आएंगे, दर्द होगी और एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न में होगी, इतने दिन की होगी, उल्टी आएगी, कुछ काम नहीं होगा।
0: ये कितनी बार महीने में इस तरह की?
1: अगर हम महीने का हिसाब देखेंगे तो पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों का काम इस तरह का है कि उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ता है, डस्ट में जाना पड़ता है, या फिर जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे फैक्टर उसको बार बार अटैक की तरफ लेके जाएंगे। तो
0: जी,
1: आप ये समझ लीजिए कि अगर उसका प्रोफेशन ऐसा है कि कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत शोर है, तो महीने में 10 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता।
0: जी जी। और शरीर के किस अंग को ये नुकसान पहुँचाता है अगर माइग्रेन हो?
1: देखिए, कोई भी बीमारी शरीर में होगी तो सारा शरीर उससे प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, हम ठीक से खा नहीं सकेंगे, पी नहीं पाएंगे, अल्टीमेटली पेशेंट का जो इफेक्ट है पेशेंट के ऊपर, माइग्रेन का फाइनल इफेक्ट है, दैट इज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस, ठीक से खाना नहीं खा पाना, और फाइनली जब पेशेंट ठीक से आहार नहीं लेगा तो बॉडी ने वीक होना है और बहुत सारी बीमारियाँ उसको पकड़ सकती हैं। बट अदरवाइज किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को, हाथ को, पैर को, या किसी ऑर्गन को वो इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं।
0: आपने बताया कि इसका इलाज नहीं है,
1: इलाज का एक प्रॉपर तरीका नहीं है।
0: हम इस पर चर्चा करेंगे अगले हिस्से में। अभी अपनी पसंद का एक और गाना आप जरा बताइए, कौन सी फिल्म का गाना है?
1: अक्सर हमराज पिक्चर का गाना सुनता हूँ मैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।
0: जी, जी, महेंद्र कपूर की आवाज़
1: जी, बहुत अच्छा गाना।
0: बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म रही है, बहुत ही शानदार फिल्म रही है
1: जी, बिल्कुल।

0: महफिल सजाता रहूं तुम मगर साथ देने का।
1: डॉक्टर शीतल कुमार हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के अगले आखिरी हिस्से में आए हैं। अगर हम इलाज की बात करें, आपने वैसे कहा कि इसमें इलाज कोई नहीं है, ऐसा क्यों?
2: इलाज की बात देखिए, ऐसा है कि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक बीमारी है, हम इससे बच सकते हैं। इलाज तो किसी को दर्द है तो दवाई से वो दर्द तो चला जाएगा, लेकिन बीमारी को हम अप्रूट या उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर पेशेंट कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरते तो उसको बार बार

0: में या माइनर अटैक्स में हम ये समझते हैं कि एस्पिरिन या पीसीएम खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खा सकता है। प्रॉब्लम ये आती है पेशेंट को डोज का पता नहीं। ले तो सकता है, पीसीएम ले आएगा, बच्चा 12 साल का है, पीसीएम कितना खिलाना है ये नहीं पता है। अपने हिसाब से वो बच्चे को सोचेगा कि 12 साल का है, आधी गोली दे देते हैं या उसका एक क्वार्टर दे देते हैं। तो हायर मेडिकेशन या लो डोसेज में एक मेडिकेशन हमेशा नुकसान करेगी, एक प्रॉपर डोज में नहीं आएगी, तो इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक माइनर अटैक है पीसीएम का, उसको पता है, तो वो ले सकता है और उससे चला भी जाएगा। एस्पिरिन की गोली से, पैरासिटामोल की गोली से वो दर्द चला जाता है। प्रॉब्लम आती है जब अटैक थोड़ा मॉडरेट या सीवियर होता है, वहाँ फिर ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो प्रोफिलैक्सिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लाइफस्टाइल। आपको बचना है लंबे सफ़र से, पहाड़ी सफ़र से, भीड़ से, तेज़ मसाले वाले खाने से, और जैसे बहुत शोर वाला इलाका है उससे, धुएं से, पॉल्यूशन से, इन चीज़ों से जितना बच सकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कोई त्यौहार का टाइम आ रहा है तो हरिद्वार सब लोग दौड़ते हैं कि आज वहाँ नहाने जाना है, कुंभ का मेला है, कुछ है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो धार्मिक आस्था होती है, जाना होता है। तो जो माइग्रेन का पेशेंट है जिसको पता है कि मुझे ऐसा होता है, तो उसको उस चीज़ में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पहुंचने के लिए भी भीड़ वाली बस में ठसाठस भर के जाएगा और उसको जब पहुंचने से पहले उसको माइग्रेन का अटैक डेफिनेटली आ जाएगा।
1: जी जी,
0: वहाँ जाएगा, रहने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत कंजेशन होगी, वहाँ परेशान रहेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए।
1: आपने बताया डॉक्टर साहब कि खाने पीने की चीज़ों को एहतियात।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेज़ मसाला है, तेज आपको गैस्ट्राइटिस कराएगा और जब भी वॉमिटिंग आप में इंड्यूस होगी उसमें माइग्रेन को हेल्प करेगा, इसलिए उससे बचना चाहिए। आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया है,
1: जी जी।
0: हर आदमी बर्गर के पीछे दौड़ता है और हॉट डॉग के पीछे दौड़ता है। छोटे छोटे गाँव में भी हॉट डॉग की रेडी आपको देखने को मिलेंगी आजकल। सबसे पहली बात, हाइजीनिक नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है,
1: जी जी।
0: पहली बीमारी वहीं से, अगर माइग्रेन नहीं आएगी तो कोई पेट की बीमारी आएगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन सब लोगों से जो हॉट डॉग बेचते हैं, पर अगर वो सफाई से बेचें तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर उसको ठीक से ढक के रखें, बरसात है, चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, जो चीज़ें ख़राब हैं उनको फेंक दें, नए सिरे से ले लें।
1: डॉक्टर साहब, परमानेंट सोल्यूशन इस डिजीज़ का
0: यही है सिर्फ सोल्यूशन, क्योंकि आपको मैंने बताया कि प्रोड्रोम स्टेज है, पेशेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। और जिसका एक बार ये डिजीज़ इस्टेब्लिश हो गया, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कि ये माइग्रेन आपको है, उस पेशेंट को हमेशा अपने कैरी बैग में या अपनी सबसे नज़दीक वाली अप्रोच वाली जगह पे एक मेडिसिन का स्ट्रिप रखना चाहिए कि जो मैं इमरजेंसी में खा सकूं। दूसरी बात, अटैक आने से पहले अगर मेडिसिन ले ली जाती है तो उससे क्या होता है कि अटैक अपने सीवियर फॉर्म में नहीं आता है, वो एक आध दिन में सबसाइड कर जाएगा और दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर पेशेंट उस समय लापरवाही करेगा कि सिर में दर्द ही है, चला जाएगा, कल तक चला जाएगा, जिसको पता नहीं है माइग्रेन वो तो ऐसा ही करेगा, लेकिन जिसको पता है कि मुझे माइग्रेन है उसको कभी इससे वो नहीं करना, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
1: अगर हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं में इस तरह की बीमारी ज्यादा होती है, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: महिलाएं हमेशा अपने साथ एक पर्स कैरी करती हैं, हैंड बैग कैरी करती हैं।
1: वो तो ठीक है, लेकिन और क्या परहेज करना?
0: परहेज यही है कि सबसे बड़ी बात है रिलैक्सेशन, एक बहुत बड़ी बात है।
1: तनाव नहीं,
0: तनाव मुक्त रहना चाहिए। भजन भक्ति तो औरतें करती ही हैं, उससे बहुत सारी मानसिक शांति मिलती है। आजकल योगा का चलन हो गया है तो योगा से भी हम इसको रोक सकते हैं। और अगर किसी को मेडिसिन लेनी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो एक सिंपल सा फिनोमेना है कि पैरासिटामोल की टैबलेट और उसके साथ एंटीमेटिक हम कहते हैं जो उल्टी रोकने वाले ड्रग्स हैं, जैसे पेरिनॉर्मल लोग लेते हैं, उसको कॉम्बिनेशन में लें तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और सीवियर अटैक में हम एर्गॉट के डेरिवेटिव लेते हैं, जो एक वैसोग्रेन जनरली लोग टैबलेट ले लेते हैं उसमें होता है। लेकिन किसी को उल्टी का मन है तो वैसोग्रेन को अवॉइड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हमें तनाव मुक्त रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सुबह की सैर है, योगा है, ये सब चीज़ें आदमी को तनाव से मुक्त करती हैं और माइग्रेन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
1: डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस आज के कार्यक्रम में। माइग्रेन पे हमने बात की, विस्तारपूर्वक बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का चलते चलते गीत बताइए, कौन सा हम आपको सुनवाएं?
0: चलिए, अब चलने का समय हो गया है तो एक तेरे घर के सामने एक फिल्म है, उसका गाना है देखो रूठा ना करो, जो मैं अक्सर अपनी वाइफ के लिए गाता हूँ।
1: जी जी जी,
0: वो आप रेडियो पे सुनवा दीजिए।
1: चलिए, आज भी हम उन्हीं के लिए ये डेडिकेट करें आपकी तरफ से।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शीतल कुमार, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में। माइग्रेन पे आपने तफसीलन जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शीतल कुमार के साथ की गई भेंट वार्ता आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय रहा माइग्रेन, कारण और उपचार। आपके साथ बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
1: www.sdcollegeambala.ac.in

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी ओम नमो संट्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: dala झेल एक है लता मंगेशकर एक है रेडियो मितस्ता हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित जैन, निदेशक जनगणना निदेशालय हरियाणा, आप सबसे मुखातिब हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के बारे में बात करना चाहता हूँ। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है, जहाँ विकास की गति निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में सटीक और अद्यतन आंकड़े हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है। इसी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। जनगणना 2027 कई मायनों में विशेष है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को स्वयं जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा में स्वयं गणना सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जिसके दौरान आप घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात 1 मई 2026 से जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य प्रारंभ होगा। इस दौरान प्रगणक आपकी जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर तक जाकर एकत्रित करेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनगणना में दी गई आपकी सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी, और जो भी आप हमें बताएंगे वह सर्वर्स के ऊपर बहुत सिक्योरिटी के साथ रखे जाते हैं। कोई भी अथॉरिटी इस जानकारी को हमारे से नहीं ले सकती। देखिए, टोटल 33 क्वेश्चंस इस बार की जनगणना के अंदर है, तो यूनिकनेस इस बार हम पूछ रहे हैं कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो समय के साथ, बदलाव के साथ हमने ये सवाल भी ऐड किए हैं। हमारी हेल्पलाइन 1855, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1855 वो खुल चुकी है। यदि हरियाणा के किसी नागरिक को कोई कष्ट है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन है 1855। आप अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से डायल करिए, ये सीधा हमारे कॉल सेंटर के अंदर कनेक्ट होगा और उनको स्वयं जनगणना या ऑर्डिनरली कोई भी जनगणना से संबंधित सवाल है उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा।
1: मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी करें, सही और पूर्ण जानकारी दें और जनगणना को सफल बनाने में सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त और विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
2: सही रास्ता

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
1: www.sdcollegeambala.ac.in

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
3: ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
2: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
3: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
2: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ 90.0 ਮੈਗਾ

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: अगस्त 1935 को जब टैक्स देने से मना कर दिया तो नवाब ने यहाँ पर गोलियां चलाई और जिसमें 23 आदमी शहीद हो गए 8 अगस्त 1935 को।
1: जी
0: हाँ, तो 35 को शहीद हो गए। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे मूवमेंट चलता रहा और काफी यहाँ से फ्रीडम फाइटर भी निकले और जो बुढ़ेड़ा गांव है अपने नजदीक बुढ़ेड़ा गांव पड़ता है वहां एक कुआं था, वो कुआं भी नवाब ने भुरवा दिया था, उसको मिट्टी डलवा दी थी उसमें। तो वो ये कहते थे कि यहाँ के इस कुएं का जो पानी पिएगा वो फ्रीडम फाइटर, वो जंग लड़ने वाला होगा, विरोध करने वाला होगा।
1: नवाब को ये लगता था कि बुढ़ेड़े के कुएं का पानी पी के क्रांतिकारी पैदा होंगे।
0: यस,
1: वो कुआ मुंदवा दिया।
0: खैर,
1: आप एक ऐसे गांव के प्रतिनिधि हैं जिसका गुलामी के दौर में प्रतिरोध से संबंध है, दासता का प्रतिकार करने से संबंध है, ये अच्छी बात है। और आज आपने ये सारी कहानी हमारे साथ साझा कर दी संक्षेप में, तो आइए उन सभी अपने बुजुर्गों को याद करके उनको नमन करते हैं जो इस 8 अगस्त वाले आंदोलन में लोहारू के नवाब के विरुद्ध खड़े हुए थे। उन सबको नमन, उनके उनके वंशजों का अभिनंदन करते हैं और आगे बढ़ते हैं गांव को समझने की दिशा में। भारत सोपोरी जी, रेडियो वितस्ता की तरंगों के साथ दोनों हाथ जोड़ के मुखमंडल पर मुस्कान बिखेरते हुए हमारी इस महफिल का हिस्सा बन गए हैं।
2: आप सभी
1: एनजीएफ वालों, भारत जी का स्वागत
2: जी। हेलो भाई, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जीतेश जी, गुरविंदर जी और आज के मेहमान जो हमारे साथ संजीत जी है और प्रीतम जी, और आपका भी सर मेरे को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। राम राम सारियाने।
3: सर आपका भी स्वागत है और हम काफी देर से आपको मिस भी कर रहे थे
2: जी।
3: भारत जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हरियाणा के सारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं, राम राम हरियाणा, एक कैंपेन जो रोज शाम को 4 से 5 हम आपके साथ लेकर आते हैं अपने रेडियो स्टेशन पर और अपने सोशल साइट के जो पेजेस हैं वहां पर भी हम आते हैं। जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है रेडियो एनजीएफ 90.4 जिस पर हम रोजाना राम राम हरियाणा का एपिसोड लाइव करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शौरान साहब जो कि भिवानी लोहारू खंड के सरपंच हैं। भारत जी, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं उनके गांव को लेकर, उनके गांव के इतिहास को लेकर, उनके सरपंच के सरपंची के विजन को लेकर कि 3.5 साल में उनके सरपंची का विजन क्या रहा है। तो अभी शौरान साहब ने हमको बताया
1: लिखा, एक पढ़ा लिखा नौजवान वो सरपंच बनने चला, एक पढ़े लिखे सुशिक्षित नौजवान ने नौकरी छोड़कर सरपंच हो जाने का संकल्प ले लिया। और निश्चित तौर पर जब ये संकल्प लिया होगा संजीत भाई, तो दिमाग में कुछ ना कुछ एंडी वाला सपना तो होगा, भाई पाछला ने न्यू नहीं करया, उनने न्यू नहीं करया, हम न्यू करांगे, यो कर देंगे, यो तीर मारेंगे, यो पत्थर फोड़ेंगे, यो पहाड़ ढावेंगे, वो क्या था? बिल्कुल पुराने दिन याद करिए, जब सरपंची लड़ने चले थे संजीत स्योरण, उस समय उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा था अपने गांव के लिए, क्या सपने देखे थे? और वो सपनों में से कुछ ना कुछ आपने अपने चुनाव प्रचार में लोगों को कहे भी होंगे, पहले वो बताइए क्या थे।
0: जी जी, जब सबसे पहले जब सरपंच बना उससे 12-13 दिन पहले ही नौकरी छोड़ी थी जी, तो कहीं ना कहीं मन में तो होता ही है फ्यूचर को लेकर के कि कल को अगर कामयाबी नहीं मिली, अगर यहाँ पे गांव ने मौका नहीं दिया तो फिर कहीं ना आगे की दिक्कत तो आती है जी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, समझ के पॉजिटिव दिमाग में पॉजिटिविटी कर लेके और फिर मखाजी जो भी है काम है, बढ़िया काम करना है गांव के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करना है, तो उस विजन को लेकर के चले। और न्यू कोनी जी आके सिर्फ एक बार वोटा में न्यू कह दिया भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कहा है वो लगभग हमने अचीव भी कराया है जी, पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाता।
1: दो तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें बता दीजिए, 4 मत बताइए, 3 बताइए जिसके बारे में आप कह रहे हो ना जो कया सो कर्या, ऐसी कोई 2-3 बातें बता दीजिए, हमें खुशी होगी, हम आपका अभिनंदन करेंगे, आपके अभिनंदन में अंबाला से लेके और धुर दादरी तक की तालियां बजेंगी, पलवल तक की तालियां बजेंगी। जी
0: सिंगाणी गांव में एक तो ये है सर कि आप कहीं कभी भी विजिट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ आने का निमंत्रण दूंगा, आपको सारी चीजें अलग अलग आप सभी को दिखाऊंगा गांव की, जो हमने जो तकदीर और तस्वीर जो बदली है, जो हमने कोशिश की है, जिन हमसे जितना बन पड़ा उतना हमने किया है। एक तो यह है कि पूरे सिंगाणी गांव में कहीं पर भी आपको गंदा पानी आपको 1 लीटर भी नहीं मिलेगा कहीं पर भी।
1: पर मैंने तो सुने आपके आपके इलाके में पानी नहीं होता, गंदा कितना पाव था।
0: नहीं पानी तो होता ही है जी, कुएं जो सिंगाणी गांव है उसमें मीठा पानी है जी, वो अलग बात है, वो 500 फीट नीचे है लेकिन पानी मीठा है जी।
1: पानी मीठा है ठीक, तो पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है, गंदा पानी नहीं है आपके गाँव में।
0: नहीं मतलब ये है कि सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, और हमने एक चीज ये की है जी, पंचायतें हमने लोगों को सबसे पहले जब हमारी ग्राम सभा होती थी, मीटिंग होती थी, तो अभी गांव को गांव सभी जो मौजूद लोग हैं, जो समाज सेवक हैं, जो कुछ सोचते हैं पॉजिटिव जो लोग हैं, उनको बुला करके ये कहा कि सर ग्राम पंचायत है वो सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं आपको, लेकिन आम पब्लिक के बिना न तो सफाई हो सकती न कुछ और हो सकता। तो वो कुछ हमने अगुवाई आगे आकर के वो चीज की है, तो गांव का आम आदमी भी है, हमने सफाई कर्मचारी हैं, अगर पूरा गांव तो 8,000 की आबादी है, वो 5 बंदे से सफाई हो नहीं पाएगी, लेकिन ये है कि हर जो परिवार है घर है वो अपने घर के सफाई रखेगा तो पूरा गांव साफ हो जाएगा, ये हमने शुरुआत की जी। दूसरी बात ये है जो पीने का पानी था वो हमने, जो हमारा वाटर लेवल था वो काफी नीचे था, भाई नीचे का पानी हम कम से कम यूज करेंगे, और जो टीडीएस था, जो टीडीएस लेवल था वो भी आई था, तो हमने लोगों को इस बात को लेकर के जागरूक किया कि जो जो पब्लिक हेल्थ के जो कनेक्शन है, जो पानी है, जो टीडीएस कम है पानी का, उसको हम ज्यादा यूज यूटिलाइज करें, तो उस चीज में भी हमने ध्यान दिया है, वो भी हमने किया है। बूस्टिंग स्टेशन हमारे पास एक था, अभी हमने एक से बढ़ा करके, वो पूरे गांव में सप्लाई नहीं होती थी, वो सैंक्शन करवा के अभी मैंने दूसरा भी लगवा दिया, सप्लाई कर दी, स्टार्ट हो चुकी है। तीसरी चीज ये है कि जब अभी चर्चा हो रही थी शहीद स्मारक स्टेडियम बना रहे हैं जी हम, जो अनाउंसमेंट करवाई और बड़े लेवल का शहीदी सतल बना रहे हैं हम, पार्क बना रहे हैं, जो बहुत दूर दूर से देखने आएंगे, देखने लायक काफी अच्छा, और गर्व महसूस होगा कि हमारे जो बुजुर्गों ने साथ दी थी उसके लिए हमने काम किया है, तो अभी वो काम चल रहा है।
1: एक क्षण रुकिए, शहीद स्मारक के लिए आपने कितना पैसा स्वीकृत कराया, कितना काम हो गया ये बताते चलिए।
0: अभी 2,26,00,000 रुपए तो अभी टेंडर करवा दिया है, काम स्टार्ट है जी।
1: 2,26,00,000 का शहीद स्मारक बन रहा है आपके यहाँ?
0: 2,46,00,000 रुपए तो टेंडर काम स्टार्ट है।
1: तो ये 2.5 करोड़ कौन से मुद में आए, कहाँ से आए?
0: ये पंचायती राज से आए हैं, एक्शन ऑफिस पंचायती राज और हरियाणा ग्रामीण विकास योजना से सैंक्शन करवा के लेके आए हैं, और 1,15 करोड़ का इसी के अंदर, इसी में जैसे जिम्नास्टिक हॉल हो गया और बड़ा म्यूजियम हो गया जिसमें अलग अलग तरह की जो म्यूजियम है, लाइब्रेरी अलग से बुक्स वगैरह रखेंगे, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंथेटिक ट्रैक हो गया, वो उसके लिए हमने 1,15 करोड़ का एस्टिमेट और बनवाया है।
1: मतलब 2,50,000 चाहिए हैं। हाँ कोई नहीं, मिलेंगे, बढ़िया बनाओगे, मजा आ गया, ना अच्छा लगा।
0: डॉक्टर साहब करवा लेऊंगा, 100% करवा के लेऊंगा,
1: यही इतना यही आत्मविश्वास होना चाहिए सब सरपंचों का। दोस्तों राम राम, हरियाणा सुन और देख रहे हैं आप, और हमारे साथ आज सिंगाणी के सरपंच हैं, और सिंगाणी सुनन में देखने में तो घनी दूर का लाग गया हमने, उत्तर हरियाणा वाले अंतो जना कलाखर में है, मतलब लोहारू आते आते या लोहारू आने की सोच के ही पसीने छूट जाए उड़े। तो मुझे एक बार लोहारू जाने का मौका मिला एक शिक्षण संस्थान के वार्षिक समारोह में, तो मैं रात को भिवाणी जाके रुक गया, उसके बाद भी अगले दिन लोहारू पहुंचने में नहीं लागे, भाई बेरानी कितनी दूर है। तो लोहारू वास्तव में हमारे लिए, उत्तर के लिए, राजधानी के लिए वो बहुत दूर का सुदूरवर्ती क्षेत्र है, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी है, बहुत ऐसा नहीं है कि जैसे जितना आसानी से हमें पानी उत्तर हरियाणा में मिल जाता है लोहारू को नहीं मिलता। पीने के पानी का संकट भी रहा होगा, सिंचाई के जल के बारे में भी मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि अंबाड़े वर्गा करनाल वर्गा मामला होगा, कुरुक्षेत्र वर्गा मामला होगा। तो ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण परिवेश वाले गांव के सरपंच हैं संजीत जी, और हौसला न्यू है, 2.5 करोड़ तो ले लिए शहीद स्मारक के, 15 लियांगे और लेके आऊंगा, यही स्पिरिट चाहिए दोस्तों। इस बातचीत में अगर आपको लगता है कि संजीत जी से शौरान साहब से अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है, आप सरपंच भी हो सकते हैं, आप साधारण ग्रामवासी भी हो सकते हैं, हरियाणा के किसी भी हिस्से के रहने वाले हों, आप रेडियो एनजीएफ के श्रोता हों, विदस्ता के श्रोता हों, हमारे एफएम भारती के श्रोता हों, रेडियो ग्रामोदय के श्रोता हों, आप स्टूडियो के नंबर पर अभी के अभी फोन करके इनसे पूछ भी सकते हैं और इनको कुछ सुझाव देना है वो भी दे सकते हैं। भारत जी एक बार नंबर बता देंगे क्या?
2: और नंबर है, फोन करें, और नंबर है 8816904904, नंबर एक बार फिर बता देते हैं 8816904904। इजाजत देते हैं तो कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हैं। संजीव कुमार चौहान लिखते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान

0: और ग्रामवासी आपस में मिलते हैं तो आप नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं या जय हिंद करते हैं? क्योंकि अगर ऐसी सोच उस गांव की है, आप उस जो हमारी देश की जो बेसिक है उसके साथ आप जुड़े हैं, तो आप किस तरीके से अपना व्यवहार करते हैं? और साथ में आपके कार्यकाल में आपने लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए? मैं थोड़ा लेट से जुड़ा हूं, हो सकता आपने कहा हो, मैं चाहूंगा एक बार आप फिर कहें, जो श्रोता हमसे अब जुड़ेंगे उनको भी ये जानकारी पहुंचेगी।
1: जी, मैं ये मानता हूं कि गांव में अच्छे संबंध बनाने के लिए लोगों तक पहुंचना पड़ता है। आम गरीब आदमी, चाहे वो छोटी नौकरी करने वाला हो, जमींदार हो या बड़ा हो, सम्मान व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर किसी से जुड़ना है, सम्मान व्यवहार उसके साथ में करना पड़ेगा। जो भी तकलीफ है उसको दूर करना पड़ेगा। हो सकता है कई बातें ऐसी हों जिस हमारे लेवल तक, सरपंच लेवल तक ना हो, ऊपर लेवल की बातें हों, लेकिन उसमें कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात ये है जी कि सद्भावना जरूरी है। आजकल लोगों में छोटी छोटी बातों पर, गांव में आपको भी पता है कि धनी बीर की बिगड़ गई 112 बुला लीजिए, वो बहुत गलत काम है। लोगों में सहन शक्तियां खत्म हो गई हैं, तो वो चीजें कौन बताएगा, वो हमें ही तो बतानी पड़ेगी आगे आकर के।
0: जी,
1: तो हम तो हमारे लेवल तक तो यही करते हैं कि बड़ा झगड़ा होगा तो भी हमारी कोशिश यही रहती है जी, हम गांव में ही बैठ करके, पंचायत में बैठ करके, पांच भाई बैठ करके उसको निपटा लें, ताकि वो कोर्ट तक बात ना जाए,
0: या पुलिस तक
1: हमारी
0: जाए।
1: पूरी कोशिश रहती है जी।
2: मेरे मन में एक सवाल है, मैं भूल ना जाऊं इसीलिए बीच में छलांग लगा के दोबारा पूछ रहा हूं। आपने कहा 8000 की आबादी का गांव, 5 सफाई कर्मचारी और फिर भी साफ सुथरा गांव। आपने कहा जी इसलिए साफ सुथरा है कि गांव के लोगों को हमने तैयार कर लिया कि वो खुद सफाई के प्रति सचेत हों, अपने घर के आंगन को अच्छे से साफ रखें, अपने घर के सामने के क्षेत्र को भी, गली को भी, आप नाली को भी साफ रखें। भाई साहब, ये गांवों में तो ये सुनने को मिलता है कि कोई सुनता ही नहीं पंचायत की। आम तौर पर गांवों में ये शिकायत आती है, सरपंचों से भी पूछ लें कि भाई गांव ने गिल्ले क्यों लेके चलते, तो आम तौर पर कहें जी कौन माने जी, सुनता ही नहीं कोई, लोग सहयोग नहीं करते। आपके यहां जो आपको ये सहयोग मिल रहा है, ये पुरानी ही परंपरा है या कोई नए एफर्ट किया आपने विशेष रूप से कि आप जो चाहें, यानी ग्राम पंचायत जो चाहे, सरकार जो चाहे, उसमें लोग साथ खड़े हो जाएं, इसके लिए कोई विशेष प्रयास अगर किया तो वो जरूर बता दीजिए, कुछ लोगों की और रुचि होगी समझने में। क्यों जितेश जी?
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: बिल्कुल। कुछ प्रयास पहले से भी, जो मेरे से पहले जो सरपंच आए हैं उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, कि सभी ने अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे यंगर भी यहाँ पे सरपंच बने हैं। पॉजिटिविटी के साथ में सभी ने काम किया है, कोई भी ऐसा सरपंच नहीं बना है जिसने दो भाइयों का झगड़ा हो गया, एक को साथ में ले लिया, एक के साथ बिगाड़ दी, आज तक नहीं बना जी मेरे गांव में कभी भी ऐसा। लेकिन हमने भी थोड़ा सा अलग हट करके और कुछ सेमिनार वगैरह लगाए हैं और लोगों को समझाया है, जागरूक किया है कि सबसे पहले हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो हमें कामयाबी मिली भी है जी। आप कभी गांव में आके देख सकते हो, पब्लिक टॉयलेट हैं या जो भी चीज है, नीट एंड क्लीन मिलेगी है हमारे गांव में आपको। तो
2: नीट एंड क्लीन और खुली भी मिलती है, ताले तो नहीं लगे मिलते?
1: नहीं, ताले नहीं लगते जी, ताले नहीं लगाते हम, खुली मिलती है। हाँ, खुली मिलती है। दूसरी बात ये है कि लोगों को अगर कोई नहीं माने तो उसके पास में जाकर के एक बार बोलो, दो बार बोलो, बार बार हाथ जोड़ोगे तो हाथ जोड़ने तो काम चल रहा है जी, लठ बजाने थोड़ी चल रहा है। तो वो हमने कराया है जी। अगर कोई दूसरा बंदा हमें जो भी कहे, सही कहे, गलत कहे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट मोड पर भी हमें काम करवाया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता तो आती है जी।
2: चलिए, बहुत बढ़िया। ये मंडोली वाले करमवीर सिंह जी हमारे रेगुलर श्रोता दर्शक हैं और ये पंच भी अपने गांव के, तो भाई मंडोली आड़ो तुम भी सुन लो, कौन क्यों पता है कितनी दूर है आपसे मंडोली?
1: मंडोली नजदीक है जी, है 35 किलोमीटर है।
2: 35 किलोमीटर है, चलिए। तो करमवीर जी,
0: सर एक मिनट, सर्जन सिंह लिखते हैं, सुरक्षा हेतु क्या आपके गाँव में सीसीटीवी कैमरे हैं? और साथ में

0: लिखते हैं संजीव कुमार चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, नमस्कार सभी को, सर भी और सरपंच साहब को विलेज लेवल एजुकेशन अचीवमेंट के बारे में भी जानना चाहूँगा। जी सरपंच साहिब से विनम्र निवेदन है जी, गांव की एजुकेशन पर भी प्रकाश डाल लें। और साथ में टीम वीरेंद्र, जी जी टीम वीरेंद्र चौहान असंध से लिखते हैं, कितनी आबादी है सिंघानी गांव की और कितने वोट हैं? आई थिंक जो इन्होंने अभी बता दिया था 8000 की आबादी है और वोट कितने होंगे ये बता देंगे। ये दो तीन सवाल हमारे सोशल मीडिया से है, क्योंकि जो भाई हमारे, जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमें उनको भी उनकी सवालों को भी हमें लेना बहुत ज़रूरी है। और हमें इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा के श्रोता कॉल भी करेंगे, और क्योंकि जितेश जी से भी हम चाहेंगे वो भी सवाल करो। प्रीतम जी चुपचाप बैठे हैं, और प्रीतम जी आप भी अपनी वाणी को खोल दीजिए और दिल से जितेश जी आज हमारे साथ संजीव जी है उनसे पूछिए, ताकि एक ऐसा प्रयास ये रहे कि हम सब गदगद हो जाएं, खुश हो जाएं।
1: सर सबसे पहले
2: नमस्कार
3: भाई, लड़ना नहीं आपस में।
2: नहीं जितेश जी पूछे हैं पहले।
3: जितेश जी आ जाओ,
1: प्रीतम भाई पूछेंगे सर पहले।
3: ये बात पहले आप में रेल ना छूट जाए। चलिए प्रीतम जी आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं।
2: सरपंच साहब नमस्कार, मैं प्रीतम अपना रेडियो 91.2 FM चरखी दादरी से, और आपको पूरे हरियाणा के सामुदायिक रेडियो पे सुना जा रहा है। आपसे प्रेरित होके सज्जन सिंह कह रहे हैं कि मैं भी गांव का सरपंच बनने की कोशिश करेंगे, प्रेरणा लेके आपसे। ठीक है, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि मैं दादरी से हूँ, हमारी तरफ भी पानी की कमी है, आपकी तरफ तो हमसे ज्यादा, क्योंकि जो लोहारू कैनाल जाती है वो हमारे पास से ही जा रही है। जो आपने बताया कि 500 फुट नीचे से हम पानी निकाल के, आपके गांव के जो आप कह रहे हैं ना कीचड़ नहीं होता, तो उसका कारण यही होगा कि क्योंकि आपके 500-600 फुट नीचे बोर है, वहां से पानी आ रहा है। लेकिन आपने ऐसा कोई जल घर जो सरकारी, जिसको हम डिग्गी बोलते हैं, क्या आपके गांव में डिग्गी भी है? और अगर है तो आपको लोगों को, किसानों को जागरूक करके आपके जमीन का जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए, इसके बारे में बताइए। क्योंकि ये हमारे इधर दक्षिण हरियाणा के लिए, भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक ये कह सकते जरूरी है।
4: सबसे पहले तो आप सभी के, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। और मैं एक ये कहना चाहूंगा कि जो जल स्तर इतना नीचे है उसको ऊपर लेके आने के लिए हमने एक फ्लड स्कीम, अपना वाटर बॉडी रिचार्ज मैंने आने के बाद में यहाँ सेंक्शन करवाया है 5 करोड़ रुपए का। 20 एकड़ में वो वाटर बॉडी बना के तैयार कर दी है, और वो अपना जो माइनर है, असनपुर माइनर है, उसके साथ में हमने जोड़ कनेक्टिविटी कनेक्शन भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जब फ्लड उधर से, जैसे अपना भिवानी से आगे मान सकते हैं रोहतक, सोनीपत, पानीपत, उधर से जैसे बाढ़ के टाइम पर बहुत ज्यादा एक्सेस पानी हो जाता है, उसको लिफ्टिंग के थ्रू यहाँ पर पानी लेकर के वाटर बॉडी बनाई हमने, रिचार्ज फॉर द रिचार्ज वाटर रिसोर्सेज। तो वो भी हमने उसके लिए प्रयास किया है काफी।
3: कितने एकड़ में आपने ये बनाया है पानी के संग्रह?
4: 20 एकड़ में वो बना दिया सर हमने।
3: और वो चालू हो गया, उसमें पानी आ गया एक आध बार?
4: हाँ हाँ बिल्कुल आया है, और वो 20 एकड़ का बहुत बड़ा वाटर बॉडी है, काफी हेल्पफुल सक्सेसफुल भी है वो, क्योंकि वो नीचे से हमने कच्चा रखा है, तो जिससे कि वाटर रिचार्ज हो उसके, तो वो माइनर के साथ में कनेक्शन हमने कर दिया है, वो 6 महीने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं उसको, हमको काम को।
3: गांव में इससे पहले कोई इस आकार का जोड़ तो होगा कि नहीं?
4: नहीं काफी हैं, 10-12 जोड़ हैं, लेकिन वो छोटे हैं जी, एक एक दो दो एकड़ के। अभी हमने इकट्ठा एक जोड़ बना दिया 20 एकड़ का।
3: और ये 20 एकड़ लैंड जो है आपने कहां से ली? पंचायत की जमीन?
4: नहीं पंचायत की जमीन है जी, हमारे पास में पंचायत की काफी सारी जमीन है, लगभग हमारे पास में मान सकते हैं लगभग 700-750 एकड़ जमीन पंचायत की है।
3: संगम को एक बार हम टोकते हैं, रेडियो ग्रामोदय से पूछते हैं कि भाई लोग आप स्टूडियो में हो के नहीं? संगम अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप स्टूडियो में हैं तो कम से कम ये बता दीजिए कि आप हैं और आपकी फोन लाइन खुली हुई है, क्योंकि बार बार मैं ये देख रहा हूं आज वहां बिजली का कोई इशू है शायद, संगम बीच में आते हैं, फिर लुग आउट हो जाते हैं, वो हमारे साथ उस तरह से जिसे कहते हैं ना स्थाई कनेक्टिविटी के मोड में नहीं है, और इसी कारण से शायद ये संकट पैदा हो रहा है कि कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एफएम भारती पिहोवा से जुड़े हैं, मैं भारत जी की तरफ से और प्रीतम जी की तरफ से, जितेश जी की तरफ से, गुरविंदर भाई की तरफ से और आज के मेहमान सरपंच संजीत जी की तरफ से एफएम भारती के भी सभी श्रोताओं को राम राम कहता हूं और राम राम हरियाणा से आप नियमित जुड़ रहे हैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मजा तब आएगा भरत जी, कह दूं
0: जी प्लीज सर,
3: मजा, हाँ मजा तब आएगा जब हर दिन कम से कम एक श्रोता एक स्टेशन से हमें मिनिमम कॉल करके अपनी बात कहे
0: जी।
3: जब पिहोवा के आसपास के किसी गांव से, चनालेड़ी से या कोई भी गांव, मेरे को चनालेड़ी श्याम सिंह जी का गांव याद आ गया, वहां से कोई कॉल करे, प्रीतम जी के यहाँ से कोई कॉल आए और पलवल के गांव से कॉल आए, और गांव से क्यों, दादरी शहर से भी आए, पलवल शहर से भी आए, और छावनी जहां मैं कल गया था, आप सबको बता दूं कि मैं कल भारत जी के स्टूडियो में गया पहली बार, तो वहां से भी कॉल आनी चाहिए। मुझे बहुत आनंद आया प्रीतम जी जब मैं पहुंचा भारत जी के यहाँ, इनकी तपस्थली, इनकी कर्मस्थली, इनका स्टूडियो देखा, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी ना कल की वो ये थी, मैं इनको कह रहा था कि जब भी आपके यहाँ आऊंगा तो कहवा पीऊंगा, कश्मीरी परिवार में जाओ और कहवा ना पियो तो फिर बात नहीं बनती,
0: नहीं बनती।
3: तो इन्होंने जाते ही कहवा से ही मेरा स्वागत किया और बहुत सारी बातें खैर वहां हुई, इस विषय पर किसी और अवसर पर चर्चा करेंगे। वापस लौटते हैं, वापस चलते हैं हम सिंघाणी, तो सिंघाणी आप हैं तो सिंघाणा भी अगल बगल में है क्या कोई?
4: सिंघाणा राजस्थान में है सर, राजस्थान हाँ, तो में है,
3: जहां के सेठ लोग सिंघाणी हाउस कहलाते हैं। तुम्हारे भी सिंघाणा है एक जींद में, सफीदों अच्छा। विधानसभा क्षेत्र में, सफीदों विधानसभा क्षेत्र में मुआना सिंघाणा दो गांव हैं।
0: सर मैं एक बात जोड़ना मैं भी चाह रहा हूं, हमारे अंबाला के आसपास भी जैसे रजोला है और रजोली है, तो वो गांव तो आसपास है, उनका तो आपस में बहुत सारा प्यार है, बट ये सिंघाणी के साथ तो ये ज्यादती हो रही है कि सिंघाणा बहुत दूर है।
3: सिंघाणा दूर है वैसे ना, हरियाणा में क्या
4: दूर नहीं, स्टेट भी अलग है उनका।
0: वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, वो बिना सीमा के कहीं पर भी चला जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज संजीव जी के चेहरे पे जो मुस्कान है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने कॉन्फिडेंट है, और जो भी इन्होंने करना है अपने गांव के लिए बहुत कुछ तो काम चल रहा है, और जैसे इन्होंने ये निश्चय किया है कि मुझे गांव के लिए ये करना, अभी जैसे इन्होंने वाटर बॉडी की बात की, और आज के डेट में हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजीत जी मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा, आप इस समय अंबाला छावनी से प्रसारित होने वाले एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के सभी श्रोता आपको इस समय लाइव सुन रहे हैं, जो हमारे अंबाला के आसपास के गांव हैं उनमें पानी की कोई कमी नहीं है, इवन ये भी मैं बताऊं कि जो हमारे आसपास के गांव का पानी है उसमें जीरो बी लगाने की भी जरूरत नहीं, इतना साफ सुथरा पानी है इवन यहाँ अंबाला में भी। आप इन सभी गांव ग्रामवासियों को और सरपंच और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे पानी को बचाने के लिए, और साथ में अगर पानी अच्छा है साफ सुथरा है तो उसकी कितनी कीमत हमें रखनी चाहिए, और वो लोग ज्यादा समझते हैं जैसे चरखी दादरी है, जैसे आप लोग हैं जहां पानी की बहुत कमी है या 500 फीट तक नीचे पानी चला गया है, आपने इतना अच्छा काम किया है जो वाटर रिचार्ज आप कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और साथ में सभी हरियाणा के श्रोताओं को?
4: जी जी जी, आपके श्रोताओं को सबसे पहले मेरा नमस्कार।
3: भारत जी के सवाल को मैं थोड़ा तड़का लगा देता हूँ
0: जी
3: भाई, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे यहाँ भी उत्तर में भी पानी की किल्लत थी, और वो दौर भी था जब खेत में खाड़ का पानी उसको कपड़े से छान के पी लिया करते थे, जोहड़ होते थे, जोहड़ के पानी को छान के कपड़े से, कपड़ छान करके उसको पिया करते थे। तो उस दौर से निकल के हम यहाँ हैं कि अब पानी ऐसे ही बहता, अब हमारी नाली में ऐसा पानी बह रहा होता है कि उसमें बिस्लरी की बोतल भर ले और ढक्कन बंद करके आप बेच आओ तो वो कहेगा जी ये तो बिल्कुल कतई फैक्ट्री से सील लाया है
0: जी।
3: तो वो दृश्य जो था ना पानी की किल्लत वाला, हमने तो बहुत थोड़ा सुना है। आपके समय में भी संजीत जी कोई, आपके जीवन काल में, आपकी सोदियों में, मारे न्यू क्या मेरी सोदिया में नहीं हुआ था, आपकी सोदियों में पानी की किल्लत सिंगाणी में किस डाल की रही है और आज पीने के पानी की क्या हालत है? खराब स्थिति का भी चित्र खींचिए जो आपने खराब से खराब देखी है, और आज हम जहां खड़े हैं वो भी बताइए, और फिर दीजिए वो उपदेश जो अंबाला वालों को देना है, जो करनाल वालों को देना है, जो FM भारती को देना है, जो रेडियो ग्रामोद सुनने वाले गोंदर और आसपास के श्रोताओं को देना है। संजीत भाई
4: जी, जो पहले यहाँ पे जो पानी का जो स्तर था, जो नीचे अंडरग्राउंड जो पानी का स्तर था वो काफी ऊपर था, तो अब पानी धीरे धीरे यूटिलाइज हुआ है। आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे कॉटन कपास नहीं मरती थी जी, हमारे यहाँ पे पैडी की भी नहीं है, यानी कि पहले पानी कम यूज होता था। जब से ये कपास कॉटन का और वीट का और जो जितना ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है जी, पानी ज्यादा यूज होगा। नहरों का भी नहीं होता था यहाँ पे, नहरों का पानी नहीं होता था। पिछले 8-10 सालों से यहाँ पे जो रजवाए हैं, माइनर हैं, उनमें भी पानी आया है और उनकी वजह से पानी का स्तर भी ठीक हुआ है। दूसरी बात यह है, अभी सरकार भी, हमारी सरकार भी इस बात को लेकर के काफी कदम, ठोस कदम उठा रही है कि जो नीचे का पानी है उसको कम यूज किया जाए और जो पब्लिक हेल्थ का है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जो पहले खुली जो नोजल चलती थी, स्प्रिंकलर चलती थी, उसकी बजाय ड्रिप इरिगेशन को हम बढ़ावा दें। तो हम यहाँ पर भी काफी सारे इस तरह की जो कंपनियां आई हैं, सेमिनार भी लगे हैं, ड्रिप इरिगेशन भी काफी लगा है। दूसरी बात यह है कि बिजली का कम से कम यूज जो है उसको कम दून करेंगे, सोलर पैनल जो है वो भी कनेक्शन काफी सारे गांव में हुए हैं। तो पानी बचाने, पानी तो बहुत जरूरी है जी बचाना, लेकिन सबसे बड़ी हमारे लिए ये था कि यहाँ पे नहरों का पानी नहीं था, नहर का पानी तो आता ही नहीं था, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पे कनेक्टिविटी है पानी की है वो बड़ी है, जिससे जल स्तर भी हर साल, हर 2 साल में, 3 साल में 10-15 फीट पानी नीचे चला जाता था। तो अभी नहरों में पानी आया है तो उससे जो जल स्तर है वो बराबर हुआ है, नीचे नहीं गया है, तो उसमें काफी हमें हेल्प मिली है।
0: जितेश जी आपका प्रश्न रह गया है, आप अपना प्रश्न पूछिए। संजीत जी हमारे सवाल का क्या होया? मैं ये कह रहा कि जो आपको इस समय हमारे अंबाला के श्रोता सुन रहे हैं, चाहे वो गांव में है, तो पानी की उपलब्धता यहाँ तो अच्छी है, पर उस पानी को कैसे बचाना चाहिए, उसकी कीमत हमें कितनी बनानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम पानी दे सकें और उसका संरक्षण भी कर सकें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितेश जी से, वो अपना प्रश्न पूछे। जी
4: जी जी, वो तो उस पानी बचाने के लिए हर आदमी में अवेयरनेस इस बात को लेकर के है लेनी होगी कि वो हमें बचाना, पानी बचाना पड़ेगा। अगर बड़े स्तर पे सोचें तो जो हमारी जो जो खेती है उसमें किस में ज्यादा पानी यूज होता है, उसको कैसे हम कंट्रोल, सारी चीजें हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी जो है अपना पानी है जो घरों में यूज करते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। घरों में, लोकल गांवों में नल जो है ना, टंकी भर गई उसके बाद में खुला छोड़ देते हैं, ये छोटी छोटी चीजें काफी उससे सुधार लाया जा सकता है।
0: जी जितेश जी,
1: चौहान साहब आपकी ग्राम पंचायत को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ढेर सारे सराहनीय काम अब तक कराए हैं अपने 3.5 साल के कार्यकाल में, और हम आगे उम्मीद और आशा करेंगे कि आप आगे भी अपने ग्राम पंचायत के लिए ऐसे काम करते रहें। पीछे जैसे कि आपने बताया कि मेरे से पहले जो भी सरपंच रहे उन्होंने भी अच्छा काम किया, तो आपकी ऐसी सोच को हम दिल से सलाम करते हैं, सारे ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन और सारा ही हरियाणा, क्योंकि पीछे जो सरपंच रहे हैं उनके बारे में तारीफ या उनके काम को कोई भी कवर नहीं करता, तो आपकी ऐसी सोच को हम सारे लोग दिल से सलाम करते हैं। सर, शिक्षा की हम बात करेंगे, पानी की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, सड़कों की बात हुई, जैसे डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी ने बताया कि मैं पीछे गया तो बहुत लंबी हो गई मेरे लिए चीजें आना जाना। सर, शिक्षा को लेकर हम बात करेंगे। आपने बताया कि आपके गांव की जो आबादी है वो 8,000 है, तो शिक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो हमारे गांव में कितने हैं और उनको हमारी जो ग्राम पंचायत है वो कैसे मोनिटाइज करती है। कोई कमेटी हम लोगों ने बना रखी है या फिर हमारा जो ग्राम पंचायत हमारे स्कूल्स और हमारी शिक्षा को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। और अभी जैसे हाल फिलहाल में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं हरियाणा बोर्ड के, तो हमने देखा है कि काफी उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं सारे ग्राम पंचायतों पर है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। थोड़ा सा लिंगानुपात के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव का जो लिंगानुपात है वो क्या है।
4: जी जी जी, शिक्षा के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा जरूरी आज के दिन शिक्षा है और शिक्षा की वजह से ही आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे वही है। तो मेरा मानना ये है कि जो स्कूल की एसएमसी जो कमेटियां होती हैं, सरपंच का ये होता है कि समय समय पर जा करके स्कूल में जा करके बच्चों को कोई दिक्कत है, स्टाफ को कोई दिक्कत है, उसको ठीक किया हर स्कूल में, कक्षा में, हर कक्षा में, ऑफिस में, बाहर हमने कैमरे लगा रखे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने उसके साथ साथ में हमने प्रॉपर सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं कि बच्चों का जो वॉशरूम है वो प्रॉपर ठीक है, सफाई है या नहीं है, कोई घास वास तो नहीं है जिससे मच्छर ज्यादा होते हो, उससे बच्चों को बीमार ना पड़ जाए, तो वो चीजें हम विशेष ध्यान रखते हैं, सफाई रखते हैं प्रॉपर। दूसरी बात यह है कि हमने एक सुझाव पत्र रख रखा है, सुझाव पेटी लगा रखी है, अगर किसी के बच्चे को भी कोई भी दिक्कत है तो वो अपना, अगर कई बार बच्चा ऐसी दिक्कतें आती हैं वो अपना नाम भी नहीं बताना चाहता, लेकिन वो हमने सुझाव पेटी रख रखी है तो वो अपने सुझाव रखते हैं, हम उसको चेक भी करते हैं, देखते भी हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे दिक्कत क्या क्या है, तो उसके बाद में हम स्टाफ और एसएमसी कमेटियां वगैरह सभी बैठ करके और उसके ऊपर हम मंथन भी करते हैं और सारी चीजों का, अगर कोई इस तरह की कोई बातें हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं।
0: गुरविंदर जी, अगर आपका भी कोई सवाल है वो आप पूछिए और मैं संजीत जी से पूछना चाहूंगा, क्या आपने भी अपना ग्राम सचिवालय बनाया है, क्या आप वहीं से लाइव है और किस तरीके से आप अपनी ग्राम सभा करते हैं, उसमें महिलाओं का कितना रोल होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जहां पर कोई भी फैसला हो अगर उसमें महिलाओं का भी साथ है, उनकी राय ली जाती है और उनके फैसले को भी सुना जाता है और उसको लागू भी किया जाता है, तो वहां पर उन्नति जरूर होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद कृपया गुरविंदर जी, अगर आपका सवाल है तो आप भी पूछिए। जी संजय जी।
4: जी जी जी जी जी, ग्राम सचिवालय है जी, और अभी उसकी जो बिल्डिंग है वो कुछ पुरानी हो रखी है, हमने नए फुली जल्दी अपना सेंक्शन भी हो जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, ये बात आपने सही उठाई है कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में तो ऐसा नहीं था कि इतनी कोई भागीदारी और नहीं हो पाती थी, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, हमें भी थोड़ा सा इस बात को लेकर के जोर हमने भी दिया है कि ग्राम सभा होती है या कोई भी मीटिंग होती है तो जो हमारी पंच हैं महिलाएं हैं और जो जहां पर हमारी मीटिंग होती है तो कोशिश करके हम ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर होगी, आशा वर्कर होगी, उन सभी को हम बुलाते हैं जी मीटिंग में और उन सुझाव भी लेते हैं और कोई परेशानी है तो वो दूर करने की कोशिश करते हैं।
0: जी गुरविंदर जी।
5: हाँ संजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अपने गाँव में ऐसे विकास कार्य कराए हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि गांव वासियों, जो पूरे भारत वासियों को इनकम को डबल किया जाए।
0: एक कॉल आ रहा है, गुरविंदर जी एक कॉल आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
6: जी मैं नारनौल से बोल रहा था, नमस्कार जी।
0: अच्छा जी, नमस्कार।
3: अब बोलिए तो सही, हम आपको सुनना चाहते हैं महाराज,
0: सुंदर सी आवाज को हम सुनना चाह रहे हैं।
6: मैं मनीष बात कर रहा था
0: जी।
3: हाँ, आप कर नहीं रहे थे, आप कर रहे हैं, करिए मनीष जी, हम आपको देखने और सुनने फंस गए
6: जी। मैं आपसे जी जी जी आपसे उस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, इसलिए आपसे फोन के जरिए।
0: मनीष जी आप जुड़े हैं कार्यक्रम में, आप बात करिए, आप क्या कहना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं।
3: रेडियो अरावली से मनीष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी तनिक बताइए क्या क्या हो रहा है उधर सुदूर दक्षिण में। आज तो सरपंच भी दक्षिण के हमारे साथ जुड़े हैं, संजीत चौरान जो सिंघाणी के सरपंच हैं, लोहारू खंड में इनका गांव है। अगर मनीष जी कनेक्टेड हैं अभी भी हमारे साथ, मनीष जी मैं आपको सुन क्यों नहीं पा रहा, क्या हुआ ये बुलंद आज कहां गुम हो गई?
1: सर कॉल डिस्कनेक्टेड हो गई
0: जी। चलिए गुरविंदर जी, गुरविंदर जी कुछ कह रहे हैं सर।
5: अरे संजीत जी मैं पूछना चाहता था कि जीविका के बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए हैं गांव वासियों की, जो चाहे खेती बाड़ी में हो, बागवानी में हो, और भी जो कार्य वो कर रहे हैं उस इनकम को बढ़ाने के लिए क्या आप कर रहे हैं?
4: जी जी जी जी वो असल में क्या है, यहाँ पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रिपीट जो क्रॉप है वो जो रिपीट होती है वो एक जो है ना एक जो लीक खींच दे, एक लाइन खींच दे, उसके पीछे हमारे जो जमींदार हैं वो चलते रहते हैं। तो उसको इनकम को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह की सब्जियां हैं उनको उगाया जाए, और इसके साथ साथ में छोटा जमींदार है वो अपना अलग सोर्सेज इनकम अलग अदर सोर्सेज के लिए अलग से कोई छोटी दुकानें हैं या कोई सब्जी उगा करके इस तरह की बचत कर करके कि भी उसको अपनी आमदनी है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की काफी यहाँ पे सेमिनार वगैरह चलते हैं, अलग अलग कंपनियां हैं वो आती हैं, लेकिन अभी जो जितना हमें करना चाहिए उतना अभी हम कर नहीं पा रहे हैं लोगों की, क्योंकि खर्चे बढ़ा लिए हैं जी लोगों ने।
3: स्वयं सहायता समूह है आपके गांव में?
4: हाँ जी,
3: सेल्फ हेल्प ग्रुप।
4: बिल्कुल।
3: उनकी गतिविधियां क्या हैं, वो क्या करा रहे हैं कुछ महिलाओं के आजीविका बढ़ाने के लिए?
4: जी जी जी जी जी जैसे सिलाई सेंटर के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो छोटे छोटे जो बच्चों के खिलौने जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनको खुद ही घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, या छोटे स्तर पर उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं जी हमारे पास, लेकिन अभी उसको ग्राउंड लेवल पर तक लेके आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी कर रहे हैं जी कोशिश, प्रयास है हमारा पूरा।
3: एक सवाल मेरा अभी जो मुझे मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, प्रीतम जी पूछ लूं अनुमति हो तो?
2: हाँ पूछ लीजिए।
3: हाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है 2014 में मनोहर जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लेके हरियाणा में सरकारी नौकरियों के मामले में एक बड़ा परिवर्तन आया। सरकारी नौकरी बिना खर्ची पर्ची के मिलेगी, बिना सिफारिश के मिलेगी, मेरिट पर मिलेगी, परिश्रम करने वाले को मिलेगी, मेधावी को मिलेगी, जाति जिला नोटों का झोड़ा इनकी भूमिका समाप्त कर दी गई। तो इस परिवर्तन के बाद आपके गांव से सरकारी नौकरियां पाने वाले नौजवान नवयुवतियों की संख्या कितनी होगी आज तक की, 14 से लेकर आज तक?
4: देखो ये है जी, मतलब काफी जब ट्रांसपेरेंसी आती है तो फायदा गरीब परिवार तक जाता है सबसे पहले, तो ये चीजें काफी हेल्पफुल हैं। सरकार ने जो कदम उठाए हैं खर्ची पर्ची बंद करके, ये काफी अच्छे कदम हैं सरकार के। और दूसरी बात ये है कि देखो जी सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, इतने सोर्सेज सरकार के पास में भी नहीं है कि वो सभी को सरकारी नौकरियां दे दे, लेकिन इसके साथ साथ में ये करना पड़ेगा कि जो उनके पेरेंट्स हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उन अलग से कैसे इनकम आ सके, जो हमने हमारे खुद के हमने खर्चे बढ़ा लिए हैं। एक 15 साल का नौजवान 50,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन लेकर के चलता है, बाइक लेकर के चलता है, उनको कैसे कम किया जाए और इनको इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, तो वो चीजें देखो जी कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा उस चीज उनके लिए।
3: अच्छा गांव से आज तक संजीत जी याद करके जहन पे दिमाग पे जोर डालकर बताइए कि सरकार में सबसे बड़े पद पर आपके गांव से आज तक कौन पहुंचा है, आर्मी में या राज्य या केंद्र की सरकार में, चाहे रिटायर हो गया हो चाहे सर्विस में हो, कोई ऐसे नाम याद आते हैं?
4: हाँ जी बिल्कुल, अच्छे पदों पे रहे हैं, अभी भी हमारे गांव से ही हैं, एडीसी हैं मध्य प्रदेश में, और गेम से भी निकले हैं बच्चे, मतलब अच्छे पदक लेके आए हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में हो चाहे वो रेसलिंग में हो। तो बाहर से भी 3 बच्चे हैं वो मेडल लेके आए हैं इंटरनेशनल। कुछ है मतलब अवेयरनेस बच्चों में आती है, अभी आई है, जब बच्चे सरकारी, एक बच्चा सरकारी नौकरी लगता है तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे हैं वो उनमें एक चीज आती है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और विशेष बात यह है कि जी पहले हमारे बच्चे ग्रामीण आंचल के जो बच्चे थे वो पुलिस में लग जाएंगे, कलर्क लग जाएंगे, फौज में लग जाएंगे, आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी लेवल तक की, चाहे वो मेडिकल लाइन की तैयारी हो, तो बच्चे अलग अलग लाइनों में निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है जी, हमारे लिए पॉजिटिव बातें हैं।
3: दो छोटे छोटे सवाल मेरे और हैं लेकिन मैं बाद में पूछूंगा, मेरे जो दूसरे मित्र हैं चाहे भारत जी हैं, प्रीतम जी हैं, आप लोग अपनी बात कह लीजिए, चलते चलते दो सवाल मैं भी पूछूंगा। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं इसलिए परीक्षा लेने जैसे सवाल होंगे, संजीव जी तैयार रहिएगा, और उससे पहले मित्रों के मित्रवत प्रश्न।
0: प्रीतम जी,
2: संजीव जी, सोरेन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि बच्चों के खर्चे बढ़ गए, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, आप बैंक में थे, आपको पता है कि बहुत से जैसे नाबार्ड होती है, आपका इलाका है इसी पे आधारित है, तो आपने बच्चों को, आपकी पंचायत के सदस्यों को ने ऐसा कोई गांव में कैंप लगवा के युवाओं को जागरूक करके या उनको लोन दिलाने के लिए काम किया कि आप इसके थ्रू अगर आपको सरकारी नहीं मिली तो आप अपना खुद का उद्योग भी स्थापित कर सकते हो?
4: देखो जी, मैं तो बैंक में रहा हूँ, सबसे पहले अगर बच्चों को हम लोन के बारे में बताएंगे तो वो ठीक नहीं है। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो सबसे पहले तो बच्चे का ये है कि उसको सोचना है कि वो करना क्या है, उसको कौन सी लाइन में जाना है, सबसे पहले तो डिसीजन ये होता है जी, उसको करना क्या है। दूसरी बात ये है कि बच्चे हैं वो सबसे पहले, हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी लगे, अच्छे पदों पे जाए, लेकिन ये धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी कि प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी आजीविका है आपकी, अच्छी चल सकती है, आप समाज के लिए, आप राष्ट्र के लिए अच्छी कंपनी खोल सकते हो, आप खुद नौकरी करोगे, सरकारी नौकरी करोगे और आप अपनी कंपनी खोल करके और आप 100 को 200 को आप रोजगार दे सकते हो। तो ये चीजें धीरे धीरे आएंगे जी। हमने जब 1.5 साल पहले की बातें हैं तो अलग अलग जैसे कंपनियां हैं वो आती हैं कि भाई बच्चे हैं वो कैंपस हायरिंग के लिए, कि भाई कोई ग्रेजुएशन कौन है, उनमें कितनी काबिलियत है। कंपनियां, 1-2 कंपनियां आई भी हैं गुड़गांव से, तो अभी उस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं जी, अभी इतनी हमें कामयाबी नहीं मिली है इस बारे में, रोजगार के ऊपर सरकार के हाथ फुले हुए हैं जी, हम तो बहुत छोटे लेवल से शुरुआत लेवल से
3: एक चीज ठीक करता हूँ भाई साहब, एक तो समझ लीजिए सरपंच साहब, अगर मोदी जी भारत की सरकार चलाते हैं, भारत की सरकार है आज की तारीख में जनता के आशीर्वाद से, अगर नायब सिंह जी वो हरियाणा की सरकार है, राज्य की सरकार चलाते हैं, तो संजीत सोरेन सिंघाणी के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सिंघाणी की सरकार हैं, तो यही तो अंतर है कि उनका दायरा बड़ा है, आपका दायरा, आपका गांव है, लेकिन ताकत आपकी भी उतनी है, आप कम करके क्यों आंकते हैं अपने आप को? भारत जी कुछ कह रहे हैं
0: जी। एक बहुत ही अच्छा कमेंट और बहुत जरूरी कमेंट आया है जो हमारे इस प्रोग्राम में जिसकी बात होनी चाहिए। संजीव कुमार चौहान लिखते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी नमस्कार, मैं भी बताना चाहूंगा कि मैं भी TGT इंग्लिश टीचर सिलेक्ट हुआ हूं जी, मेरा कोई पैसा ना लगा मतलब बिना पर्ची बिना खर्चे लगा हुआ है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि निष्पक्ष भर्ती से मेरी नौकरी लगी है, तो ये शाबाशी है हमारे सभी हरियाणा के लोगों ने, उन्होंने एक ऐसी सरकार चुनी है जो लोगों के हितेशी बात करती है
3: जी। अब मैं, क्योंकि 2 मिनट बचे हैं और मैं चाहूंगा आप सबकी अनुमति से दो वो सवाल पूछ लूं जिनका जवाब मैं सोचता हूं सही सटीक संजीत भाई देंगे। संजीत जी, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास ग्राम विकास का पंचायत का मंत्रालय था तो ग्राम गौरव पट बनाए गए थे, हर गांव में ग्राम गौरव पट नाम से एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा किया गया था। आपको ध्यान है ग्राम गौरव पट क्या थे? आपको आपके गांव में अभी है लगा हुआ?
4: जी जी जी, उसको हम प्रॉपर हम संभाल करके उसकी सफाई रख रख के उसकी प्रॉपर अगर कोई टूट फूट हो जाती है उसको मेंटेन रखते हैं। जी
3: मैं आपका अभिनंदन करता हूं अगर आप ऐसा करते हैं। मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि बहुत सारे हरियाणा के गांव में जो ग्राम गौरव पट लगाए गए थे, स्थापित किए गए थे, जिस पर गांव की उपलब्धियां, गांव के विशिष्ट लोग, किसी ने कोई बड़ा काम किया, कोई खिलाड़ी हुआ, कोई अफसर हुआ, कोई बड़ा राजनेता हुआ गांव से, उन सबका उल्लेख उसमें, जिन पर गांव को गौरव है, वो करने का एक सिलसिला धनखड़ जी के समय में हुआ था। बहुत कम गांव ऐसे हैं जहां बाद की पंचायतों ने ग्राम गौरव पटों की अच्छे से संभाल की है। तो आपके माध्यम से, आज के कार्यक्रम के माध्यम से, पहले आपका अभिनंदन कि आप अपने गांव के क्षमा करिएगा, आप अपने गांव के ग्राम गौरव पट की संभाल कर रहे हैं, आपका अभिनंदन। और मैं सभी सरपंचों से जो इस कार्यक्रम को अब देखें, बाद में देखें, जिन तक ये आवाज पहुंचे, मैं कहूंगा, और केवल सरपंच नहीं, गांव के मेंबर्स, गांव के पंचायत के सदस्य, गांव में रहने वाले ब्लॉक समिति के सदस्य, कोई जिला परिषद का मित्र रहता है वहां, वो भी, गांव के लोग अपने अपने गांव के ग्राम गौरव पट की संभाल जरूर करें। कई जगह मैं गया गांव में तो गोबर के ढेर लगे हुए उनके नीचे, कुरड़ी गंदगी उनके आसपास हो, कहीं पत्थर टूट गया है, उसकी कभी सफाई नहीं हुई, संभाल नहीं हुई। तो ग्राम गौरव पट अपने अपने सबको संभालने चाहिए, आप संभालें। अच्छा अच्छा, एक अवधारणा जिस पर बीते कई महीनों से भारत सरकार काम कर रही है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पाई, इसके बारे में आपने सुना है क्या?
4: सुना है जी, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे पता नहीं है इतना इसके बारे में।
3: पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है ये आप आज के कार्यक्रम के बाद फोन करके अपने ग्राम सचिव से कहिए कि भले मानस बतायू केस होता है, अगर आपका सचिव वो भी हाथ खड़े कर दे तो फिर कल वर्किंग डे है, कल बीडीपीओ के पास जाइए और उससे पूछिए, जो भी आपके खंड विकास और पंचायत अधिकारी हैं, कि हे भद्र पुरुष, हे अधिकारी महोदय, ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है जरा बताइए, जरा समझाइए, तो आप वहां से समझिए। और कल के कार्यक्रम में, कल के लाइव में आप वीडियो पे ही जुड़ेंगे, आप फोन पे जुड़ेंगे, कॉलर की तरह आएंगे, और कल आप हरियाणा भर के लोगों को बीडीपीओ और सेक्रेटरी से जाना हुआ पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का अर्थ, ये तो आप गूगल देवता से भी पूछ लोगे, वैसे बता देगा, लेकिन इतना नहीं, केवल इतना नहीं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की केवल परिभाषा नहीं जाननी, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, क्यों है, केवल इतना नहीं जानना, मुझे आपके गांव के पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की स्थिति भी जाननी, वो भी कल आप आंकड़ा अगर लेकर के सामने आएंगे तो मैं ये मानूंगा कि हम जो ये कसरत कर रहे हैं, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका लाभ वो हरियाणा को दिलवाने में हम अंततोगत्वा कामयाब होंगे। भारत जी, मेरी ओर से राम राम है, और मुझे लगता है सबकी ओर से राम राम कहने का समय, 5:02 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में, हम अपनी सीमाएं पार कर गए हैं। एक एक वाक्य में सब लोग राम राम कहना चाहें तो कह सकते हैं, ताकि सबकी राम राम, सबको राम राम हो जाए।
2: सभी को राम राम अपना रेडियो की तरफ से,
0: और हमारी तरफ से भी सभी को राम राम। और मैं चाहूंगा कि जैसे वीरेंद्र जी कल यहाँ पर आए थे, ऐसे ही वो अलग अलग सामुदायिक रेडियोज पे जाएं, बात करें राम राम हरियाणा की, पाई की, और बहुत सारी बातें हमने की कल जो लाइव हमने शो किया यहाँ से। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप सभी का प्यार बना रहेगा। राम राम हरियाणा।
1: श्रोता और देखने वालों को रेडियो एनजीएफ परिवार की तरफ से राम राम हरियाणा, और कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ और डिस्कशन।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
4: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता।

0: रास्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: पेशा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4 प्रस्तुत करेंगे RJ किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का नमस्कार। पेश है कार्यक्रम सरगम। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गीत के साथ, जिसको संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, जिसके गीतकार है अनजान और गायक है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

की पेशकश है फिल्म दुल्हन वही जो पिया मनवाए से, जिसके संगीतकार और गीतकार है रविंदर जैन और गाया है हेमलता ने।

0: लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम कहानी से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है आनंद बख्शी।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है सरगम।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म त्रिशूल से, जिसके संगीतकार है खयाम, गायक है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश, और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

लीजिए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां का गाना, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आर डी बर्मन।

अब सुनाने जा रहे हैं वर्मा मल्लिक का लिखा हुआ गीत, जिसको संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायक है लता मंगेशकर और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

अगली पेशकश है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश किशोर कुमार की आवाज़ में गाना, जो फिल्म है अमर अकबर एंथोनी से, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनते हैं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसके बोल है आनंद बख्शी के, गायक हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म है हरे कृष्णा हरे रामा।

लीजिए पेश है प्रोग्राम की अंतिम पेशकश, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक आशा भोसले और फिल्म है लोफर। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रति

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता अपने श्रोताओं का बहुत खास ध्यान रखता है। रेडियो वितस्ता के कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर एक मुहिम हमने चलाई है कि हम प्लास्टिक से नाता तोड़ दें। इसके लिए हमें एक आदत अपनी जिंदगी में जोड़नी होगी, वो है शहर न करो मैला, साथ ले जाओ थैला। जी हाँ, आप जब भी घर से निकलें अपने कार स्कूटर में एक थैला जरूर रखें, ताकि जब आप बाजार से सब्जी इत्यादि अपने थैले में ले आएंगे तो आप पॉलिथीन से नाता तोड़ पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी श्रोता और अंबाला वासी हमारे इस मुहिम में साथ दें, ताकि हम अंबाला को साफ सुथरा और स्वच्छ पर्यावरण में हम अपना योगदान दें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रण में हमेशा साथ देंगे और अंबाला को साफ सुथरा बनाने में अपना योगदान देंगे। और हम उम्मीद ये करते हैं कि अंबाला सफाई में भारतवर्ष में नंबर एक आ जाए। तो याद रखें, शहर न करो मैला, घर से साथ ले जाओ थैला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान राजेंद्र रहबर। आप किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। रहबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी।
0: आपके कलम से निकली एक नज्म है, तेरे खुशबू में बसी खत।
1: मैं जलाता
0: हाँ, बिल्कुल। हम अपनी बातचीत इसी नज्म से शुरू करते हैं।

0: रेवर साहब, क्या तसव्वुर रहा होगा उस वक्त जब आपने ये नज़्म तैयार करके अपने सुनने वालों तक पहुंचाई?
1: बात यूँ है मराठा साहब कि आमतौर पर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे उन ख़तों को जो उसे उसने बड़ी देर संभाल कर रखा होता है उन्हें ज़ाया करने की, उन्हें फाड़ देने की या जला देने की नौबत आ जाती है। तो ये एक सदियों का भटकता हुआ प्रश्न था जिसका जवाब मैंने दिया है कि उसे क्यों ना, गंगा पवित्र नदी है, हम कोई हमारी धार्मिक किताब जैसे गीता है उसको दीमक चाट जाए तो हम उसे बहते हुए पानी में बहा देते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना उन खतों को गंगा में बहाया जाए
0: जबकि गंगा का पानी भी निर्मल है।
1: हाँ, बहुत पवित्र माना जाता है।
0: और फिर मखमली आवाज़ जगजीत सिंह से कैसे राबिता हुआ और उन्होंने अपनी आवाज़ बख्शी और मुझे लगता है कि काफ़ी मशहूर हुई ये नज़्म आपकी?
1: हाँ हाँ, ये पिछले 30 साल से जगजीत सिंह गा रहे थे इसको, 1980 से लेकर टिल हिज डेथ उन्होंने इसे गाया है। तो मैं चंडीगढ़ में रहा करता था और मेरे पड़ोस में एक शायर साहब रहते थे बड़े मशहूर, प्रेम वार बर्टनी, उन्होंने 22 फिल्मों के गाने भी लिखे थे बॉलीवुड में, और वो बाद में चंडीगढ़ सेटल हो गए तो शाम को हमारी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। तो ये नज़म मैंने उन्हें सुनाई, उन्होंने फौरन इसे सुनते ही कहा कि इस नज़म को जगजीत सिंह जी गाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने मुझे जगजीत सिंह का एड्रेस भी अता फरमाया और कहा कि इसके कितने स्टेंजे हैं। मैंने कहा कि इसके 8 स्टेंजा हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 स्टेंजा जगजीत सिंह को भेज दें
0: जी।
1: मैंने कहा कि वो आप ही सिलेक्ट कर दें क्योंकि उनका बैकग्राउंड बॉम्बे की थी, जगजीत सिंह की वो समझता था कैसी चीज़ पसंद करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 स्टेंजा सिलेक्ट कर दूँगा, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद उनकी मौत वाक़या हो गई और मैंने फिर खुद ही जगजीत सिंह को ये किताब भेजी। मल्हार किताब मेरी छप के आई थी उन दिनों, उसमें ये किताब शामिल थी। ये 75-79 की बात है
0: जी।
1: तो जगजीत सिंह ने इसे गाना शुरू कर दिया उसी वक्त, और मैंने उनके 2 एल्बम देखे, एक कनाडा का बना हुआ था एक इंग्लैंड का, उन दोनों में ये नज़म शामिल थी। फिर लेकिन उन्होंने 3 बंद गाए इसमें से, तो नज़म कुछ 2 मिनट और 28 सेकंड की टोटल अवधि थी उसकी, जो इनसफिशियंट मालूम होती थी। तो फिर मैंने पूरी नज़म उनको भेज दी, उसमें से उन्होंने 4 स्टेंजा सिलेक्ट करके गाए और अब ये 4.25 मिनट की इसकी अवधि है।
0: जी जी, इस तरह से ये नज़्म काफ़ी लोगों ने पसंद इस नज़्म को की।

0: हाँ, इस नज़म को बेपनाह मकबूलियत
1: जी जी
0: मिली है,
1: बिल्कुल
0: जैसे सहल दयानवी की नज़म ताजमहल को, या फिर हफीज़ जलंधरी की नज़म अभी तो मैं जवान हूँ। तो मेरी नज़म भी ख़ास तौर पर नई जनरेशन में ये बहुत मकबूल है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी लोग इसको जानते पहचानते हैं और पसंद करते हैं।
1: रेवर साहब, आपकी लिखाई में जब आप कलम से अपना लिखना शुरू करते हैं तो उर्दू को इस्तेमाल में लाते हैं। उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से आपने उर्दू सीखा? और
0: ऐसे है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ सारी तालीम उर्दू ही में दी जाती थी। हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, ये सभी सब्जेक्ट उर्दू में पढ़े, और हमारे स्कूल की दीवारों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे उर्दू के शेर लिखे रहते थे। जैसे पहली जमात हमारी जो थी उसकी एक दीवार पर शेर लिखा हुआ था कि कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो हमारे चौथी
1: आमतौर पे स्कूलों में इस तरह के अशआर लिखे जाते थे
0: उन दिनों, होते थे, अब तो नहीं होते ऐसे अशआर,
1: अब तो नहीं होते हैं। जी जी,
0: अब तो स्लोगन से होते हैं या चार्ट लगे होते हैं। तो हमारे चौथी क्लास के मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल कादर, वो एक शेर गुनगुनाया करते थे इस क्लास में पढ़ाते थे, उधर चक्कर लगाते वो शेर बोलते जाते थे कि वो शेर यूं था कि या इलाही मिट ना जाए दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। ये शेर वो गुनगुनाया करते थे तो मुझे भी याद हो गया, और कई देर तक ये मुझे आज भी याद है। और एक हमारे ये भी रिवाज था कि क्लास को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था और शेरों का मुकाबला कराया जाता था।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
0: जैसे आजकल अंताक्षरी का रिवाज चल
1: बिल्कुल,
0: पड़ा है,
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह वो शेरों का मुकाबला होता था, और हमें कई हमारे जो सबक था वो शेरों की सूरत में भी याद कराया जाता था। जैसे आठ शहरों के नाम एक शेर में आ जाते हैं, ये शहर शायद अफगानिस्तान में है या ईरान में, ईरान के भी कुछ शहर हैं, उनका यूं सा शेर, समरकंद, कोकंद, खेवा, खजंद, ये चारों
1: शहर हैं।
0: समरकंद, कोकंद, खेवा, खजंद, बदख्शां, बुखारा, बलख, ताशकंद,
1: बिल्कुल सारे शहर है अफगानिस्तान,
0: अफगानिस्तान के
1: जैसे
0: ये
1: बुखारा वगैरह।
0: हाँ जी, बलख, बुखारा मशहूर जगह हैं। तो ये शेर हमें आज भी याद है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नाम हमें शेर की सूरत में याद कराए थे। और शहनशाह अकबर ने जो हिंदुस्तान में फतूहात हासिल की थी उनके बारे में भी एक शेर मुझे आज याद है जो मास्टर जी ने हमें याद कराया था। फतूहात अकबर जो था शाह हिंद, उड़ीसा व बंगाल, गुजरात, सिंध, ये वो इलाके थे जो अकबर ने फतह किए थे। तो वे भी एक शेर में हमें याद हैं आज तक।
1: रेवर साहब, हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे आपके साथ, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपकी पसंद का कोई गाना हो जो हम अपने तमाम सुनने वालों को उन तक पहुँचाना चाहेंगे।
0: हाँ जी, मुझे ये एक हीर रांझा फिल्म का गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, रफ़ी साहब की आवाज़ है।
0: हाँ जी,
1: बहुत ही शानदार गाना है, और इस फिल्म में राजकुमार हैं और इस पर पिक्चराइज था ये गाना, मरहूम राजकुमार। तो आपको हम ये गाना सुनवाते हैं।

0: जाहिर है कि जब इस तरह के गाने सुनते हैं जैसे ये गाना अभी आपने आपकी चॉइस पे हमने सुनाया, कस्मे वादे प्यार वफा सब आते हैं बातों का क्या, तो इस तरह का आपका मिजाज है शेर लिखने का। कुछ किताबें होंगी जिनमें इस तरह के शेर दर्ज हैं?
1: हाँ, मेरी 7-8 किताबें छपी हैं। पहली किताब तो थी मेरी आगोश गुल, वो एक तज़किरा था शिमला हिल्स के 22 उर्दू शायरों का। उसमें मैंने जिक्र किया है, उनका कलाम शाया किया है, उनके फ़ोटो शाया किए हैं, उनके हालात ज़िंदगी शाया किए हैं। उसके बाद फिर 1962 में मेरा अपना मजमू कलाम कलस के नाम से शाया हुआ था। उसके बाद 75 में मल्हार नाम से मेरी एक किताब देवनागरी स्क्रिप्ट में शाया हुई थी। फिर 78 में मेरी किताब या और शाम ढल गई के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे बिहार उर्दू अकेडमी ने अवार्ड दिया था। और फिर 97 में मेरी एक किताब ज़ेब सुफन के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब ने बेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ द ईयर 1997 करार देते हुए मुझे अवार्ड दिया था। उसके बाद मेरी किताब शाया हुई, इसका उसका नाम था तेरे खुशबू में बसे ख़त। अच्छा, ये तेरे खुशबू में बसे ख़त नाम मैंने कैसे रखा, ये भी एक दिलचस्प वाक़या है कि टी सीरीज़ ने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक कैसेट निकाली, उसका नाम रखा उन्होंने तेरे खुशबू में बसे ख़त। उसमें मेरी पोएम भी है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिर उसके बाद HMB ने सारे गामा ने एक निकाली एल्बम, उसका नाम भी रखा तेरे खुशबू में बसे ख़त। तो फिर मेरा मजमूआ कलाम छपने वाला था उन दिनों, मैंने भी नाम रख दिया तेरे खुशबू में बसे ख़त। तो उसके बाद फिर 2008 में मेरी एक किताब याद आऊँगा, हिंदी और उर्दू दोनों ऑडिशन हैं उसके, वो छपी है।
0: आमतौर पर हम कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आप इस बुलंदी पर हैं, आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
1: मेरी जो अहलिया हैं वो शायर तो नहीं है, भजन वगैरह गाती
0: लेकिन
1: रहती
0: आपको सपोर्ट तो करती हूँ।
1: हाँ, मेरे मिलने वाले जो आते हैं शायर लोग बड़ी तादाद में आते
0: यहाँ पे, आपने एहतियात बरतना होगा क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाएं।
1: हाँ, नहीं, वो उनके हक में उनको चाय वगैरह पिलाने की जिम्मेवारी मेरे दोस्तों को नहीं होती।
0: रहबर साहब, कभी आपको गुस्सा आता है?
1: बहुत कम। कहते हैं जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो अपना गुस्सा अपनी जान पर ही निकालते हैं, तो मैं भी शायद ऐसा ही करता हूँ
0: जी। उम्र के इस पड़ाव में हैं आप और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी क्या कुछ काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है?
1: जो नज़म मैंने कहनी है वो अभी नहीं हुई है शायद, तो एक शेर भी मेरा इस तरफ इशारा करता है। वो शेर यूँ है, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, वो गीत अभी साज के पर्दों में छुपा है।
0: जी,
1: तो उम्मीद रखनी चाहिए शायद वो गीत भी कभी साज के पर्दों से बाहर आए। तो मेरी आमतौर पर ये आदत है कि मैं सुबह के वक्त 3 बजे 3:30 बजे उठ के लिखता हूँ, और जो चीज़ उस वक्त लिखी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो चीज़ लिखने की तमन्ना है वो किस वक्त बाहर आ जाएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो शायराना तबीयत या परमात्मा के हाथ में ही है ये सारी बात।
0: जी जी जी, आपका कोई मनपसंद शेर होगा जो आप यहाँ कहना चाहेंगे, कोई आपकी?
1: पिछले दिनों मैंने एक अजीब रंग में गजल कही है, जो मैंने जिस रंग मैंने आज तक नहीं कही, यानी हास्य रस में। उर्दू शायरी संजीदा शायरी होती है आमतौर पर, और मैं भी संजीदा शायरी ही लिखता रहा हूँ, लेकिन एक मजाया नज़म पता नहीं कहाँ से गजल उभर के आ गई पिछले दिनों, बिल्कुल नई है, कि दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। दूसरा शेर है कि हो के दिन भर के काम से फारिग, हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैं कदे भी जाया कर।
0: क्या बात,
1: ये मशवरे हैं इसमें, गलत मशवरे ज्यादा है। हो के दिन भर के काम से फारिग, शाम को मैं कदे भी जाया कर, और जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
1: जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर। एक शायर को मैंने आज कहा, एक शायर को आज मैंने कहा, शायरों को आदत होती है जबरदस्ती शेर सुनाने शुरू कर देते हैं
0: जबरदस्ती।
1: हमारे एक शायर दोस्त से, प्रोफेसर बिमल कृष्ण अश्क, वो कहा करते थे, लो रैबर भाई 5 गजलें सुनो, तो 5 गजलों के लिए वो बुक कर लेते थे। तो ये शेर उसी तरह इशारा करता है कि एक शायर को आज मैंने कहा, बिन कहे शेर मत सुनाया कर, और देख कर राह में हसीनों को, रास्ते से भटक न जाया कर।
0: क्या बात, क्या बात, क्या बात।
1: और एक शेर और याद आ गया इसका मुझे, वो भी सुन लीजिए कि सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, हम फकीरों को कुछ खिलाया कर।
0: क्या बात है जी जी। आपकी नज़र में औरत क्या है एक तख्लीकार होने के नाते?
1: उर्दू शायरी जो है, जहाँ तक उर्दू शायरी का तअल्लुक है, मैं तो उर्दू से ही वाबस्ता हूँ और उर्दू ही का खादिम हूँ। उर्दू का मिजाज जो है ये लड़कपन से आशकाना रहा है और रहेगा। अगर ये रोमांटिक शायरी को हटा दिया जाए उर्दू शायरी में से, तो मेरा ख्याल बाकी जो है वो इतना अपीलिंग नहीं रह जाता। इसलिए औरत का जिक्र हमारे शेरों में अक्सर होता है और हमारे तमाम बड़े शायरों ने रोमांटिक शेर लिखे हैं और गालिब ज़ौक मोमेंट से लेकर आज तक भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लिखते आ रहे हैं।
0: और मुझे लगता है कि कामयाबी भी हासिल होती है इस तरह के शेर।
1: ये जो रोमानी शायरी होती है अल्टीमेटली यही जिंदा रहती है,
0: क्योंकि आपके जो जितने भी आपकी लिखाई हम पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह का जिक्र है कहीं कहीं पे मिलता है हमको।
1: ये एक ऐसा जज्बा है जो हर वक्त इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा कायम रहता है, वो किसी शक्ल में भी हो, तो ये भी मोहब्बत का एक इजहार ही है। लेकिन शेर को पढ़ते वक्त आप उसे चाहे जिनसी मोहब्बत की तरफ ले जाएं या परमात्मा की मोहब्बत की तरफ ले जाएं, दोनों तरफ उनके मीनिंग निकलते होते हैं आमतौर पर।
0: जी जी जी। एक तो जगजीत सिंह साहब ने आपकी नज्म को अपनी जुबान अपनी मीठी सुरीली आवाज दी, इसके अलावा किसी फनकार से आपका कोई कलाम?
1: अनुराधा पौडवाल ने गाया है और एक नॉर्वे में रहते हैं गायक जहान दत्ता उनका नाम है, उन्होंने मेरी एक गजल गाई है, वो उसका नाम गजल यूं है कि बस चंद ही दिनों के थे डेरे चले गए, खाना बदोश लोग सवेरे चले गए, हाथों में अपने जाल सुनहरी लिए हुए गहरे समंदरों के मछेरे चले गए, कुछ मैकदे की समत गए झूमते हुए, कुछ मन चले फकीर के डेरे चले गए। ये गजल उन्होंने गाई है। उसके अलावा ये पठानकोट में बड़े मशहूर एक गायक रहते हैं कुलदीप राय, वो भी मेरा कलाम गाते हैं, तीन चार चीज़ें गाते हैं वो मेरी, आगे उनके शागिर्द भी गाते हैं।
0: जी जी जी। आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, क्या इस तरह का आपने कोई आगे रखा है कि कोई स्कूल या कोई अटेंड करेंगे जहाँ पे लोग आपके पास सीखने आए?
1: ऐसे है कि ज़ाती तौर पर लोग आते रहते हैं, मेरे पास कोई स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। जो आता है और मुझसे कोई मशवरा व तलब करता है तो वो मैं उसे ज़रूर बताता हूँ जितना मुझे आता है। तो मैं कोई उस्ताद शायर नहीं समझता अपने आप को कभी, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद हो चुके हैं, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं दोस्ताना मशवरे ज़रूर देता हूँ और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अपना शागिर्द नहीं कहता कभी, सिर्फ दोस्त समझता हूँ उन्हें।
0: जी रेवर साहब, आपकी चॉइस पे कोई गाना हो जो यहाँ हमारे सुनने वालों को हम पेश करें?
1: लग जा गले, ये लता मंगेशकर जी का है, लग जा गले।
0: ये गाना बड़ा शानदार है, सुरीला गाना है।
1: हाँ जी।
0: तो ये गाना आपको पसंद है?
1: हाँ जी।
0: सुनना चाहेंगे?
1: जरूर सुनना चाहूँगा और मेरे जो श्रोता हैं वो भी सुनेंगे तो खुश होंगे इसको।

0: चलते चलते चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के शायर हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम होगा आपकी तरफ से?
1: उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो छंद शास्त्र ज़रूर सीखें। खुली शायरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन इतनी नहीं जितनी छंदबद्ध शायरी को पसंद किया जाता है। उसमें जब रदीफ और काफ़ी आते हैं, टणकता हुआ काफिया हो, जैसे ये मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, ख्वाब इसमें काफिया है, जैसा है रदीफ, मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, तुम्हारा हुस्न महकते गुलाब जैसा है, तो ये जब काफिया और रदीफ आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। और खुली कविता हो तो इतनी प्रभावित नहीं करती सुनने वालों को, और जो शायर लोग लिखेंगे छंद शास्त्र के अंदर रह के, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है दूसरों की निस्बत।
0: जी जी, अपने अपने रेडियो के बारे में एक सवाल चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि रेडियो भी आप सुनते हैं मैंने सुना है, और आकाशवाणी कठुआ आप सुनते हैं?
1: हाँ जी सुनते हैं।
0: कोई यहाँ का बहुत लोग पॉपुलर प्रोग्राम है कोई जो आपको ज़्यादा पसंद है?
1: वो मैं जो प्रोग्राम ज़्यादा सुनता हूँ वो है यादें बन गई गीत।
0: जी जी,
1: वो शनिवार को आता है, शनिवार रात 10 बजे से 11 बजे तक वो मैं सुना करता हूँ। उसके अलावा और प्रोग्राम भी, गाने के फरमाइशी
0: प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहेंगे?
1: इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़े इश्तियाक के साथ सुनता हूँ, कभी नागा नहीं डालता इसे सुनने में। और ये मेरा ख्याल है कि आम लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, और अपनी अपनी जो उनकी यादें हैं वो यहाँ रिकॉर्ड करवाते हैं, और उसके साथ उनकी याद से मिलता जुलता गाना भी आप लगाते हैं, और ये आप ही की जेरे निगरानी होता है काम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइवर साहब आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आप हमारे यहाँ स्टूडियोज में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके हैं काफी मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण हमारे यहीं अब संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। बात करते हैं सिर्फ वो जो आपसे सरोकार रखती है, और हम है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, जो अम्बाला छावनी से प्रसारण करता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा, और आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02:14। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी, FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो वितस्ता है, धड़कन आप सभी की। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और आज के प्रसारण को यहीं पर समेटने का। सुबह से लेकर अब तक सुरों, तरंगों और ज्ञान की जिस सफर पर हम साथ चले, उम्मीद है कि वो आपके दिल के करीब रहा होगा। श्रोताओं, आज का दिन बेहद खास था। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। हमारी धरोहरें, हमारा इतिहास ही हमारा असली पहचान है। और तो चलिए आज के इस खास रात को विदा कहने से पहले इस दिन को थोड़ा समझते हैं, और इस दिन के महत्व पर छोटा सा विचार साझा करते हैं आप सभी के साथ। इतिहास और संस्कृति के जरोखे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय वो जगह हैं जहां पर वक्त कभी भी नहीं ठहरता, बल्कि ये वो खिड़कियां हैं जहां से हम अपने गुजरे हुए कल को देखकर अपने आने वाले कल को संवारते हैं। हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1977 में इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ म्यूजियम ICOM द्वारा की गई थी। इस दिन को मनाने का असल मकसद समाज में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। संग्रहालय क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं कुछ बिंदुओं से। पहला, इतिहास के रखवाले। ये सिर्फ पुरानी और नायाब चीजों को सहजने की जगह नहीं, बल्कि वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला और संघर्षों की जगह होती है, और हमारे उन संघर्षों को जीवंत करते हैं और उसका गवाह भी है। शिक्षा का केंद्र। किताबें हमें इतिहास पढ़ाती है, लेकिन संग्रहालय हमें उस इतिहास को महसूस कराते हैं। ये युवा पीढ़ी को आने जड़ों से जोड़ने का सबब और सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। संग्रहालय अलग अलग देशों और संस्कृतियों के बीच एक सेतु यानी ब्रिज है, जिससे दुनिया में आपस में समझ और शांति बढ़ती है। हमारी जो वादी है, वादी कश्मीर का भी एक अपना समृद्ध इतिहास है, जिससे हमारी संग्रहालयों ने अपने सीने में समेट के रखा है। ऐसे ही हमारे प्रदेश हरियाणा में भी कई सारे संग्रहालय है, जहां हमें जाना चाहिए और हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए, हमें अपने जो इतिहास है उसके बारे में जानना चाहिए। आज के इस दिन रेडियो वितस्ता आपसे यही अपील करता है कि जब भी वक्त मिले अपने बच्चों को संग्रहालय यानी म्यूजियम्स में जरूर ले जाएं, ताकि वो जाने कि हम कहां से आए और क्या हमारी विरासत है और कितनी महान है। श्रोताओं, अब घड़ी सुइयां गवाही दे रही है कि आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं मुकम्मल किया जाए। आप सब आराम कीजिए, मीठे सपने देखिए, कल सुबह नई उमंग, नई तरंगों और नई उम्मीदों के साथ रेडियो वितस्ता पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जाते जाते रात की आखिरी शायरी आपके सुकून के नाम जो हर दिन हम लाते हैं। शायरी यूं है, दिन भर की धूप के बाद अब सुकून की रात आई है, दिन भर के धूप के बाद अब सुकून की रात आई है, यादों के जरोखों से हवा की एक ठंडी बात आई है। सो जाइए अब अपनी आंखों में हसीं ख्वाब सजाकर, सो जाइए अब अपनी आंखों में हसीं ख्वाब सजाकर, अलविदा कहने रेडियो वितस्ता की ये रात आई है। तो रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के पूरे परिवार की ओर से, पूरी टीम की ओर से, आपका रेडियो दोस्त की ओर से आप सभी से इजाजत चाहूंगा। आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखें, घर परिवार का ध्यान रखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें और बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करते हैं। मिलते हैं सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।